FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संबत 1948 के ज्येष्ठ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 4 जून 2026। इस समय प्रातः के 5:58 हो रहे हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है।

और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है आराध्य को निवेदित हमारा भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

सबका दुख कष्ट हरने वाले भोलेनाथ, बाबा शंभु मुझ पर भी कृपा कीजिए। इस मोह माया रूपी संसार से मेरा मन हटाकर आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए।

जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। चरणों में नित शीश नवाऊं, कृपा दृष्टि सदा बनाए रखाऊं।

इस पावन मातृभूमि के चरणों में मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। भारत माँ, मेरा नमन वंदन स्वीकार करें।

0: आज का वंदना कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आज आपने जिन गायक स्वरों में भक्तिप्रक रचनाएं सुनी, वे गायक स्वर हरिओम शरण, कैलाश श्रीवास्तव, नीना और राजेंद्र मेहता के थे। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन बिंदु। आज का विषय है संस्कार सिंचन। आलेख KG महेश्वरी का है और वाचन यतीन्द्र चतुर्वेदी का।
1: जैसे कोई सुंदर फूल सुगंध रहित होने पर महत्वहीन हो जाता है, उसी प्रकार से संस्कार विहीन व्यक्ति भी मानव देह धारण करके भी उपयोगी नहीं रह पाता। चीन के एक संत का कहना था कि अगर किसी खेत को संभालना हो तो 3 वर्ष पहले से उसकी मिट्टी और खाद पर ध्यान देना आवश्यक है, और यदि किसी राष्ट्र को संभालना हो तो उसके उन बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर ध्यान देना चाहिए जो अभी शालाओं में भी नहीं हैं और जो अभी घर के आंगन में या बाहर गलियों में खेल रहे हैं। भारतीय ग्रंथों में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं जिसमें बालक अपनी माँ के गर्भ से ही संस्कार, शिक्षा या कला सीखकर आया। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह प्रवेश का संस्कार माँ के गर्भ में ही सीखा। महात्मा गांधी पर माँ के संस्कारों का ही प्रभाव था। ये एक निर्विवाद सत्य है कि बाल मानस पर संस्कारों का सिंचन अमिट होता है। बच्चों को संस्कारी बनाने में परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। ज्ञान के विकास की प्रक्रिया तो सतत एवं जीवन पर्यंत है, पर 5 वर्ष की उम्र तक पढ़े हुए संस्कार ही व्यक्ति का स्वभाव निर्मित करते हैं। बच्चे जो कुछ भी करते हैं उसमें कहीं ना कहीं माता पिता, भाई बहन, अध्यापक अथवा दादा दादी के व्यवहार की झलक अवश्य ही मिलती है। मनोवैज्ञानिक खोजों से ये निष्कर्ष निकलता है कि जिन परिवारों में आपसी कलह, लड़ाई, झगड़े एवं दूसरों के दोषों का वर्णन होता हो, उन परिवारों के बच्चे के मन पर इसका अत्यधिक प्रभाव होता है और उनके अवचेतन मन में ये बातें घर कर जाती हैं और समय पाकर ये अवगुण प्रस्फुटित हो जाते हैं। बच्चे मात्र बुरी बातें ही सीखते हों ऐसी बात नहीं है। सीखने की तो उनकी प्रवृत्ति है, जो भी उनके सामने होता है उसी को वे सीखते हैं। यही कारण है कि जो बच्चे संयुक्त परिवारों में रहते हैं वहां वे अपने बड़ों से प्रेम व्यवहार व सहिष्णुता की बातें सीखते हैं। अतः परिवार में अभिभावकों एवं अन्य बड़ों का तथा विद्यालय में अध्यापकों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे बच्चों के सामने ऐसा कोई कार्य न करें जो सदाचार की कोटि में न आता हो। बच्चों के सामने न तो अभद्र व्यवहार ही करें और न ही कोई अपशब्द मुंह से निकालें। उनके सामने अपने व्यवहार में शालीनता व शिष्टाचार संगत व्यवहार ही उनमें अच्छे संस्कार पैदा कर सकेगा। एक व्यक्ति मंच से धर्म की बड़ी ही सुंदर व्याख्या कर रहा था। प्रसंगवश उसी में धूम्रपान एवं मदिरापान के अवगुणों का भी जिक्र आ गया। सभा में एकदम सन्नाटा था। प्रवचन अत्यंत प्रभावी था। सभा विसर्जन होने के बाद वह व्यक्ति एक कार में जाने के लिए बैठा और वहीं पर उसने एक सिगरेट सुलगाई तथा किसी बात पर ड्राइवर को भला बुरा कहने लगा। इसी बीच एक निर्धन से दिखने वाले व्यक्ति ने उस व्यक्ति के निकट आकर एक प्रश्न पूछा, महोदय, क्या कोई ग्वाला अपनी मालिक की गायों को चराता रहकर उन गायों का मालिक हो सकता है? उत्तर मिला, ये कैसे हो सकता है? तो फिर जो मात्र उपदेश दें और उनका पालन स्वयं न करें तो क्या वह उपदेश देने का अधिकारी है? यह संवाद उस व्यक्ति की आंखें खोलने वाला था। अगर हम चाहते हैं कि हमारी संतान चरित्रवान मानव बने तो हमें अपने बच्चों के जीवन के प्रातःकाल में यानी बचपन में ही उन पर संस्कार सिंचन करना होगा।

0: ऐसा करने पर ही हमारे घर परिवार सुखी बनेंगे, समाज समृद्ध होगा व देश गौरवशाली हो सकेगा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन बिंदु। आज का विषय था संस्कार सिंचन। आलेख केजी माहेश्वरी का था और वाचन था यतीन्द्र चतुर्वेदी का। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान से आज का संगीतबद्ध प्रसारण।

कैलाश पर्वत पर शिवजी के विश्राम स्थल शीतल मंद सुगंधित पयार देने वाले बरगद के नीचे शिव तथा पार्वती विराजमान हैं। पार्वती श्री रामचंद्र के ब्रह्म होने के संबंध में अपनी जिज्ञासा प्रकट करती हैं, वो कारण जानने की जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करते हैं। श्री राम के अवतार की कथा, उनका उदार बालचरित, जनक सुता से विवाह तथा ये जानने की कि किस दोष के कारण उन्हें राज्य छोड़ना पड़ा, राम के वनवास, रावण वध तथा उस प्रकरण की अन्य लीलाओं के अतिरिक्त वो ये भी जानना चाहती हैं कि वो कौन सा तत्व है जिसके अनुभूति में ऋषि मुनि निमग्न रहते हैं। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का रहस्य क्या है? इन ढेर सारे प्रश्नों द्वारा प्रकट जिज्ञासा के अतिरिक्त वो सभी तथ्य भी जानना चाहती हैं जो अनपूछे रह गए हों। पार्वती के सहज निष्कपट प्रश्न सुन महादेव आनंद विभोर हो गए। श्री राम की प्रीति तथा भक्ति से उनका शरीर पुलकित हो गया और आंखों में प्रेमाश्रु उमड़ आए।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, स्वर वाणी जयराम का था, राजेंद्र कांजरू का था और वाणी जयराम का भी। संगीतकार थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से थोड़ी ही देर में यानी प्रातः 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय होगा जून माह में सब्जियों की में किए जाने वाले कृषि कार्य। वार्ताकार होंगे विजय सिंह नौलखा। भूले बिसरे गीतों का कार्यक्रम का समय रहेगा प्रातः दिन में 7:00।

ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुना जा सकेगा प्रातः 7:31 पर। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे ब्रजवार्ता, शास्त्रों में ब्रज को महात्म्य। वार्ताकार होंगे श्रीकांत बाबा। इसी कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे कुछ ब्रज लोकगीत। चित्रपट संगीत गीतांजलि का आनंद हमारे श्रोता ले सकेंगे प्रातः 8:30 पर। काव्यात्मक संवाद आप सुनेंगे प्रातः 9:00। आज का विषय होगा पर्यावरण एक सामूहिक उत्तरदायित्व। वार्ताकार होंगे संतोष कुमार सिंह और इनसे बातचीत करेंगे ओपी सिंह। कार्यक्रम आवो हवा सुना जा सकेगा प्रातः 9:25 पर। आज का विषय होगा शुद्ध पर्यावरण और स्वस्थ जीवन। आलेख एवं वाचन होगा ललिता गुप्ता का। जिले की हलचल का समय रहेगा प्रातः 9:15 पर।

आकाशवाणी के 90 साल होने के क्रम में आप सुनेंगे कार्यक्रम याद है जरा जरा। वार्ताकार होंगे रामगोपाल एडीपी। समय रहेगा प्रातः 9:30 पर। एनसीईआरटी एवं सीआईईटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुना जा सकेगा प्रातः 10:00। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे प्रातः 10:30 पर और प्रातः 11:30 पर। फरमाइशी फिल्म संगीत हेलो आकाशवाणी आप सुनेंगे दिन में 11:00। प्रायोजित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर आप सुनेंगे दिन में 12:00। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मथुरा। आज का विषय होगा टीबी अस्थमा एवं श्वास संबंधी रोग कारण एवं निवारण। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर लव गुप्ता सलाहकार पाल्मोनोलॉजिस्ट अस्थमा टीबी फेफड़ा एवं श्वास रोग विशेषज्ञ सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। ब्रजलोक गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 12:30 पर। आज की कलाकार होंगी सुनीता वर्मा। वनिता लोक कार्यक्रम का समय रहेगा अपराह्न 1:15 पर। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा करें योग रहें निरोग विषय पर। इसके अलावा

चर्चा होगी आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे खानपान वार्ता, गर्मियों में घर में बनाए जाने वाले पेय पदार्थ, वार्ताकार होंगी भावना अग्रवाल। महिलाएं इसी कार्यक्रम में जानेंगी कुछ घरेलू टिप्स और आनंद ले सकेंगी फिल्म संगीत का।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय है जून माह में सब्जियों में किए जाने वाले कृषि कार्य। वार्ताकार हैं विजय सिंह नौलखा।
1: किसान भाइयों, आज हम इस समय यानी जून माह में सब्जियों में कौन कौन से कृषि कार्य करने हैं इसके बारे में जानकारी देंगे। सर्वप्रथम जो सब्जी लेते हैं वो है भिंडी। वर्षा ऋतु की फसल हेतु उन्नत किस्में जैसे कि पूसा सावनी, वर्षा उपहार, हिसार उन्नत, अर्क अभय, अर्क अनामिका आप ले सकते हैं। इस ऋतु की फसल हेतु 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। खेत तैयार करते समय 150 से 200 क्विंटल गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिलावें। इसके अलावा 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर उर के दें। वर्षा ऋतु में पौधे से पौधे की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। खरीफ की मिर्च की फसल हेतु पौध तैयार करें। एक हेक्टेयर हेतु 1 से 1.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीज को 2 ग्राम कैप्टन प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित करें। नर्सरी में यदि सूत्र कृमि का प्रकोप हो तो 5 ग्राम फोरेट 10 g प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से नर्सरी की क्यारी में मिलावें। माथा बांधने की समस्या से निजात पाने हेतु 40 मैश का सफेद रंग का एग्रीनेट नर्सरी के ऊपर लगवावें। मिर्च की उन्नत किस्में हैं NP 40, पूसा ज्वाला, RC RCH 1, Pansi 1, G3। इसमें से कोई भी प्रजाति का चयन आप कर सकते हैं। खरीफ में टमाटर की फसल हेतु नर्सरी तैयार करें। देसी किस्मों में 400 से 500 ग्राम तथा संकर किस्मों में 150 से 200 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। देसी किस्में हैं पूसा रूबी, पूसा अर्ली डॉर्फ, पूसा 120, अर्का विकास, हिसार अरुणा। संकर किस्में हैं कर्नाटक हाइब्रिड, रश्मि, सोनाली, पूसा हाइब्रिड 2। टमाटर की पौध 500 ग्राम की पॉलिथीन थैली अथवा प्लग ट्रे में भी तैयार करके की जा सकती है। इससे पौधे जल्दी तैयार होते हैं, स्वस्थ तैयार होते हैं तथा खेत में रोपाई करने पर जड़ों का नुकसान भी नहीं होता। बैंगन की शरदकालीन फसल की नर्सरी तैयार करें। एक हेक्टेयर हेतु 400 से 500 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। बैंगन की उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं लंबे फल वाली पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा क्रांति। गोल फल वाली किस्में हैं पूसा पर्पल राउंड, H4P8, पूसा अनमोल, पंत ऋतुराज। इसकी संकर किस्में इस प्रकार से हैं अर्का नवनीत, पूसा हाइब्रिड 6। खरीफ में आप सेम, ग्वार और लोबिया की बुवाई भी कर सकते हैं। सेम की उन्नतशील प्रजाति हैं पूसा अर्ली, प्रोलिफिक, रजनी, सेम 1। इसमें बीज दर जो आप रखेंगे वो है 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। उर्वरकों की मात्रा इस प्रकार से रहेगी नाइट्रोजन 40 किलोग्राम, फास्फोरस 80 किलोग्राम तथा पोटाश 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई के समय पर देवें। इसके अलावा ग्वार की उन्नतशील प्रजाति है पूसा नवबहार, दुर्गा बहार। इसके लिए बीज की दर रखेंगे 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा उर्वरकों की मात्रा इस प्रकार से रहेगी 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटाश। लोबिया की उन्नतशील प्रजाति है पूसा बरसाती। इसमें बीज दर रखेंगे 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा उर्वरकों की मात्रा रखेंगे 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटाश। अब बात करते हैं सब्जियों में कीट और उसके नियंत्रण की। टमाटर, बैंगन व मिर्च के मोइला, सफेद मक्खी, हरा तेला व तना छेदक पौधों की कोमल शाखाओं व पत्तियों से रस चूसकर इसे कमजोर कर देते हैं। इसके नियंत्रण हेतु मेलाथियन 50 ई

0: सीसी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। टमाटर, बैंगन, मिर्च में पर्ण कुंचन व विषाणु रोग से पत्ते सिकुड़ जाते हैं, पत्तियों का गुच्छा बन जाता है, हरे पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। इसके नियंत्रण हेतु डाइमिथियोएट 30 ईसी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय था जून माह में सब्जियों में किए जाने वाले कृषि कार्य। वार्ताकार थे विजय सिंह नौलखा। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: राजधान्यां दिल्ल्यां मालवीयनगरस्य एकस्मिन् विश्रान्तिनिलये भीषणाग्निकाण्डे एकविंशतिः जनाः मृत्युमुपगताः, अनेके च जनाः व्रणिताः अभवन्। दक्षिणदिल्ल्यारक्षिविभागस्य उपायुक्तः अनन्तमित्तलः अवोचत् यत् अग्निशमनविभागस्य अष्टभिः वाहनैः सह अग्निः नियन्त्रितः। आरक्षिणाम् अग्निशमनस्य तथा अन्य आपत्कालिकसेवानां संयुक्तप्रयत्नैः चत्वारिंशदधिकाः जनाः सुरक्षितरूपेण उद्धृताः, चिकित्सोपचारार्थं च चिकित्सालयेषु प्रेषिताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी घटनामुद्दिश्य गहनं दुःखं व्यक्तीकृतवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, गृहमन्त्री अमितशाहः तथा दिल्लीराज्यस्य मुख्यमन्त्री रेखागुप्ता अपि अस्मिन् दुःखदे घटनाक्रमे शोकं प्रकटितवन्तः। सर्वैः नेतृभिः शोकसन्तप्तपरिवारान् प्रति गहनसंवेदना व्यक्तीकृता। इति वार्ताः।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। पहला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं मन्ना डे की आवाज है, भरत ब्यास का लिखा गीत है और संगीत है एस एन त्रिपाठी का। फिल्म का नाम है रानी रूपमती।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र FM 102.2 मेगाहर्ट्स पर। हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं भूले बिसरे गीतों का, और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। शमशाद बेगम की आवाज़ है, फिल्म का नाम है शबनम।

0: बहुत दिल ढले। रस्ते में मिला एक बंगाली, दर्शन का अभिलाषी, वो कहने लगा
1: क्या?
0: वो कहने लगा जल खाबे, रसगुल्ला खाबे, और कहने लगा

अभी आप सुन रहे थे हसरत जयपुरी का लिखा गीत और शंकर जयकिशन का संगीत। आवाज थी मन्ना डे की और फिल्म का नाम था बूट पॉलिश। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। गीत लिखा है राजा मेहदी अली खान ने और संगीत से सवारा है इस गीत को मदन मोहन ने। आवाज है शमसाद बेगम की, फिल्म का नाम है मदहोश।

0: वो दिलदार है दिलदार, कहती थी हमसे वो दिलदार, बिछड़ता क्यों है, कहती थी हमसे वो दिलदार, बिछड़ता क्यों है।
1: इसी गीत के साथ भूले बिसरे गीतों का कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी। मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर। अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम। जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी। मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने लोकहित के 24 प्रस्तावों को किया पारित। नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें

0: चलाने को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर की समीक्षा बैठक। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रस्तावित आयोजनों को जन जागरण का व्यापक अभियान बनाने का दिया निर्देश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली NCR में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के सहयोग से लागू होगी पहल। और वाराणसी में आज से शुरू हो रही है ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लोकहित के 24 प्रस्ताव पारित किए गए। नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मंजूरी दे दी।
1: नगरीय क्षेत्रों में जो हमारे 17 नगर निगम हैं और नोएडा, कुल 18 हमारे जो बड़े शहर हैं, उनमें ई बसें संचालित करने के लिए हम लोग प्रस्ताव लेकर के गए थे और उसमें 1725 नई बसें चलाने का हमारा प्रस्ताव था, जिसे माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। और ये बसें 17 नगर निगम है और प्लस नोएडा, इसमें जेवर जो एयरपोर्ट है उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं।
0: कैबिनेट ने सरकारी वकीलों के भत्तों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत मक्का खरीद नीति को भी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था, आगामी आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा तथा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रस्तावित जन भागीदारी आधारित कार्यक्रमों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम केवल औपचारिक आयोजन न होकर जन भागीदारी और जन जागरण का व्यापक अभियान बने। बैठक में मुख्यमंत्री ने 8, 9 और 10 जून को 2 पालियों में आयोजित होने वाली आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा की सूचिता निष्पक्षता और गोपनीयता को बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों से भी सख्ती से निपटा जाए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण GIDA के विभिन्न क्षेत्रों के लिए करीब 208 करोड़ रुपए के 71 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद से सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ी है। इसी का परिणाम है कि सरकार को 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
3: प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त, 15 लाख करोड़ का हमने जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया, 7.5 लाख करोड़ का हमारे पास तत्काल तैयार है, इसको कभी भी हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर सकते हैं, लाखों नौजवानों को इसके माध्यम से कार्य मिला है।
0: मुख्यमंत्री ने कल गोरखपुर में ही आजमगढ़ बस्ती और गोरखपुर की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता संगोष्ठी 2026 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती करने पर बल दिया।
4: जो औद्यानिक फसल हम पैदा करें, न्यूनतम केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग कर, न्यूनतम उन मानकों पर खरा उतर सके जो निर्यात करने लायक भी हो, और इसके लिए प्राकृतिक खेती एक बेहतरीन ऑप्शन है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली

0: सीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने वाली योजना को मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया।
0: केंद्रीय मंत्री श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के भागीदार राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू किया जाएगा।
2: इस स्कीम के लिए 5041 करोड़ रुपीस का आउटले है। सपोर्ट लेंगे गवर्नमेंट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। इनकी मदद से करीब 2 लाख के आसपास ट्रक्स हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम बनाया जाएगा, और करीब 16,000 बसेज हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम है। इससे हमारा मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में दिल्ली में पोल्यूशन सिग्निफिकेंटली कम होगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। प्रस्तुत है मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर एक विशेष रिपोर्ट।
3: सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है, जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाराणसी में आज से 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
4: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा, बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम विभाग ने इस सप्ताह के दौरान प्रदेश में अधिकतम तापमान में 4-6 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक इस अवधि में न्यूनतम तापमान में भी 2-3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी हो सकती है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने लोकहित के 24 प्रस्तावों को किया पारित। नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर की समीक्षा बैठक। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रस्तावित आयोजनों को जन जागरण का व्यापक अभियान बनाने का दिया निर्देश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली NCR में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के सहयोग से लागू होगी पहल। और वाराणसी में आज से शुरू हो रही है ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता, तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता, तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

श्रोताओ, पुरुषोत्तम मास चल रहे है, जाकू अधिक मास के नाम ते भी जानो जावे। भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में जा मास को बहुत अधिक विशेष महत्व है। जा महीना में भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और श्री राम की उपासना को विशेष महत्व बताया गया है। श्रद्धालु व्रत, जप, तप, दान, सत्संग, कथा श्रवण और भजन कीर्तन जैसे पुण्य कार्य करें। ऐसा मानो जावे कि जा महीना में अगर कोई शुभ कर्म या फल कोई करो जावे तो बाको फल कई गुना बढ़ जावे। पुरुषोत्तम मास हमें केवल धार्मिक अनुष्ठानन को ही ना है बल्कि आत्मचिंतन और आत्मसुधार की भी प्रेरणा देवे। यह वह समय है जहाँ मैं अपने अंदर भीतर झांकने को, अपनी कमियन को पहचानवे को और जीवन को और अधिक बेहतर बनावे को समय है। यदि हम जा अवधि में कई जरूरतमंद की सहायता करें, बुजुर्गन को सम्मान करें, पर्यावरण की रक्षा करें और समाज के प्रति अपने दायित्व को निभावें, तो श्रोताओं यही सच्ची साधना होगी। आज के व्यस्त जीवन में हम अक्सर अपने आध्यात्मिक पक्ष को भूल जाएं। पुरुषोत्तम मास हमें यही याद दिलावे कि जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों को नाम ना है बल्कि मन की शांति, सदाचार और सेवा भावना भी उतनी ही आवश्यक है। तो प्रिय श्रोताओं, पुरुषोत्तम मास का संदेश बहुत सरल है। अपने जीवन में सद्गुणन को अपनाओ, ईश्वर के प्रति सद्ध्रह रखो, मान्यता मानवता की सेवा को अपना धर्म बनाओ। यही पावन

पर्व वास्तविक में साधना है जाएगो अगर हम इन सब बातन को ध्यान रखेंगे। श्रोताओं, ऐसी छोटी छोटी बातन को ध्यान रखोगे तो पुरुषोत्तम मास हमारे मन मस्तिष्क तक हमें शांति प्रदान करेगो, और शांति प्रदान करवे के ताई कछु और ना कर सको तो चले जाओ गोवर्धन। गोवर्धन की परिक्रमा नाम जप करते हुए लगाओ तो जाको तुम्हें फल हजार गुना ज़्यादा भड़के मिलेगो। तो चलो, अगर जो भाई बहन श्रोता ना जा पा रहे हैं उनको हम अपने संग ले चल रहे हैं गोवर्धन की परिक्रमा कर आए नाम जप करते करते। तो बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे हते माधव शर्मा को गायो भयो जे ब्रजलोक गीत। उम्मीद है आपने जब ब्रजलोक गीत को आनंद लियो होगो और मानसिक रूप से परिक्रमा भी लगा ली होगी हमारे संग और गिरिराज भगवान को पूजन भी कर लियो होगो। तो श्रोताओ, हम सब जाने ही हैं कि ब्रज की लीला अपरंपार है। ब्रज को, ब्रज की भूमि को शास्त्रन में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला स्थली के रूप में वर्णित किया गया है। ब्रज की जा पावन भूमि पे श्री कृष्ण ने अपनो बाल्यकाल अनेक अलौकिक लीलान के संग में रचो है। पुराणन में भी ब्रज की धूल, यमुना को जल और यहाँ को प्रत्येक कण भक्तन के लिए पूजनीय बताया गया है। ब्रज की परिक्रमा और दर्शन तितो मन को शांति और ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति की अनुभूति होवे ये जाई कारण ब्रज को भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिक चेतना की अमूल्य धरोहर मानो है। श्रोताओं, जाई क्रम में ब्रज को और अधिक महत्तम समझावे के ताई हम आपको सुनवा रहे हैं ब्रज वार्ता। शास्त्रन में ब्रज को महत्तम। वार्ताकार हैं श्रीकांत बाबा।
1: शास्त्रन में ब्रज को बड़ो महात्म्य बतायो है। या महात्म्य की चर्चा करवेते पहले हम ब्रज की शास्त्रन में जो परिभाषा दीनी है वाको जान लें। गर्गाचार्य महाराज गर्ग संहिता में कहे हैं कि विंशति योजन विस्तीर्णम अर्ध योजनेन वै माथुरम मंडलम दिव्यम व्रजम आहुर मनीषिणः। 84 कोस को जो मथुरा मंडल है, मथुरापुरी के चारों तरफ जो 84 कोस भूमि है वाई को मनीषी विद्वान व्रज कहे हैं। एक योजन में लगभग 4 कोस हुए हैं, या प्रकार ये 84 कोस भूमि है। याखो अर्थ है कि मथुरा और वाकी आसपास की जो 84 कोस भूमि है वही ब्रज है। शास्त्रन में ब्रज के लिए मथुरा मंडल या शब्द को प्रयोग मिले है। गर्ग संहिता के गोलोक खंड में कथा आवे है कि ये 84 कोस भूमि दिव्य है जो गोलोक की है और जब कृष्ण भगवान ने पृथ्वी पे अवतार लियो तो श्री स्वामिनी जी श्री राधा जी की प्रसन्नता के लिए श्री यमुना जी गोवर्धन और वृंदावन के संग या दिव्य भूमि को भूलोक में प्रकट कियो। शास्त्र ऐसो वर्णन करें कि ये दिव्य भूमि व्रज भूमि प्रलय में ऊ नष्ट नाए हुए है। श्री भगवान कहे हैं कि माथुरम मंडलम साक्षान मंदिरम में परात्परम। ये जो मथुरा मंडल है वो मेरो घर है और ये प्रलय में ऊ नष्ट नाए हुए है। लोकत्रयात्परम दिव्यम प्रलयेपि न संघ्रतम। ये त्रिलोकीसों विलक्षण है और प्रलय में ऊ ये संघ्रत नहीं हुए है। या दिव्य मथुरा मंडल के 12 वन हैं जिनको वर्णन वाराहादिक पुराणन में और अथर्ववेदीय गोपाल तापनी उपनिषद में ऊ आवे है कि यथा हि वई सरसि पद्मम तिष्ठति तथा भूम्याम तिष्ठति। जैसे वे परमात्मा श्री कृष्ण सुंदर पद्म में विराजे हैं वैसो ही पद्म भूमि पेऊ है। चक्रेण रक्षिता मथुरा तस्माद् गोपालपुरी ब्रह्मपुरी भवती। या कमल को पद्म को मध्य भाग श्रीधाम मथुरा है जो सुदर्शन चक्रसों संरक्षित है और गोपालपुरी ब्रह्मपुरी है। या कि द्वादश वनन को वर्णन शास्त्र करें हैं कि बृहद वन, मधुवन, ताल वन, काम वन, बहुला वन, कुमुद वन।

खदिरवन, भद्रवन, भांडीरवन, श्रीवन, लोहवन और वृंदावन एतैहि आवृता पुरी भवती। इन बारह वननसों आवृत अर्थात घिरी भई ये मथुरापुरी है। या पुरी के महात्म के विषय में वाराह पुराण में भगवान को वचन है कि ये मेरी पुरी पाप हारिणी है। जैसे सूर्योदये तमो नश्येत, सूर्योदय सो अंधकार को विनाश है जाए है। वज्रपात सो पर्वतन को ध्वंस है जाए है। गरुण जी के दर्शन सो सर्प लुप्त है जाए हैं। वायु के प्रवाह सो मेघ अदृश्य है जाए हैं। और सिंह के दर्शन सो हिरण छिप जाए है। वैसे ही या मथुरापुरी के दर्शन सो सभी प्रकार के पाप ध्वंस है जाए हैं। मथुरा मंडल में काऊ स्थान, घर, चौतरा, मार्ग आदि काऊ जगह हैं। यदि मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हुए है तो वो मोक्ष लाभ करे है, या में कोऊ संशय नहीं है। गर्ग संहिता तो कहे है कि मथुरा ये नाम लेवीसों हरि नाम जप को फल हुए है। सप्त मोक्षदायिनी पुरी जो भारत में है विनमें मथुराऊ आवे है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। अर्थात अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी और द्वारिका ये सातों मोक्ष देवी वारी हैं। गर्ग संहिता में एक कथा है कि जब प्रयाग को तीर्थराज के पद पे अभिषेक भयो तो एक बड़ी सभा भई, जामे सभी तीर्थ उपस्थित भये, किंतु मथुरापुरी उपस्थित नहीं भई। तो जब प्रयागराज ने क्षुभित है के भगवान श्री कृष्ण सो याकी शिकायत करी तो भगवान ने कही कि प्रयागराज तुमको सब तीर्थन को राजा बनायो है, पर अपने घर को तो राजा नहीं बनायो। ये मथुरापुरी मेरो घर है। पद्म पुराण कहे है कि यमुना तट पे जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और क्रीड़ा स्थल मथुरा है, वहां भगवान नित्य विराजमान रहे हैं। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज को वचन है कि मथुरा भगवान यत्र नित्य सन्निहितो हरि, या मथुरापुरी में नित्य ही भगवान को सान्निध्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी जीव गोस्वामी कहते हैं कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्म की लीला नित्य है। भगवान श्री कृष्ण के लीला संवरण के पश्चात और यादव कुल के संहार के बाद भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ मथुरा के सिंहासन पे अभिषिक्त किए गए। मथुरा मंडल को वर्तमान स्वरूप जो भगवान श्री कृष्ण के लीला संवरण के पश्चात कालाच्छादित है गयो हो, इन महाराज वज्रनाभ को ही प्रकट कियो भयो है। जो आपने परम गुरु मुनिवर शांडिल्य की सहायता सो प्रकट कियो हो। महाराज वज्रनाभ ने व्रजमंडल में आठ देव विग्रह प्रकट किए। चार देव, दो नाथ और दो गोपाल। चार देव, दुई नाथ, दुई गोपाल बखान, वज्रनाभ प्रकटत ए आठ मूरत जान। चार देव हैं हरदेव, बलदेव, केशव देव और गोविंद देव। याई प्रकार दो नाथ जो हैं वे हैं श्रीनाथ और गोपीनाथ। दो गोपाल हैं मदन गोपाल और साक्षी गोपाल।

0: श्री राम मथुरा की गरिमा है कि वो आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक रसारणव सकल जगदाधिष्ठान परब्रह्म परमात्मा श्री हरि की जन्मभूमि है। सप्तद्वीपवती पृथ्वी की परिक्रमा करवो अल्प सत्व अल्प बुद्धि और अल्प बल के मनुष्य के लिए असंभव है, किंतु भगवान को वचन है कि मेरे या मथुरा मंडल की परिक्रमा करवे पे मनुष्य सप्त द्वीप वारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा को वाके सब तीर्थ स्थलन को फल प्राप्त करे है। भगवान कहे हैं कि प्रथमम मधुवनम नामो द्वादशम वृंद का वनम एतान ये प्रपश्यंती नते नरक भाजिनः। महापात की धर्म विमुख मूढ़ मनुष्यु यदि मथुरा मंडल के मधुवंशों लेके वृंदावन तक के द्वादश वनन को दर्शन कर लिए है तो वो नरक गमन नहीं करे है। श्री भगवान कहे हैं कि मथुरायाम कृतम पापम तत्रैव च विनश्यति एषा पुरी महापुण्या जस्याम पापम न विद्यते। ये मेरी मथुरापुरी को महात्म्य है कि यहाँ कियो भयो पाप यहीं नष्ट है जाए है। ये महापवित्र पुरी है जहाँ पाप की स्थिति नाय रह सके है।
1: श्रोताओ अभी आप सुन रही हती ब्रजवार्ता। शास्त्रन में ब्रज को महात्म्य। वार्ताकार हते श्रीकांत बाबा। श्रोताओ ब्रज की बात होए, मोहन की बात ना हो, बंसी की बात ना हो और जमुना मैया की बात ना हो तो ये बात अधूरी सी लगेगी। तो आओ अब आपको ब्रज की बात को पूरी करवे के ताई सुनवा दे मैं जे ब्रजेंद्र तिवारी के स्वर में एक मीठो सो ब्रज लोकगीत।

चरण कमल पे सीर, चरण कमल पे सीर, मोहन की

मन की ओ कान्हा की बंसी बाजी। श्रोताओ, जाई बजलो गीत के संग दुर्गेश भास्कर को कार्यक्रम संपन्न करवे की दो अनुमति। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रातः के 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: चिकन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
0: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
0: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शॉ।
0: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
2: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।

केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की

0: कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
1: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है, स्टेबिलिटी के लिए। अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है, लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
0: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
2: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
4: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कला और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जाँच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
5: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
3: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और

0: माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिन्दुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है, तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋत व्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में सेवन सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोक सत्य ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार पत्र प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला डेल्सी रोड्रिगेज इन न्यू दिल्ली टुडे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू चेयर 73rd प्लीनरी सेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इन शिलोंग। U.S. Secretary of State Marco Rubio says United States and India are only weeks away from concluding a long-awaited trade agreement. IMD issues orange alert for heavy rain in Keralam and Mahe today. First World Yogasan Sports Championship to begin today in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi to join the event virtually in the evening. And in football, India advanced to the final of SAF Women's Championship, beating Bhutan 1-0 in Goa. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with the acting president of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi today. Ms. Rodriguez arrived yesterday on a 5-day visit to India. She is accompanied by a delegation comprising the ministers

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर में इस बार गुरुवार 4 जून दिन में 12 बजे से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है टीवी अस्थमा एवं श्वास संबंधित रोग कारण एवं निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर लव गुप्ता, सलाहकार पल्मोनोलॉजिस्ट अस्थमा टीबी फेफड़ा एवं श्वास रोग विशेषज्ञ, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके या मोबाइल नंबर 9412255575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में टीबी अस्थमा एवं श्वास संबंधी रोग कारण एवं निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगा

ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है टीवी अस्थमा एवं श्वास संबंधित रोग, कारण एवं निवारण। श्रोताओं, यदि आप टीवी अस्थमा एवं श्वास से संबंधित समस्या जैसे COPD, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, धूल मिट्टी, पालतू जानवरों के बालों से एलर्जी, वायरल संक्रमण या फेफड़ों की सूजन, टीबी के कारण सांस की समस्या आदि के समाधान के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं डॉक्टर लव गुप्ता, सलाहकार पल्मोनोलॉजिस्ट अस्थमा टीबी फेफड़ा एवं श्वास रोग विशेषज्ञ, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा से। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा गुरुवार यानी आज 4 जून 2026 और समय दिन में 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए अब सुनिएगा फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पहला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं उमराव जान का, आवाज है आशा भोसले की।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं और हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं चित्रपट संगीत गीतांजलि का। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ है, फिल्म का नाम है त्रिशूल।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: हमारी जनगणना हमारा विकास।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं चित्रपट संगीत गीतांजलि का, और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की युगल आवाजें हैं, फिल्म का नाम है नूरी।

0: आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन को, फिल्म का नाम है सिलसिला। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और धुन बनाई है शिव हरि ने।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, मैं

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी।
4: दूसरा कोई मैच है क्या?
5: ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
4: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है,
6: पर बैंकिंग में नहीं।
7: वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड है और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
6: सीनियर सबसे पहले, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं और हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं चित्रपट संगीत गीतांजलि का। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। आवाज है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है लम्हे। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और इस गीत को धुन से सवारा है शिव हरि ने।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत गीतांजलि का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है काव्यात्मक संवाद, विषय है पर्यावरण एक सामूहिक उत्तरदायित्व। वार्ताकार हैं संतोष कुमार सिंह और इनसे बातचीत कर रहे हैं ओपी सिंह।
1: श्रोताओं, पर्यावरण एक ऐसी अवधारणा जो हम सबके जीने के लिए आवश्यक है, एक ऐसा आवरण जो हम सबके आसपास है। हम पर्यावरण के अंग हैं भी और पर्यावरण के घटक हमको प्रभावित करते हैं, चाहे उसमें जल हो, चाहे उसमें वायु हो, चाहे उसमें प्रकृति के अन्य घटक हों। तो एक तरह से हम पर्यावरण से प्रभावित होते भी हैं और पर्यावरण को प्रभावित करते हुए भी, और यही जीवन की खूबसूरती भी है कि हम सब मिल करके, चाहे जीव हो चाहे निर्जीव हो, एक दूसरे को संबल भी देते हैं और एक दूसरे को सहारा भी देते हैं। और इसी तरीके से सदियों से ये जीवन चलता हुआ आ रहा है, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि पर्यावरण की जो समस्या है वो दिनों दिन विकराल होती जा रही है, विकट होती जा रही है, और उसके बहुत सारे कारण हैं। लेकिन बात उत्तरदायित्व बोध की है कि पर्यावरण संरक्षण हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी अगर हो या मान लें तो इस समस्या के निदान भी आसान हो सकते हैं। प्रकृति कभी भी विनाश नहीं चाहती, प्रकृति हमेशा लोगों का संवर्धन करती है, लेकिन व्यक्ति की दखलंदाजी, चाहे प्राकृतिक अवयवों से हो, चाहे स्वयं के विकास के लिए हो या स्वयं की

0: के लिए हो, वो इससे पर्यावरण जैसे घटक को प्रभावित करती है। तो बहुत सारी ऐसी संवेदनशीलताएं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर हमें एक मानव होने के नाते, जागरूक मानव होने के नाते, एक प्रगतिशील समाज का घटक होने के नाते सोचना भी चाहिए और उसको समझना भी चाहिए। साहित्यकारों ने इस बात को काफी चीजों से देखा है, इस समय से देखा है, उस पर लिखा भी है। तो पर्यावरण जैसी समस्या के संदर्भ में आज हमारे साथ मथुरा के वरिष्ठ कवि हैं, साहित्यकार हैं, संतोष कुमार सिंह जी। आप यूं तो पेशे से इंजीनियर रहे, लेकिन साहित्य रचना उनकी एक पैशन के तौर पे है, वो उसमें दखल रखते हैं और आज भी लिख रहे हैं। संतोष कुमार जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में एक तो स्वागत, नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद
0: तो पर्यावरण जैसे घटक पर आप लिखते रहे हैं, आज भी लिख रहे हैं, तो
1: जी।
0: मेरा ये आपसे मानना है कि प्रकृति के घटकों के प्रति व्यक्ति पहले पूज्यता का भाव रखता था, चाहे हम पेड़ों की बात करें, नदियों की बात करें, पहाड़ों की बात करें, जलाशयों की बात करें, हम जीवन में उनको पूज्य मानते थे, पूजते थे। और जब पूज्य मानते हैं तो उनके संरक्षण की भी बात करते हैं,
1: यस
0: उनके
1: यस
0: संवर्धन की भी
1: बहुत
0: बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अब ये संवेदनशीलता कम होती जा रही है। तो इस पर्यावरण जैसे बृहद विषय को आप किस तरह लेते हैं, थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: आपने सही कहा कि हमारे पूर्वज नदियों को, वृक्षों को, पर्वतों को पूजा करते थे और उनका भाव यही होता था कि हम इनको पूजा के रूप में रखेंगे तो ये संरक्षित रहेंगे, इनको एक देवी देवता के रूप में मानेगा और इनका ज्यादा शोषण नहीं करेगा, इनका विनाश नहीं करेगा। लेकिन आज मानव स्वार्थ में ज्यादा डूबा हुआ है, वो इन चीजों को भूलता जा रहा है और वो नहीं देख रहा है कि इनके उजड़ने से, वृक्षों के काटने से, नदियों को दूषित करने से हमारे मानव जीवन पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन असर इतना पड़ रहा है कि उनसे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और मानव जीवन बीमारी की ओर बढ़ रहा है।
0: तो वृक्षों में जीवन जैसी चीज को आपने कभी कविता के माध्यम से श्रोताओं के सामने रखा हो, अपने जीवन में किया हो, कोई रचना ऐसी आपने जो ली हो?
1: हाँ, मैंने जो है इस तरह की रचना लिखी है कि वृक्षों में भी जीवन होता है। कैसे होता है कि रुको रुको

0: को अभी कुल्हाड़ी, ये उपकार बहुत हैं करते, वायु प्रदूषण नित्य दिन हरते, बिना मूल्य ऑक्सीजन देकर प्राणों में भी धड़कन भरते, फिर क्यों जड़ तक गई उखाड़ी, फेंको फेंको अभी कुल्हाड़ी। कि मानव उनको जो विनाश कर रहा है, लेकिन इनमें इतना जीवन होता है कि ये प्रजनन करते हैं, इनसे अन्य वृक्ष भी स्वयं उपजते हैं, सांस भी लेते हैं, ये ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं।
1: चीजों को लेना और देना इनका हमेशा हमारे लिए, लेकिन हम इनके प्रति जो संवेदनशीलता है उसको कहीं भूलते जा रहे हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं।
0: जी हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मानव संवेदनशील कम होता जा रहा है, जिससे उसके वृक्षों के प्रति या हमारी जो प्रकृति की चीजें हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, जल हैं, इनके प्रति संवेदनशीलता घटती जा रही है।
1: बीच में हमने देखा जब कोरोना काल आया, मानव की कुछ गतिविधियां कम हुई, तो एक समय ऐसा था जब ओजोन परत की बात बहुत होती थी, ओजोन परत क्षरण हो रही है, लोगों पर इसका प्रभाव बहुत पड़ेगा, जीवन में कैंसर जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं। वो क्षतिपूर्ति हुई जब हम कोरोना काल देखा, कुछ गतिविधियां हुई, तो विकास की गतिविधियां एक तरफ चल रही है, उनको हम रोक नहीं सकते, तो कैसे इसको हम समावेशी उसमें लाएंगे?
0: देखो, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने जी। जब कोरोना काल आया था तो पूरे देश में लॉकडाउन हो गया था। लॉकडाउन होने से सभी उद्योग धंधे, सभी कार्यालय, सभी बाजार, सभी छोटी छोटी फैक्ट्रियां सब बंद हो गई थी,
1: गतिविधियां रुक गई थी,
0: गतिविधियां टोटली रुक गई थी। इसके कारण हुआ क्या कि जो प्रदूषित गैसें फैक्ट्रियों से निकलती थी, गैसें
1: जी,
0: जो उत्सर्जन होता था, वो सब जो है उत्पादन बंद हो गया, तो गैसें भी जी वायुमंडल में जाने से रुक गई।

0: जब वो गैसें रुक गई तो देखा कि पर्यावरण जो शुद्ध हो गया है और हमारे आकाश में जो एक ओजोन परत है, सुरक्षा परत है, उसमें भी कोई न हानि पहुंची और वो जो होल बताते थे वो भी थोड़ा छोटा हुआ।
1: जी,
0: इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो औद्योगिक गतिविधियां बंद हो जाएं तो उस

0: बंद हो जाएं तो उससे पर्यावरण साफ होता है, लेकिन मानवीय आवश्यकताओं के लिए हम अपने उद्योगों को तो बंद नहीं कर सकते हैं
1: जी,
0: लेकिन उन पर नियंत्रण कर सकते हैं, उनको इस तरह जो चलाया जा सकता है कि जैसे जो गैसें निकल रही हैं वो कम से कम कितनी हो जाएं।
1: मतलब हम आवश्यकताओं को सीमित कर सकते हैं, लेकिन सीमित आवश्यकताएं हो जाएं और धंधों के चलाने के लिए जो नियम कानून हैं उनको लागू करें।
0: सीमित आवश्यकताएं आदमी स्वयं कर सकता है, लेकिन विश्व की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, स्वयं आवश्यकता कम कर देगा लेकिन जनसंख्या बढ़ने से उसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी, तो हमें उत्पादन तो करना है, लेकिन उत्पादन करने के साथ साथ हमें पर्यावरण संरक्षण का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा।
1: जी, जी,
0: उन चीजों को नियंत्रण करने के लिए नई नई तकनीकें खोजनी पड़ेगी।
1: जी, तो ऐसे में वृक्ष हमारी मदद कर सकते हैं। एक आह्वान एक आम आदमी से हम ये कर सकते हैं कि भैया आओ वृक्ष लगाओ, क्योंकि वृक्ष अंतिम जो आशा है वो वृक्ष ही हमारी होता है, क्योंकि वो हानिकारक चीजों को लेता है और लाभदायक चीजों को देता है, तो ओजोन की भी पूर्ति वही करता है। तो एक वृक्ष लगाने का आह्वान भी कभी आपने कविता के माध्यम से
0: कविता की है, और वृक्षों का इतना पर्यावरण में सहयोग है कि इसकी तुलना जो है और किसी से की जा नहीं सकती।
1: जी जी,
0: अतुलनीय योगदान है वृक्षों का पर्यावरण में। कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड जो फैलती है उद्योगों से या वाहनों से भट्टों से, वो कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड के द्वारा वृक्ष अपना भोजन तैयार करते हैं। जब भोजन में उस गैस को वो शोषण करते हैं और उस भोजन के बनाने में ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं,
1: जो हमारे लिए आवश्यक है,
0: जो मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है।
1: जी,
0: तो जितने ज्यादा धरा पर वृक्ष होंगे उतनी ही ऑक्सीजन का उत्पादन होगा, उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है खर्च होगी, उससे पर्यावरण शुद्ध होता चला जाएगा।
1: जी जी,
0: तो मैंने एक कविता लिखी थी कि वृक्ष लगाओ। वृक्षारोपण का भी काफी कार्यक्रम चला है, लेकिन लोग जो है अपने स्वार्थ के लिए हरे वृक्षों का कटान ज्यादा कर रहे हैं, लगा कम रहे हैं। तो मैंने एक कविता रूप में लिखी थी, आओ वृक्ष लगाना सीखें, उसको बड़ा बनाना सीखें। तो मेरा कहना है, आओ वृक्ष लगाना सीखें, उसको बड़ा बनाना सीखे, हरे वृक्ष देते ऑक्सीजन, पर्यावरण बचाना सीखे, आओ वृक्ष लगाना सीखे, बड़ी बड़ी हो

0: तेज धूप में छाया देंगे, राही को ठहराना सीखें। इस तरह जो है वृक्षों का बहुत ही महत्व है पर्यावरण में।
1: जी, अब एक संदर्भ विशेषकर मैं आपसे जानना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 14 से हम सबको एक ऐसी पहल से जोड़ा जिसमें हम स्वच्छता की बात करते हैं, सफाई की बात करते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की बात करते हैं। तो एक काम बहुत छोटा है लेकिन उसके इम्पैक्ट बहुत हैं, प्रभाव बहुत हैं पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए। इसमें भी कुछ आप कहना
0: हाँ,
1: चाहेंगे कविता?
0: प्रधानमंत्री जी ने सफाई की जो योजना आरंभ की थी
1: जी
0: उससे बहुत ही लाभ हुआ है। लोग जो हैं पर्यावरण के प्रति जागरूक हुए हैं।
1: जी
0: जगह जगह कूड़ा करकट फेंक देते थे, सड़कों पर चाहे जहां फेंक देते,
1: हाँ
0: बच्चे अपनी पॉलिथीने लेते हैं,
1: जी
0: बाजार
1: जी
0: से
1: जी
0: चीजें लेते हैं, उनको खा के चाहे जहां फेंक देते थे। इससे बहुत ही ज्यादा प्रदूषण होता था, नालियां रुक जाती थी, गंदा पानी रुक जाता था और हमारा शहर जो है बिल्कुल अस्वस्थ गंदा दिखाई देता था, जिससे बीमारियां फैलने का भय उत्पन्न हो गया था। अब क्या है कि लोग जागरूक हुए हैं, अपने घरों पर दरवाजों पर डस्टबिन रखने लगे हैं और नगर पालिका की तरफ से हर गलियों में, हर घर घर सफाई कूड़ा करकट इकट्ठा करने की गाड़ियां जाने लगी हैं और वो कचरे को नियमित रूप से इकट्ठा करके लाती हैं और अपना जो है एक जगह डंप करती हैं।
1: तो इस पर कुछ

0: था आपने वीओस में?
1: हाँ, मैंने कविता एक लिखी कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, वृक्ष हरे जो काट रहे हैं आओ रोकें उनको हम, ऐसे लोग किया करते हैं धरती पर हरियाली कम, सबके हित प्रभु रचना रचा, इन्हें स्वार्थ बस अपना दिखता, धरती का श्रृंगार मिटाकर तन कन आती इन्हें शरम, ऐसे लोग किया करते हैं धरती पर हरियाली कम, पर्यावरण

0: कम।
1: जी, तो इस तरह आप लोगों को ये चेतना देना चाहते हैं कि वृक्ष हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं, इनको न सिर्फ लगाना है, बड़ा भी करना है, पालन पोषण करना है और उनके संरक्षण की बात करनी
0: बात
1: है।
0: कहें, जब से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, स्कूलों में, उद्योगों में, कार्यालयों में, सब जगह जनता को, कर्मचारियों को, बच्चों को जागरूक करने के लिए ये पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना।
1: तो श्रोताओं, आप थे संतोष कुमार सिंह जी, विचार और वाणी से आपने हमारे श्रोताओं से कुछ संदेश दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत
0: बहुत बहुत
1: धन्यवाद।
0: आभार आपका।
2: अभी आप सुन रहे थे काव्यात्मक संवाद, विषय था पर्यावरण एक सामूहिक उत्तरदायित्व। वार्ताकार थे, अभी आप सुन रहे थे संतोष कुमार सिंह और इनसे बातचीत कर रहे थे ओपी सिंह। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर।

0: उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद। सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। विश्वास वह पक्षी है जो अंधकार में भी प्रकाश का अनुभव कर लेता है। रविंद्रनाथ ठाकुर। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: प्रयागराज और बलिया जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए प्रयागराज और बलिया जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं प्रयागराज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है प्रवीण कुमार मिश्रा का।
1: मई महीने के प्रथम सप्ताह में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षा मित्रों का सम्मान समारोह प्रयागराज जिला पंचायत सभागार में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शिक्षा मित्रों के वेतन में हुई बढ़ोतरी के लिए उन्हें शुभकामना व बधाई देते हुए कहा कि बढ़े हुए मानदेय के साथ कैशलेस चिकित्सा की सुविधा भी आप लोगों को प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि सभी के जीवन में खुशहाली आए यह हमारी सरकार का संकल्प है। उन्होंने शिक्षा मित्रों के कार्यों की प्रशंसा एवं सराहना करते हुए कहा कि बच्चों का भविष्य बनाने में आप सभी की महती भूमिका है। उन्होंने कहा कि 2017 के पूर्व लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहते थे, परंतु मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऑपरेशन कायाकल्प योजना के तहत स्कूलों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। स्कूलों में अब बच्चों के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे अब अभिभावक अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों के बजाय सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने जन प्रतिनिधिगणों के साथ कार्यक्रम स्थल पर बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों के बच्चों द्वारा बनाई गई चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मई के प्रथम सप्ताह में ही भारतीय सेना की ओर से 3 दिवसीय नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का शुभारंभ किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यू कैंट के कोबरा ऑडिटोरियम में दीप प्रज्वलित कर नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का उद्घाटन किया। यह संगोष्ठी भारतीय सेना

0: की उत्तरी कमान व मध्य कमान और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की ओर से 4 से 6 मई तक आयोजित की गई। उद्घाटन अवसर पर चीफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, आर्मी कमांडर मध्य कमान लेफ्टिनेंट जनरल अनिधि सेन गुप्ता, आर्मी कमांडर उत्तरी कमान लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा मौजूद रहे। नॉर्थ टेक सिंपोजियम का उद्घाटन करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे ज्ञान और शक्ति का महाकुंभ बताया। उन्होंने कहा कि यह वास्तव में रक्षा त्रिवेणी संगम है। रक्षा मंत्री ने कहा, हर कालखंड में वारफेयर का चेहरा बदला है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नई तकनीक का समावेश होते हुए दुनिया ने देखा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय रक्षा बलों के अद्वितीय साहस और दृढ़ संकल्प को दिया, जिसे स्वदेशी रूप से विकसित प्रभावशाली अत्याधुनिक हथियारों और प्रणालियों में और भी मजबूत बनाया। इस आयोजन का समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के विजन को रक्षा त्रिवेणी संगम में इस पवित्र संगम की धारा में साकार होते देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर 9 मई को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागराज के तत्वाधान में जनपद न्यायालय प्रयागराज एवं समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागराज सत्य प्रकाश त्रिपाठी द्वारा दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय लोक सेवा अदालत में कुल 2,30,121 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें फौजदारी के कुल 1,817 वादों का निस्तारण किया गया। पारिवारिक न्यायालय द्वारा कुल 80 वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया गया। जनपद न्यायाधीश प्रयागराज के निर्देशन में 9 जोड़ों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर एक साथ रहने के लिए समझौता किया गया और एक दूसरे को माला पहनाकर मिठाई खिलाई गई। इसी माह के दूसरे सप्ताह त्रिवेणी संगम तट पर नाविकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए आयोजित कार्यक्रम में प्रयागराज शहर उत्तरी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के द्वारा जनपद के नाविकों को 300 लाइफ जैकेट वितरित किए गए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नदी क्षेत्र में कार्य करने वाले नाविकों एवं संगम आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा लाइफ जैकेट दुर्घटनाओं की स्थिति में जीवन रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संबोधन के दौरान नाविकों से अपील की कि वे नाव संचालन के दौरान अनिवार्य रूप से लाइफ जैकेट का प्रयोग स्वयं करें तथा श्रद्धालुओं से भी करवाएं। यात्रियों को भी सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करें और नाव में सवार सभी लोगों के द्वारा जब तक लाइफ जैकेट नहीं पहन लिया जाए तब तक नाव का संचालन नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन एवं प्रशासन द्वारा नाविकों और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
1: प्रयागराज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बलिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विनय कुमार का।
2: बलिया जनपद में पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में विकास भवन सभागार में मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह तथा मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा ने की। समारोह में जनपद स्तर पर हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 11-11 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनकी शैक्षिक उपलब्धियों के लिए प्रोत्साहित करना तथा अन्य छात्रों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना रहा। इस अवसर पर चयनित विद्यार्थियों को मंच पर आमंत्रित कर 21,000 रुपये की प्रोत्साहन धनराशि की प्रतीकात्मक चेक पदक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित राज्य स्तरीय मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन को सुना और प्रदेश स्तर पर सम्मानित मेधावी छात्रों के समारोह का अवलोकन किया गया। बलिया के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला वृक्षारोपण समिति, जिला गंगा समिति एवं जिला पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वर्ष 2026 के वृक्षारोपण अभियान को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई तथा विभिन्न थीम आधारित वनों की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने सदस्य सचिव जिला वृक्षारोपण समिति एवं प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बलिया पृथ्वीराज के SB ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2026 में अलग अलग उद्देश्यों के अनुरूप विशेष प्रकार के वन विकसित किए जाएंगे। शासनादेश के अनुसार मिशन छाया, वंदे मातरम वाटिका, महर्षि चरक, औषधि वन, समरस वन, समृद्धि वन, कपि वन, ऊर्जा वन, अविरल धारा वृक्षारोपण और ग्रीन चौपाल जैसे कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने बताया कि मिशन छाया के तहत हीट वेव से राहत दिलाने के लिए पीपल बरगद

0: कल नीम, आम और कलम जैसे छायादार वृक्षों का रोपण सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों पर कराया जाएगा। वहीं वंदे मातरम वाटिका के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस पर 150 पौधों का रोपण कर विशेष वाटिका स्थापित की जाएगी। बलिया जिला स्वास्थ्य समिति एवं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य रिपीट जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जिले में 15 मई 2026 से 14 अगस्त 2026 तक विशेष अभियान चलाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। इस संबंध में विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गांव-गांव अभियान चलाकर पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि जिले में करीब 32,000 गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं। जिलाधिकारी ने ब्लॉक वार समीक्षा के दौरान लापरवाही पाए जाने पर संबंधित AMIOS को कड़ी फटकार लगाई और निर्देश दिया कि हर हाल में 14 अगस्त तक 100% आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं। उन्होंने प्रत्येक ब्लॉक और गांव के लिए साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित करने तथा उसकी नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी AMIOS को ANM एवं आशा कार्यकर्ताओं के साथ नियमित बैठक करने को कहा। साथ ही जनपद के शेष 6,53,615 पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों, कर्मचारियों और जन प्रतिनिधियों से अभियान में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। जनपद बलिया में जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 22 मई से प्रारंभ हुआ। जनपद में 8,050 प्रगणक एवं सुपरवाइजर कुल 7,005 हाउस लिस्टिंग ब्लॉकों में तैनात किए गए हैं, जो घर घर जाकर जनगणना 2027 में। अपर जिलाधिकारी जिला जनगणना अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि जनगणना अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के स्व जनगणना नोडल अधिकारी एवं राजनीति विज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर छवि लाल ने बताया कि
1: समस्त श्रोतागणों से निवेदन करता हूं कि वह भी जनगणना में सहभागिता सुनिश्चित करें और भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को 100% सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जिले की हलचल।
4: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम आबो हवा। आज का विषय है शुद्ध पर्यावरण और स्वस्थ जीवन। आलेख एवं वाचन ललिता गुप्ता का है।
5: एवं स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ पर्यावरण की ही परिणति है। पर्यावरण का प्रदूषित होना या निर्मल होना व स्वच्छ होना प्राणी मात्र के स्वास्थ्य के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा होना स्वाभाविक है। अतः स्वस्थ रहने के लिए पर्यावरण की स्वच्छता महती, प्रासंगिक एवं लाजमी है। पर्यावरण प्रदूषण ने तो मानव अस्तित्व के सामने ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। पर्यावरण सुरक्षा जीवन मरण का सवाल बन चुकी है। पर्यावरण के पवित्र एवं पूर्ण स्वरूप का ज्ञान नहीं होने से मनुष्य अपनी इंद्रियों के द्वारा अचेतन पदार्थों या जड़ पदार्थों का अति दोहन करके सुख प्राप्ति एवं स्वस्थ रहने का मिथ्या ढोंग करता है। इस प्रयास में जो मिथ्या सुख प्राप्त होता है वह वास्तविक आनंद नहीं और न ही तंदुरुस्त या स्वस्थ होने का सुखाभास, वरन दुख है, दुखानुभूति है एवं बीमारियों को खुला आमंत्रण है। सिंधु घाटी सभ्यता में वृक्ष पूजा के चिन्ह मोहनजोदड़ो में मिली मोहरों से मिलती है। वैदिक सभ्यता में प्रकृति के भय से त्रस्त मानव जीवन प्रकृति को देवता मान वायु जल अग्नि सोम चंद्र उषा वह अंतरिक्ष का अपने कल्याणार्थ आह्वान करता था। पंच महायज्ञों तथा अग्निहोत्र के माध्यम से पर्यावरण की शुद्धि होती थी। वन देवता व वन देवियों में जनता का विश्वास वनों को सुरक्षा प्रदान करता था। गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त करते ब्रह्मचारी प्रतिदिन वृक्षों का सिंचन करते थे। वनों से वो केवल सूखी लकड़ी ही काटते थे। वन्य जीवों की सुरक्षा का पाठ भी सीखते थे। मोटर वाहनों, कल कारखानों, घरों एवं कार्यालयों से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के जल वाष्प के संपर्क में आने से सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल के प्रभाव से अम्लीय वर्षा होती है, जो प्राणी जगत एवं वनस्पति जगत दोनों के लिए हानिकारक है। प्रदूषित जल ग्रहण करने से अनेक कीटाणु एवं रासायनिक अपशिष्ट पदार्थों

मिश्रित जल से फ्लोरोसिस बीमारी का होना स्वाभाविक है, अतः ऐसा जल पीने से बचना चाहिए। तभी तो आज जल शुद्ध करने के यंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है। वास्तव में देखा जाए तो शुद्ध पर्यावरण व स्वस्थ स्वास्थ्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने के साथ ही मनुष्य की आवश्यकताएं द्रौपदी की चीर की तरह बढ़ती गई और आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वृक्षों को मूक शहादत देनी पड़ी। प्रकृति प्रदत्त ओजोन रूपी अदृश्य कवच मानव की सुरक्षा सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से करता है। ओजोन पराबैंगनी किरणों को अपनी छाती पर झेलती है और टूटकर ऑक्सीजन गैस में बदल जाती है, जो कैंसर से हमारी रक्षा करते हैं। यदि सुखलिप्सा से अपना विनाश बुलाता मानव समय रहते सजग नहीं हुआ तो आंसू बहाने वाला कोई जीव शेष नहीं रहेगा। अतः अब तो जागो, हमें कीटनाशक रसायनों एवं प्लास्टिक उत्पादों का दैनिक जीवन में उपभोग यथाशीघ्र तथा यथासंभव न्यूनतम करना चाहिए, ताकि पर्यावरण प्रदूषण से स्त्रियों में एस्ट्रोजन के बढ़ते प्रभाव को कम किया जा सके। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम पर्यावरण संतुलन के महत्व को समझें। पर्यावरण को संतुलित एवं स्वच्छ रखकर ही हम हमारे स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। सघन वृक्षारोपण, वनों की सुरक्षा ही पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का समाधान दिखाई देता है। जनता में पर्यावरण सुरक्षा चेतना जगाकर पर्यावरण की समझ पैदा करनी होगी। यह अक्षरशः सत्य है कि विज्ञान विकास का ज्ञान है और विनाश का भी। हमें विज्ञान के दुरुपयोग से अपने विनाश को भी विज्ञान द्वारा रोकना चाहिए। आवश्यकता है इच्छा शक्ति के साथ साथ सतत जागरूकता की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबो हवा। आज का विषय था शुद्ध पर्यावरण और स्वस्थ जीवन। आलेख एवं वाचन ललिता गुप्ता का था। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर।

0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 साल होने के क्रम में कार्यक्रम याद है जरा जरा। वार्ताकार हैं रामगोपाल ADP और इनसे बातचीत कर रहे हैं OP सिंह।
1: श्रोताओं नमस्कार। श्रृंखला याद है जरा जरा के क्रम में, जिसको हम आकाशवाणी के 90 साल पूरा होने के संदर्भ में रखा है आपके लिए, इस श्रृंखला में बहुत सारे प्रसारण कर्मी और ऐसे कार्यकर्ता जो आकाशवाणी से जुड़े रहे, उनका साक्षात्कार, उनकी बातें, उनके संस्मरण और उनकी यादें हम आप तक लेकर के आए। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी और आकाशवाणी मथुरा में सहायक निदेशक के तौर पर कार्यरत रहे श्री रामगोपाल जी, जिन्होंने एक लंबा जीवन आकाशवाणी के साथ इस रूप में जिया कि बहुत सारे प्रसारणों का, बहुत सारे कार्यक्रमों का निर्माण किया, निर्देशन किया और आकाशवाणी का जो ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है, जिसमें जनता के लिए एक मैसेज के रूप में कार्यक्रम गए, उनमें वो प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में आगे पीछे जुड़े रहे, चाहे उसमें स्वयं निर्माण किया हो या उनका निर्देशन किया हो। तो ऐसे वरिष्ठ प्रसारण कर्मी और सहज स्वभाव के धनी रामगोपाल जी आज हमारे साथ हैं। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत, नमस्कार।
2: धन्यवाद
1: जी। तो आकाशवाणी निश्चित तौर पर एक बड़े ध्येय को लेकर के पूरे देश के साथ रही, जनता के साथ रही, समाज के साथ रही और बहुत सारा ऐसा कुछ जुड़ाव रहा समाज का और आकाशवाणी का कि ये संस्था न सिर्फ सांस्कृतिक मूल्यों के लिए रही बल्कि लोगों के जीवन में रची बसी रही और इस संबंध को आपने भी जिया है, स्वयं अंदर रह के भी और समाज के बाहर रह के भी। तो जो संस्मरण आपके आकाशवाणी और समाज के बीच के जो अन्योन्याश्रित एक संबंध होता है, एक दूसरे पर जो लगाव और जुड़ाव रहता है, उस अनुभवों को अगर हम अपने

0: के साथ लेके जाएं आपके ही विचार और वाणी से। तो हम चाहेंगे कि आप कैसे इस आकाशवाणी से जुड़े, कैसे आए और इस आकाशवाणी ने आपको क्या दिया, जो संस्मरण आपके साथ हैं, हमारे श्रोताओं के साथ बांटें।
1: सभी श्रोताओं को नमन करता हूं। वर्ष 1988 में मैं आकाशवाणी में आया।
0: जी
1: इससे पूर्व मैं केंद्रीय सचिवालय संवर्ग में सहायक अनुभाग अधिकारी के तौर पर काम करता था। रुचि उस समय भी थी आकाशवाणी में, क्योंकि मैं कार्यक्रमों को सुनता था और जब तब भाग भी लेता था। और यही वजह थी कि केंद्रीय सचिवालय की सेवा में रहते हुए भी मैं आकाशवाणी का जो आने का आकाशवाणी के प्रति मेरा जो आकर्षण है उसको मैं दूर नहीं कर पाया। और जैसे ही मुझे अवसर मिला मैं आकाशवाणी में नियुक्त हो गया। और मेरी पहली पदस्थापना जो हुई वो इंदौर में हुई।
0: जी
1: सौभाग्य से ये बहुत, मैं जहाँ जहाँ रहा वो बहुत अच्छे केंद्र और स्थान रहे। इंदौर मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है, शैक्षिक क्षेत्र में भी अग्रणी है। मराठी होलकर राजवंश की राजधानी प्राचीन काल में रही, आज भी ये एक बहुत ही समृद्ध शहर है, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो या फिर संचार के मामले में हो। यहाँ दूरदर्शन है, आकाशवाणी है और प्राइवेट संस्था भी काम करती हैं। बहुत से अखबारों का वहाँ पर दफ्तर है, मुख्यालय है।
0: जी
1: इसके बाद में आकाशवाणी शिवपुरी में भी रहा। शिवपुरी भी एक प्राचीन शहर है और ये सिंधिया राजवंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहती थी। यहाँ पर माधव नेशनल पार्क, घने जंगल और सिंधिया राजवंश की ही आज भी ऐसी दर्शनीय छतरियाँ हैं जिनको लोग देखने के लिए जाते हैं। ये एक पर्यटन स्थल है।
0: जी
1: वहाँ से आने के बाद मैं मथुरा रहा। मथुरा तो विश्व प्रसिद्ध है, कृष्ण की नगरी, जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ और इतिहास में भी इसका एक बहुत बड़ा लंबा, हम देखते हैं कि महाजनपदों में से एक ये सूटसेन रहा।
0: जी
1: तो आकाशवाणी, इसके आगे
0: जी
1: मैं पोर्ट ब्लेयर भी रहा, जो अंडमान निकोबार है, हमारा सुदूर क्षेत्र है। अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर से लौटने के बाद में आकाशवाणी की जो हमारी समाचार एकांश सेवा है उससे जुड़ा, आकाशवाणी दिल्ली का स्टेशन, और फिर अंत में महानिदेशालय में कार्य करते हुए मैं रिटायर्ड हुआ। तो आकाशवाणी जिस समय पर मेरा आगमन हुआ उस समय आकाशवाणी का अपना बहुत ही महत्व, बहुत ही लोकप्रियता लोगों के बीच में थी।
0: जी
1: और हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमने वो समय जिया आकाशवाणी के साथ में, जब लोग आकाशवाणी को बहुत गंभीरता से सुनते थे, मानते थे, और जो प्रसारण कर्मी हैं उनको भी बहुत वो
0: मतलब सम्मान की दृष्टि
1: सम्मान
0: से।
1: की दृष्टि से देखा करते थे।
0: जी
1: समय के साथ साथ कुछ बदलाव जरूर होते गए
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: क्योंकि बहुत सारे अन्य साधन मनोरंजन के आए। मीडिया के क्षेत्र में भी दूरदर्शन उस समय भी था, लेकिन बाद में ये जो जब ये रंगीन हुआ
0: जी
1: तो रंगीन दूरदर्शन पहले कुछ घरों तक था लेकिन बाद में बहुत आम हो गया। उसके बाद तो एक ऐसी क्रांति आई, मोबाइल आया, और मोबाइल में भी जो एंड्रॉयड और स्मार्टफोन हैं वो आ गए। उन्होंने तमाम चीज़ों को अपने
0: लोगों तक पहुंच सुलभ किया।
1: हाँ
0: जी
1: सुलभ करा दिया, चाहे वो रेडियो है या दूरदर्शन है, फिल्म का क्षेत्र है। इसका कुछ प्रभाव आकाशवाणी के प्रसारणों पर जरूर पड़ा है, क्योंकि पहले लोग सेट रखा करते थे, रेडियो सेट अपने घरों में, और बड़े चाव से अपनी
0: जी
1: जरूरत जैसी उनको अच्छे लगते थे कार्यक्रम सुना करते थे, पत्र भी लिखते थे। और बाद में जब मोबाइल से मैसेज भेजने की सुविधा दी गई
0: ऐसे
1: तो
0: जी
1: एसएमएस
0: SMS, अब तो
1: दिए गए,
0: व्हाट्सएप भी आ
1: व्हाट्सएप
0: गया।
1: भी आया, तो जो फीडबैक होता था श्रोताओं का वो भी बहुत अच्छा मिलता था। लेकिन जो ये जो अलग एक इलेक्ट्रॉनिक क्रांति आई, चाहे वो दूरदर्शन के सैकड़ों चैनल हैं या फिर हर हाथ में मोबाइल,
0: जी

0: चाहे वो कुछ भी करता है, उसके हाथ में एक मोबाइल है और सर्व चीजें सुलभ हैं उस पर, जो जो कुछ वो सुनना देखना चाहते हैं।
1: जी जी
0: लेकिन रेडियो अपने आप में एक ऐसा प्रसारण माध्यम रहा है जिसको बंद नहीं किया जा सकता, ये लोगों के जहन में रहेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि सेट अभी इतने उपलब्ध नहीं है और ये कारों में है
1: जी,
0: बसों में है, ट्रकों में है, ज्यादातर लोग कारों में रखते हैं और फिर मोबाइल में है।
1: जी जी
0: जिनको सुनना है तो वो मोबाइल में जब कभी देखते हैं, खासतौर से क्रिकेट कमेंट्री के लोग बहुत दीवाने हैं, वो देखते हैं मोबाइल से भी, और जहां कहीं सेट उपलब्ध है।
1: जी,
0: अब सेट बहुत कम रहे,
1: सेट न सही लेकिन हैंडसेट अब व्यक्ति के पास है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि रूप स्वरूप भले बदल जाए, मीडिया बदल जाए, मॉड्यूलेशन बदल जाए या सिस्टम बदल जाए, लेकिन आकाशवाणी अपने उसमें रहेगा, लोग उसको जिएंगे, चाहे कार्यक्रम बदल जाए, मेथड बदल जाए, लेकिन आकाशवाणी रूप स्वरूप बदलते रहेंगे लेकिन जिंदा रहेगा, लोगों तक पहुँचेगा उसमें। तो इसमें जो इसकी बहुजन हिता है, बहुजन सुखाए वाली छवि है, या जो एक सूत्र हुआ करता था कि भैया आकाशवाणी इंटरटेनमेंट करता है, जानकारी देता है और लोगों को एजुकेट भी करता है, तो आपने तो उस युग को जिया है कि इन चीजों के साथ साथ आपके अपने अनुभव क्या कहते हैं कि इससे भी परे था आकाशवाणी, लोगों को बहुत कुछ आकाशवाणी ने दिया है जिसको लोग आज अपनी स्मृतियों में जीते हैं, संजोते हैं उसमें।
0: जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय,
1: जी
0: ये भगवान गौतम बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित है और केवल ये एक आदर्श वाक्य नहीं है बल्कि आकाशवाणी के प्रसारणों ने इसको चरितार्थ किया है।
1: जी,
0: बहुजनों का हित, अधिकांश लोगों का हित और अधिकांश लोगों का सुख, हित अनेक तरह से किया, चाहे मनोरंजन की बात थी, जैसा कि सूचना शिक्षा मनोरंजन,
1: जी
0: हम ये एक उद्देश्य लेकर के चलते हैं कि हमारे प्रसारणों
1: जी आकाशवाणी के चार्टर में जी,
0: जी जी कि हमारे प्रसारणों से लोगों को ये मिले। लेकिन मैं ये मानता हूं कि सूचना शिक्षा मनोरंजन के साथ साथ आकाशवाणी ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर से विकास भी दिया है।
1: जी जी,
0: आप जानते हैं कि इसको भारत सरकार ने और अन्य लोगों ने भी माना कि जब हरित क्रांति आई तो उसको माना गया कि इसमें आकाशवाणी की बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ी भूमिका है। और हरित क्रांति ही नहीं, श्वेत क्रांति आई, फिर उसके बाद दूसरी क्रांति,
1: नीली क्रांति,
0: नीली क्रांति जिसको कहते हैं, मत्स्य पालन से संबंधित थी वो, तो ये सारी क्रांतियों को आकाशवाणी ने अपने प्रचार प्रसार से इतना लोगों में अच्छे तरह से,
1: मतलब वहां सुदूर तक, जन जन तक लेकर के गए।
0: बिल्कुल
1: उसको,
0: बिल्कुल
1: जी, जी।
0: और मैं ये भी मैंने खुद किया और देखा कि आकाशवाणी केवल मनोरंजन नहीं कर रही थी कि हम गीत संगीत सुना देते हैं। मेरी जो नियुक्ति हुई आकाशवाणी इंदौर में, वो शैक्षिक प्रसारण हिंदी भाषा में
1: जी
0: करने के लिए थी, और हम लोग सिलेबस बेस्ड, जैसे कि उस समय के निर्देश थे, पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल के बच्चों को हम लेसन पढ़ाया करते थे।
1: जी जी,
0: पूरी उसकी प्लानिंग होती थी साल भर की, स्कूलों में वो सारा शेड्यूल भेजा जाता था, कौन से दिन कौन से समय पर कौन से विषय का पाठ होगा, और हम जो जाने माने शिक्षक थे उनको स्टूडियो में बुलाते थे, छात्र भी बुलाते थे, और उनसे उन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग करते थे और पूरे प्रदेश स्तर पर उनका प्रसारण होता था। सबसे बड़ा फायदा ये था कि जिन क्षेत्रों में, जो सुदूर अंचल के हैं, मध्य प्रदेश में या दूसरे प्रदेशों में भी, जहाँ पर के अच्छे स्कूलों की पहुँच नहीं है, अच्छे शिक्षकों की पहुँच नहीं है, लेकिन रेडियो की पहुँच थी
1: जी,
0: रेडियो वहाँ तक भी पहुँचा जहाँ कोई नहीं पहुँचता है। तो मतलब केवल लोग थे, एक जंगल एरिया था, स्कूल की सुविधा नहीं थी, पर रेडियो ने उनको भी वो सब दिया जो वो
1: जो बड़े शहरों में था।
0: जी हाँ जी,
1: और ऐसे लोगों के माध्यम से जो अच्छे शिक्षक हैं, अच्छे विद्यालय हैं, अच्छे कॉलेज हैं, वहाँ की बात को रेडियो के माध्यम से सुदूरवर्ती एरिया में लेकर के गए जिस तक उनकी पहुँच नहीं थी। तो आप मतलब जहाँ रवि और कवि पहुँचता है, वहाँ रेडियो भी पहुँचा?
0: रेडियो भी बिल्कुल पहुँचता है
1: जी,
0: क्योंकि देखिए, अब जहाँ मनुष्य है वहाँ

0: तो रेडियो है ही, पर रेडियो एक वेव्स के माध्यम से जाता है, तो जहां
1: जी
0: वो नहीं रहते हैं वहां भी अगर हम
1: वाह
0: रेडियो ले जाएंगे
1: यार,
0: तो वहां
1: तो
0: रेडियो मिलेगा सुनने
1: जी
0: को।
1: जी जी
0: तो और रेडियो ने ये हमेशा देखा है कि कोई क्षेत्र ऐसा न रहे जो अछूता है। और लगभग, क्योंकि मैं महानिदेशालय में भी रहा हूं, लगभग 100% क्षेत्र हमारे देश का रेडियो से कवरेज है।
1: जी
0: लगभग मैंने इसलिए कहा कि आंकड़ों में कुछ कम आता है, लेकिन लगभग 100% क्षेत्र कवर किया
1: रेडियो
0: हुआ
1: से
0: है।
1: आज
0: हाँ
1: अच्छा देते
0: बिल्कुल
1: हैं
0: अच्छा
1: जी।
0: देता है।
1: तो क्या ऐसा लगता है कि इसी कारण से, क्योंकि रेडियो की पहुंच उस जगह तक थी, उस व्यक्ति तक थी और आसानी से थी, जहां हम आज आधुनिकता की बात भी पहुंचा सके। तो 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री चुन करके आए मोदी जी,
0: जी
1: तो
0: जी
1: उन्होंने अपनी मन की बात के लिए, अपनी दिल की बात के लिए रेडियो को चुना, ये इसका एक प्रमाण है।
0: जी बिल्कुल,
1: जी
0: ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि प्रधानमंत्री जी ने रेडियो को ही एक माध्यम
1: क्योंकि
0: चुना।
1: आप खुद कह रहे हैं कि विकल्प आज बहुत
0: हाँ
1: है, बहुत
0: हाँ
1: सारे चैनल हैं, बहुत
0: बिल्कुल
1: सारे
0: बिल्कुल
1: दूरदर्शन है, रंगीन भी है, और
0: जी
1: भी सारे माध्यम हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने उस नब्ज को पहचाना है कि व्यक्ति की जो जुड़ाव है वो रेडियो है, उसकी विश्वसनीयता है, वहाँ के
0: बिल्कुल
1: लोगों पर उसका विश्वास है। तो मेरी बात शायद मन की, रेडियो जितना आसानी से लोगों तक पहुँचा पाएगा वो और कोई माध्यम नहीं हो
0: जन
1: सकता।
0: जन तक अगर पहुंचना है तो रेडियो ही माध्यम है।
1: जी
0: आज भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हमारे देश में हैं जहां टेलीविजन नहीं है, या लाइट की, विद्युत आपूर्ति की वो उस तरह की सुविधा नहीं है जो चाहिए। तो और रेडियो तो उसके लिए कोई लाइट कनेक्शन की जरूरत नहीं
1: जरूरत
0: है,
1: नहीं है
0: और एक
1: सुविधा।
0: छोटा सा सेट है, पोर्टेबल है, और जैसा कि हमने पहले बात करी मोबाइल में
1: अब
0: है।
1: तो मोबाइल में है।
0: तो प्रधानमंत्री जी ने इस माध्यम को चुना और वास्तव में उसका वो उद्देश्य पूर्ण भी हुआ जैसा वो सोचते थे कि जन जन तक पहुंचे उनकी बात। और जिस तरह से उसकी प्रतिक्रियाएं उस कार्यक्रम की आती थी आकाशवाणी में भी और प्रधानमंत्री कार्यालय में, तो वो कई हजार की तादाद में होती थी, जिसमें हमारे आकाशवाणी का बहुत सारा स्टाफ उन पर भी काम करता रहा है, वहाँ
1: जी जी
0: आकाशवाणी दिल्ली
1: जी
0: का।
1: जी एक संस्मरण में मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि उस प्रोजेक्ट से आप जुड़े भी रहे और वो बड़ा रेडियो के बाद के दिनों में बड़ा लोकप्रिय भी हुआ और बड़ा सार्थक काम उसके माध्यम से हुआ, क्योंकि व्यक्ति जो समाज है
0: जी
1: उसमें हम सिर्फ मनोरंजन की, सूचना की, जानकारी की या विकास की बात नहीं करते, बल्कि जीवन मूल्यों कि वो थाती जो हमें आगे तक ले जानी है उसको भी समृद्ध करते हैं, और उसमें लोकगीत संगीत और लोक परंपराओं का बहुत महत्व है।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: रेडियो ने उन लोक परंपराओं को लोकगीतों के माध्यम से, संस्कार गीतों के माध्यम से, आज क्योंकि जब हम देखते हैं कि एक समय था समाज में शादी 7 दिन की होती थी, महीनों कार्यक्रम चलते
0: जी
1: थे, और
0: हाँ
1: आज एक दिन भी सब लोग एक समय पर इकट्ठा नहीं हो पाते,
0: जी हाँ
1: तो
0: जी
1: चीजें छूट रही हैं, चीजें कम हो रही हैं, चीजें अपने मूल रूप से भटक रही हैं। तो संस्कार गीतों के माध्यम से रेडियो ने जो काम किया कि कल को जब बहुत समय बाद लोग आएंगे, देखेंगे कि हमारे समाज के और हमारे संस्कारों के क्या गीत हुआ करते थे, क्या
0: जी जी
1: संगीत हुआ
0: जी
1: करते,
0: जी
1: उसको आपने महानिदेशालय में रहते हुए उसको संग्रह किया,
0: बिल्कुल
1: तो इसके
0: बिल्कुल।
1: पीछे का जो उद्देश्य था वो क्या था?
0: संगीत के क्षेत्र में भी आकाशवाणी का जो योगदान है वो महत्वपूर्ण है। हम अगर जो सबसे मतलब अच्छा है लेकिन कम सुना जाता है शास्त्रीय संगीत, वो पहले राजा महाराजाओं के दरबार तक होता था। एक रेडियो ऐसा माध्यम था जिसने जगह जगह से जो भी हमारे अच्छे कलाकार थे उनको सामने लाए और उस शास्त्रीय संगीत को हर जगह पहुंचाया,
1: जी
0: आम आदमी तक पहुंचाया, जो पहले कुछ घरानों तक या बड़े जमींदारों या राजाओं महाराजाओं तक होता था, वो आम लोगों तक पहुंचाया शास्त्रीय संगीत। और उसमें इतने बड़े बड़े कलाकार हैं आज भी, जिन्होंने न केवल इस देश का बल्कि इस देश में बल्कि विदेशों में भी अपने बहुत सारे कार्यक्रम किए और इस देश का नाम किया। गर्व की बात यह है कि उनको ऊपर तक पहुंचने में वो खुद मानते हैं आकाशवाणी की बड़ी भूमिका रही।
1: जी जी जी
0: तो इस तरह के जो, और शास्त्रीय संगीत के अलावा जो हमारा सुगम संगीत है, और खास तौर से जो बात की आपने लोक
1: लोक
0: संगीत की,
1: संगीत है।
0: संस्कार गीतों की, इन्होंने तो क्रांतिकारी काम किया है। आज लोक संगीत को हर कोई पसंद करता है
1: जी
0: क्योंकि

0: हम कहीं भी चले जाएं, कुछ भी सीख लें, लेकिन हमारी जड़ें तो वहां से, गांव से हैं,
1: से, संस्कृति
0: और लोक
1: से
0: हैं, जहां लोक संस्कृति है वहां से हैं, तो वो हमने कभी न कभी किसी न किसी रूप में सुना हुआ होता है। तो जब वो चीज हमारे सामने आती है तो आज भी हम उसको पसंद करते हैं, और जितने बार हमारे तीज त्यौहार होते हैं या हमारे जितने बड़े बड़े, चाहे जन्माष्टमी कार्यक्रम है, चाहे राम जन्म है, या और भी बड़े बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें लोकगीत गाए और सुने जाते हैं, और रेडियो ने प्रचार प्रसार में उसमें कोई कोर कसर नहीं रखी है। आज भी रेडियो के इन संगीत के कार्यक्रमों को, और बहुत सारी ऐसी रेडियो की विधा थी लोक संगीत की जिनको लोग प्राय भुला चुके थे, हमारे यहाँ से नौटंकियों का प्रसारण होता है, ढोला का प्रसारण होता है, हीर राजा का प्रसारण होता है, लोक संगीत में जो तमाम विधाएं हैं उनको हम बताते हैं, फला विधा है और उस तरह का प्रसारण होता है, तो लोगों में केवल मनोरंजन नहीं दिया, जानकारी भी दी।
1: जी, जी, जी, जी।
0: और जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, जो पढ़ रहे हैं या शोध कर रहे हैं, उनको भी रेडियो ने सिखाया है।
1: जी, जी,
0: उनको
1: जी।
0: भी बहुत कुछ उसके माध्यम से मिला।
1: जी, जी। तो कुछ ऐसे लोगों को आप याद करना चाहेंगे जो आकाशवाणी मथुरा में रहे, आकाशवाणी मथुरा में कार्य किया और फिर विश्व फलक पे या राष्ट्रीय स्तर पे विभिन्न विधाओं में गए? तो ये एक ऐसी पुरानी संस्था जो एक बहुत लंबे समय से इस ब्रज भूमि में या ब्रज संस्कृति में कार्य कर रही है, इसका ब्रज संस्कृति को बढ़ाने में एक उल्लेखनीय योगदान
0: जी,
1: है। जी,
0: 1995 में मैं आकाशवाणी मथुरा में आया था।
1: जी,
0: उससे पूर्व डॉक्टर अचला नागर यहाँ रह चुकी थी, मैंने उनके बारे में बहुत सुना था, और फिर बाद में यहाँ मुलाकात भी हुई। वो मथुरा से थी, मथुरा में काम किया, और वास्तव में उन्होंने बहुत ऊपर तक गई, फिल्म क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा नाम
1: जी,
0: है
1: जी।
0: उनके बेटे संदीप नागर भी यहाँ नाटकों से जुड़े रहे, उनका भी जो है ना फिल्मों के क्षेत्र में, धारावाहिकों में बड़ा नाम रहा। हमारे यतीन्द्र चतुर्वेदी जो मेरे सहकर्मी थे, मेरे साथ रहे, उन्होंने नाटक के क्षेत्र में बहुत बड़ा यहाँ पर काम किया, स्टेज शो करे, स्टूडियो के करे, और इसके अलावा वो फिल्म और सीरियल में भी गए।
1: जी, बाद तो तक में
0: उन्होंने
1: काम
0: नाम है।
1: जी जी जी। और तो, अचला नागर जी की तो जो बाद में पिक्चर आई बागमा, जिसकी उन्होंने वो लिखी थी पटकथा,
0: हाँ,
1: वो बड़ी लोकप्रिय हुई और उसमें बड़ा नाम भी
0: जी,
1: हुआ
0: जी,
1: उनका। उसमें रविंद्र जैन जी को शायद याद करना चाहिए।
0: बिल्कुल, रविंद्र जैन जी भी आकाशवाणी से जुड़ा रहा, अलीगढ़ के वो रहने वाले, और आकाशवाणी को वो भी मानते हैं
1: जी जी
0: कि
1: जी।
0: आकाशवाणी ने बहुत कुछ लोगों को दिया है, माध्यमों को दिया है, चाहे फिल्म क्षेत्र है। आज फिल्मों में आप देखेंगे कि कितने ही सारे गीत हैं जो लोक संगीत पर आधारित हैं।
1: जी जी जी। और वो कभी मतलब ऐसा नहीं है, वो हमेशा हिट होते हैं। जब भी लोक संगीत फिल्मों में आता है तो वो हिट होता
0: और
1: है।
0: जो
1: तो
0: कलाकार फिल्मों में गए हैं
1: जी जी,
0: वो भी रेडियो से कहीं ना कहीं तौर से उनका जुड़ाव था। तो रेडियो ने हर क्षेत्र में, कोई चाहे संगीत और कला का ही क्षेत्र नहीं है, अन्य क्षेत्रों में भी जब हम विकास की बात करते हैं, औद्योगिक प्रसारण हमारे यहाँ से होते रहे, श्रमिकों के लिए प्रसारण, कामगारों के लिए प्रसारण होता है, दृष्टि बाधितों के लिए कार्यक्रम होता है, जो हमारे दिव्यांग भाईजन हैं, भाई बहन हैं, उनके लिए कार्यक्रम होते रहे हैं, छत्र छाया बुजुर्गों के लिए कार्यक्रम होते रहते।
1: मतलब तो जीवन की हर वो गतिविधि, हर वो क्षेत्र जो हमें कहीं ना कहीं सहेजने संवारने की बात है, उससे जुड़ा हुआ कार्यक्रम आकाशवाणी पे हमेशा मिलेगा, और समसामयिकता उसकी मूल पहचान है। हर संस्कृति, पर्व त्योहार, दिवस या जन्म जयंती विशेष, रेडियो हमेशा उनको जीता
0: बिल्कुल
1: है।
0: इतना व्यवस्थित और इतना प्रणालीबद्ध किसी भी माध्यम के कार्यक्रम नहीं मिलेंगे जैसा आकाशवाणी में होता है। एक बाकायदा शेड्यूल होता है प्रसारणों का, इतने बजे ये होगा, सुबह के समय क्या होना चाहिए, दोपहर में क्या होना चाहिए, गीत गजल के कार्यक्रम है, कव्वाली के कार्यक्रम है तो रात या शाम को होने चाहिए, सुबह सुबह में वंदना, रामचरितमानस, ऐसे धार्मिक कार्यक्रम। तो ये एक इतना मतलब सोचा समझा, इतना अच्छे से सिस्टमैटिक प्रणालीबद्ध किया गया है कि लोग इसके मुरीद रहे।
1: जी, और शायद इसके पीछे ये रहा होगा कि जब 1947 में आज़ादी मिली और जब कला संस्कृति और कलाकारों को प्रश्रय देने वाली संस्था राजघराने नहीं रहे, तो फिर लोक कल्याण के लिए

0: जीवन के लिए और लोक संस्कृति को जीवंत रखने के लिए एक ऐसी संस्था खड़ी की जाए, उस समय के लोगों ने सोचा होगा, और उस काम को बखूबी आकाशवाणी ने निभाया।
1: जी बिल्कुल,
0: जी
1: आकाशवाणी ने अपने काम में, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा है।
0: जी
1: आज चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी, जितने हमारे देश में
0: जी,
1: हुए हैं,
0: जी, जी।
1: वो उन्होंने कोई भी सार्वजनिक सभा देश के किसी भी कोने में की है उसकी रिकॉर्डिंग हमने की और आज तक वो संरक्षित है और हमेशा हमेशा तक रहेगी।
0: जी,
1: तो ये कार्य और हमने अपनी जिम्मेदारी समझ के करा है।
0: जी,
1: ऐसे
0: जी।
1: नहीं कहा
0: इसके लिए कोई आदेश नहीं था।
1: हमें कोई कहा जाता है कि आपको करना है या करिए, ये हमने शुरू से हमने अपनी जिम्मेदारी माना। और हम एक तरफ तो हम बड़े राजनेताओं, बड़े प्रशासनिक अधिकारियों, वैज्ञानिकों को हम बुलाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, सुनवाते हैं, दूसरी तरफ हम किसानों को, कामगारों को, मजदूरों को भी उसी सम्मान के साथ यहाँ बुलाते हैं और उनकी बात सुनते हैं और उनके लिए जो कुछ उपयोगी हो सकता है आकाशवाणी की ओर से बताया जाता है।
0: मतलब एक आम नागरिक से लेकर के एक सर्वोच्च नागरिक तक, जिसमें राष्ट्रपति की आप बात करें, सबको बराबर का मान सम्मान और अवसर आकाशवाणी ने दिया। आपका ये सौभाग्य ही मैं कहूँगा कि आपकी जो जन्मस्थली रही वो कर्मस्थली भी रही, मतलब मथुरा में आप पैदा भी हुए और मथुरा में आपने इस संस्था को जिया, इस संस्था के कार्यक्रमों को जिया। तो एक जो सेटिस्फेक्शन होता है, एक जो संपूर्णता का भाव होता है, एक ऐसा लगता है कि हाँ, जीवन में हमने भाई पैसा बहुत नहीं मिला हो, हमने बहुत आर्थिक प्रगति नहीं
1: हाँ,
0: की
1: बिल्कुल
0: हो,
1: आप जो कह रहे हैं,
0: लेकिन
1: मैं
0: जीवन
1: हाँ,
0: से अपने से
1: मैं बिल्कुल
0: संतुष्ट हूँ,
1: समझ रहा हूँ,
0: ऐसी संस्था में काम करने का
1: देखिए
0: मौका
1: हाँ,
0: मिला।
1: इससे ये होता है
0: जी
1: कि मतलब जो जो कुछ हम बचपन से हमने सुना, जो कुछ लोक संगीत के क्षेत्र में स्वांग और नौटंकी बहुत होते थे, मैंने बहुत सुना, तो वो सारी चीजें हमने यहाँ की और लोगों तक पहुंचाई। और मुझे वो चीज याद है, एक समाधान कार्यक्रम हुआ करता था, तो एक बार हमने किसी उनके जो बड़े अधिकारी थे, सुपरटेंडिंग इंजीनियर अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग के, उनको बुलाया। एक पत्र में कहा गया था कि जी हमारे गांव में खंभे लगे हैं, खंभों पर तार भी लगे हैं, लेकिन जी महीनों हो गए उसमें करंट नहीं आता, लाइट नहीं होती। तो अधीक्षण अभियंता जी जो यहाँ पर आए हुए थे, वो यहाँ पर बोल के गए कि एक सप्ताह के अंदर वहां पर लाइट होगी गाँव में। और फिर ऐसा हुआ भी, उन्होंने पत्र लिख के बताया भी कि जी ये इसको तो हम आकाशवाणी की महिमा या आकाशवाणी का ही देन मानते हैं कि आज हम गांव में प्रकाश में हैं, लाइट में हैं, नहीं तो यहाँ तो ये बहुत दिन से हालांकि ऐसा नहीं है कि वो काम हमने किया
0: जी,
1: लेकिन किसी भी तरह से वो
0: जो गैप था, एक
1: छूटा हुआ था
0: सूचना का या किसी कार्य प्रणाली की वजह से रुका हुआ था, वो काम हो गया और आकाशवाणी उसमें माध्यम बना, तो ये सेटिस्फेक्शन है।
1: बिल्कुल, कितने ही लोगों ने कहा कि जी जो बस की सेवाएं हैं उसमें सुधार हुआ है आपके कार्यक्रमों से, कितने ही लोगों ने किया कि रेलवे स्टेशनों पे आपके कार्यक्रमों से सुधार हुआ है, लोग आकर के यहाँ बताते थे। और कितने ही लोगों ने कहा कि कृषि में जो कुछ आपका प्रसारण होता है हमें बहुत मदद मिलती है, सुबह सुबह जो 5 मिनट का आप कृषि सूचना नाम से करते हैं, वो किसान लोग उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं। आज गांव का जो सामान्य सा किसान है, कहीं भी जाने से डरता है, वो जो मृदा संरक्षण और मृदा का जो टेस्टिंग होती है वहां बड़े फक्र से चला जाता है और अपनी मिट्टी को लेके जाता है कि जी हमारी मिट्टी टेस्ट कर दो, और वहां पर वो की जाती है और उसकी रिपोर्ट भी दी जाती है, और फिर उसके अनुसार वो अब उसमें कैसे खाद लगानी है, किस कब क्या सिंचाई करनी है, कैसे वो सारा उसके अनुसार करते हैं। और खेती में भी बचपन से देखते देखते हमें बहुत बड़ा बदलाव आया है, तो इसमें भी रेडियो का
0: जी,
1: बहुत
0: मतलब रेडियो व्यक्ति के जीवन के हर पहलू को जीता है, हर उसकी संवार करता है, नैतिक मूल्यों से लेकर के उसकी आज की जो जरूरत है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, एक संपूर्ण विकास जिसमें कहा जाता है कि हम सिर्फ शरीर से ही नहीं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें और आध्यात्मिक रूप का जीवन जी करके आनंदित भी रहें, तो संपूर्णता को जीवन।
1: ओपी सिंह जी, मैं आखिर में कुछ बात वो बताना
0: जी जी
1: जरूरी समझ रहा था कि आज जो रेडियो की स्थिति हो गई है,
0: जी जी,
1: हम ये कहते हैं कि रेडियो का पतन हुआ है, पतन तो नहीं है, ये खत्म नहीं होगा, लेकिन गिरावट जरूर आई है। जो पहले के लोगों में रुचि थी, और जो पहले चाहे वो प्रसारण कर्मी थे या सुनने वाले थे
0: जी,
1: तो प्रसारण कर्मियों की जहां तक बात है, कुछ तो व्यवस्था

0: संस्थागत चीजें हुई हैं जो पहले जैसी नहीं रह पाई,
1: जी जी
0: हो सकता है कि समय के अनुसार वो ठीक होंगी, पर अब जरूरत ये हो गई है कि जो हमारे प्रसारण हैं उनमें बदलाव की जरूरत है, अगर कभी हो सकता है या करा गया। देखिए, हम लंबी लंबी भेंटवार्ताएं या परिचर्चाएं या परिसंवाद या कविता पाठ अब नहीं सुनना चाहते,
1: जी जी
0: लोग
1: जी।
0: नहीं सुनना
1: अब
0: चाहते।
1: छोटे समय में
0: जरूरत ये होती है कि जो हम सुनना चाहते हैं, जैसे कि हास्य की चीजें, हास्य का कविता, हास्य के जो छोटी छोटी झलकियां, या फिर हमारा गीत संगीत, चाहे फिल्मी गाने चाहे लोक संगीत है, उनको जो हम पसंद करते हैं, चाहे हम अपनी कारों में या बसों में उनको जो हम पसंद करते हैं, उसी में हम उन बातों को कहें बीच बीच में। जैसे हम विज्ञापन तैयार करते हैं
1: जी जी।
0: तो वो बातें जो जनोपयोगी बातें हैं वो बीच बीच में उन कार्यक्रमों में जाएं, लेकिन उसी तरह से जिस तरह से हम विज्ञापन को बनाते हैं बहुत अच्छा
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: इस तरह से अगर प्रयास
1: मतलब
0: किया
1: कम समय में सार्थक रूप से गंभीरता के साथ उन बातों को उन संदेशों
0: लोगों तक पहुंच
1: जाए
0: और उन कार्यक्रमों के माध्यम से जाए जिनको वो पसंद कर रहे हैं।
1: जी जी जी। तो ये समय की मांग है
0: जी जी,
1: ये आप
0: बिल्कुल।
1: और कुछ चलते चलते कहना चाहें कि भाई ठीक है, आपने वैसे सारी चीजें समाप्त कर
0: दी है। हम सबको जो हमारे प्रसारण कर्मी हैं, हमारे श्रोता हैं, आशावादी रहना चाहिए और निश्चित रूप से समय बदलता है, कहीं कुछ लगा है कि गिरावट हुई है तो अच्छा भी आएगा, हमें ये मानना
1: जी,
0: चाहिए।
1: जी जी। तो श्रोता बंधु, आप थे श्री राम गोपाल जी, जो वरिष्ठ प्रसारण कर्मी रहे, आकाशवाणी मथुरा से भी जुड़े रहे, सहायक निदेशक के तौर पर सेवानिवृत्त हुए, और कुछ संस्मरण जो उनके अपनी संस्था को लेकर के, समाज को लेकर के और वर्तमान परिस्थितियों को लेकर के जो है वो आपके साथ साझा किए। राम गोपाल जी, आप आए, आपने संस्था के उस समय को याद किया, उन लोगों को याद किया और उन कार्यक्रमों को याद किया जो संस्था जिसके लिए समर्पित थी, संस्था जिसके लिए जुड़ी रही, और वर्तमान रूपों में जो परिवर्तन आज आवश्यक है उसको भी आपने उल्लेखित किया। तो श्रोता मिस, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे पीछे भी गए होंगे और आगे भी सोच रहे होंगे।
0: तो पीछे जी, मैं भी जो है ना आपका और हमारे अन्य प्रसारण कर्मी जो है उनका धन्यवाद करता हूँ, और श्रोताओं का भी जो मुझे उनसे मुखातिब होने का अवसर आपने दिया और मुझे मिला।
1: जी जी,
0: धन्यवाद,
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 साल होने के क्रम में कार्यक्रम याद है जरा जरा। वार्ताकार थे राम गोपाल एडीपी और इनसे बातचीत कर रहे थे ओपी सिंह। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतिन बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: है काम आदमी का दूसरे के काम आना।
1: क्या बात है काम आदमी का दूसरे के काम आना। धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार को भेजने के लिए। अब आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी का।
2: और अगला संदेश मिला है महाराष्ट्र से प्रथमेश हेड़के जी का। उन्होंने लिखा है, मुझे NCERT का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद है, हर दिन, हर बार, हर रोज सुनता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: इलाहाबाद से रेशमा नाज डोम और बेबी अंसारी डोम।
1: आप सबको हमारा आभार संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं संदेश जरूर भेजिए क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। साथियों इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख मरुस्थलों की। कल हमारी चर्चा का विषय था गोभी का

0: शीत मरुस्थल।
1: इन कड़ियों में हमने विशेष रूप से ये जाना था कि मरुस्थल या मरुभूम कहलाने के लिए किसी क्षेत्र में रेत ही रेत हो या बहुत गर्मी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
0: जी हाँ श्रोताओं, मरुभूमि या मरुस्थल की परिभाषा उस क्षेत्र की निर्जलता या अति अल्प वृष्टि पर निर्भर करती है।
1: जी
0: तो विमलेश जी, आज हम किस शीत मरुस्थल की चर्चा करने जा रहे हैं? मेरे विचार से क्यों ना भारत के शीत मरुस्थलों की चर्चा की जाए।
1: अजीत जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सोच रही थी कि आज हम भारत के शीत मरुस्थल की चर्चा करते हैं जो लद्दाख में है। आपको याद है NCERT की ओर से मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम भी वहां जा चुके हैं।
0: जी हाँ, हमने उस इलाके को देखा भी है।
1: जी बिल्कुल, मुझे भी याद है। तो श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे लद्दाख के शीत मरुस्थल की। इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। जैसा कि हमने सुना था, मरुस्थल का अर्थ सिर्फ रेत नहीं होता, बल्कि वो जगह मरुस्थल कहलाती है जहां वर्षा बहुत कम होती है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि लद्दाख में सालाना वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 50 से 100 मिलीमीटर के लगभग।
0: लेकिन विमलेश जी, ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है कि वहां यानी लद्दाख में इतनी कम वर्षा क्यों होती है?
1: अजीत जी, इसका कारण यह है कि लद्दाख का क्षेत्र हिमालय पर्वत की रेन शेडो यानी वर्षा छाया में स्थित है। हिमालय पर्वत यहाँ आने वाली वर्षा को रोकता है। अजीत जी, मुझे तो ये भी याद है कि वहां जाने पर हमें शुरू में सांस लेने में भी थोड़ी कठिनाई हुई थी।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहाँ की हवा अधिक ऊंचाई के कारण बहुत पतली होती है
1: जी
0: और ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए पहली बार जाने वालों को कुछ विशेष सलाह दी जाती है। बताइए क्या सलाह दी जाती है?
1: जी वहां पहली बार जाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि तेज न चलें, ज्यादा ऊंची चढ़ाई न चढ़ें और भारी शारीरिक काम जैसे ट्रैकिंग वगैरह एकदम से उत्साह में आकर न करें।
0: जी
1: पहले वहां के वातावरण में अपने शरीर को अनुकूलित करें और फिर धीरे धीरे सामान्य गति में आएं।
0: जी बिल्कुल सही। श्रोताओं, यहाँ का तापमान सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे जा सकता है,
1: जी
0: लेकिन गर्मियों के दिनों में धूप तेज लगती है।
1: जी
0: लद्दाख का अर्थ ही है ऊंचे दर्रों वाली भूमि। श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि यह दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल मार्गों में गिना जाता है।
1: अब बात करते हैं यहाँ पाए जाने वाले जीवों की, खास तौर से यहाँ याक, स्नो लेपर्ड, हिमालयी भेड़िया और नीली भेड़ पाई जाती है। और हाँ, लद्दाख की झीलें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जैसे पेंगोंग झील। श्रोताओं, और अब जानते हैं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: तो विमलेश जी, यहाँ के मुख्य भोजन हैं स्कू और थुकपा।
1: जी
0: ये गेहूं के आटे से बना होता है। पावा भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है, जो जौ के सत्तू से बनाया जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई खुबानी से बनती है।
1: जी
0: यहाँ लोग अपने घर मोटी मिट्टी और पत्थरों से बनाते हैं ताकि घरों में गर्मी बनी रहे।
1: जी
0: जहां तक खेती की बात है, यहाँ विशेष रूप से जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं।
1: अजीत जी, एक और रोचक बात श्रोताओं से साझा करना चाहती
0: हाँ
1: हूँ।
0: हाँ जरूर कीजिए।
1: वो ये कि लद्दाख में एक पेड़ बहुत अधिक पाया जाता है जिसे विलो कहा जाता है।
0: जी
1: इनकी लकड़ी हल्की, मजबूत और लचीली होती है। इसी लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। दुनिया भर में इस लकड़ी की बहुत मांग है, इसलिए लद्दाख में इसकी खेती भी की जाती है।
0: जी, ये तो आपने बड़ी रोचक जानकारी हमें दी। विमलेश जी, आपको याद है जब हम वहां गए थे मैग्नेटिक हिल,
1: बिल्कुल याद है।
0: जहां यदि वाहनों को बंद भी कर दिया जाए या न्यूट्रल गियर में भी रखा जाए तो
1: जी
0: वो खिसकने लगते हैं?
1: बिल्कुल
0: क्या रहस्य है इसका, जरा श्रोताओं को बताइए।
1: अजीत जी, ये जगह लेह कारगिल मार्ग पर स्थित है। हमने भी तो इसका अनुभव किया था।
0: हाँ
1: लोग अक्सर सोचते हैं कि वहां पहाड़ियों में कोई चुंबकीय शक्ति है जो वाहनों को खींचती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार वास्तव में वाहन वहां अपने आप नहीं चलते। ये एक दृष्टि भ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन है।
0: जी श्रोताओ, दरअसल बात यह है कि वहां की सड़क की बनावट ही ऐसी है कि जो सड़क हल्की ढलान पर नीचे जा रही होती है, वो आंखों को ऊपर ऊपर जाती दिखाई पड़ती है।
1: जी
0: इसी दृष्टि भ्रम से ऐसा लगता है कि वाहन अपने आप सरक रहे हैं। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर गुरुद्वारा पत्थर साहिब है, जो एक दर्शनीय स्थान है।
1: श्रोताओं, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ बौद्ध संस्कृति, मठ, प्रार्थना चक्र और रंग बिरंगे खूबसूरत झंडे देखे जा सकते हैं। और तो और, सिंधु घाटी की सभ्यता को पालने वाली सिंधु नदी लद्दाख से ही गुजरती है। श्रोताओं, इस नदी को देखना भी हमारे लिए कभी न भूलने वाला अनुभव था।
0: जी, सुंदर नीला आकाश, रात में असंख्य चमकते हुए तारे,
1: जी
0: रेत, बर्फ, सूखे पहाड़, झीलें और वहां

0: की आध्यात्मिक संस्कृति।
1: हम्म,
0: जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें क्या लगता है विमलेश जी?
1: कि भारत के शीत मरुस्थल लद्दाख में हमें एक साथ मिलते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के प्रसिद्ध शीत मरुस्थल लद्दाख की।
1: जी
0: आशा है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और आप हमारे ईमेल पर भी अपने संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,

0: जाता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं।
0: और श्रोताओ, यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर यानी ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो इन्हें आप एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल या दीक्षा पर सुन सकते हैं। दीक्षा पोर्टल पर आप पढ़ पाएंगे ढेर सारी शैक्षिक सामग्री और सुन व देख पाएंगे हमारे ऑडियो वीडियो कार्यक्रम भी।
1: जी, और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
0: भारत अर्थात इंडिया।
1: कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से भारत देश के विभिन्न नामों के बारे में बताया गया है और उन नामों के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी सप्रसंग विवरण किया गया है।
2: भारत अर्थात इंडिया।
3: दोस्तों, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम, जहां हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच।
4: Wonderful shot. The scoop shot. It gets through. It's a big one. It's a huge boundary. Goes wide through the offside. He's got him. That's it. India win.
3: अनुष्का भीड़ की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो सोचने लगी,
5: हमारे देश के इतने सारे नाम, कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, तो कोई हिंदुस्तान भी कहता है।
3: दोस्तों, अनुष्का का कौतूहल स्वाभाविक था। क्या आपने भी कभी इस प्रकार से सोचा? अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोचा तो चलिए आज इस मनोरंजक और रोचक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। अनुष्का अपने स्कूल गई, लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं गई थी। उसने ये बात अपनी सहेली जिशा से साझा की। तय ये हुआ कि वो अपने हिस्ट्री के अध्यापक से बात करेंगे। वो बात ध्यान से सुनते हैं और बोलने का मौका भी देते हैं।
6: सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं?
7: कौन? ओ, अनुष्का, जिशा, तुम दोनों आ जाओ, अंदर आ जाओ। शाबाश।
6: क्या अभी आपके पास समय होगा?
7: तुम लोग बिल्कुल ठीक समय पर आए हो।
6: सर, उस दिन हम क्रिकेट मैच देखने गए थे।
7: हाँ, वो बांग्लादेश और भारत का।
6: जी वही। सर, उस दिन लोग वहाँ कुछ बातें कर रहे थे।
7: अच्छा।
6: सर, कोई कहता था कि इंडिया जीतेगा, तो कोई कहता कि भारत ने मैच जीता।
7: और
6: कोई कहता था कि हिंदुस्तान की टीम ने कमाल कर दिया। और
7: हाँ, बोलो।
6: सर, हमारी पुस्तक में देश का नाम भारतवर्ष भी तो है।
7: बिल्कुल।
6: लेकिन सर, दूसरे देशों के इतने सारे नाम तो नहीं होते। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों के नाम तो एक ही है। फिर हमारे देश के इतने ढेर सारे नाम क्यों हैं?
7: बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चों, आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन ये आज से 500, 2000 या 5000 वर्ष पहले ऐसा नहीं था।
6: 5000 वर्ष पहले?
7: हाँ, इसके लिए हमें हजारों वर्ष पहले के इतिहास में जाना होगा।
6: जी, लेकिन हमें हजारों वर्ष पहले की जानकारी कैसे मिलेगी?
7: अच्छा ये बताओ, तुमने ऋग्वेद का नाम सुना है?
6: जी सर, सुना तो है। ये एक प्राचीन ग्रंथ है।
7: प्राचीन ही नहीं, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
6: अच्छा।
7: इस ग्रंथ से हमें अपने देश के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं।
6: जैसे?
7: जैसे इस ग्रंथ के अनुसार हमारे देश के उत्तर पश्चिम भाग में एक वैदिक समूह निवास करता था।
6: वैदिक समूह?
7: हाँ, वैदिक समूह। इस समूह के ऋषियों और मुनियों द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। इस वैदिक समूह का नाम भरत था।

0: भरत?
1: भरत नाम तो हमने सुना है।
2: अच्छा भाई, भरत नाम से बाद में बहुत से राजाओं को भी जाना गया।
0: ओह भरत, अच्छा तो ये बात है।
2: हाँ।
0: तो क्या इसी भरत नाम से देश का नाम भारत पड़ा?
2: बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुष्का, इसी नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जिसे बाद में भारतवर्ष भी कहा जाने लगा। ये वैदिक समूह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी सिंधु घाटी क्षेत्र में निवास करता था। ऋग्वेद में इस भाग को सप्त सैंधव अर्थात सात नदियों की भूमि कहा गया है।
0: अच्छा।
2: हाँ, सैंधव शब्द सिंधु शब्द से आया है।
1: मैंने पढ़ा था कि सिंधु का मतलब होता है नदी।
2: बिल्कुल सही, इसका तात्पर्य सिंधु नदी से ही है। अच्छा, ये तो बात हुई ऋग्वेद की। अब सिंधु के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात।
0: वो क्या सर?
2: वो ये कि छठी शताब्दी पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैनिक अभियान किया और सिंधु नदी के इलाके पर नियंत्रण कर लिया। अपने लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत के सिंधु इलाके को हिद, हिदू या हिंदू कहा है।
1: फारसियों ने सिंधु को हिद, हिदू या हिंदू कहा है,
0: भला ऐसा क्यों?
2: ऐसा इसलिए क्योंकि फारसी भाषा में सिंधु शब्द का रूपांतरण हिंदू होता है।
0: अच्छा।
2: हाँ, क्योंकि स अक्षर उनकी भाषा में है ही नहीं।
0: है ही नहीं?
2: हाँ।
0: ऐसा कैसे?
2: ऐसा है, स की जगह उन्होंने ह का प्रयोग किया।
0: ओ।
2: हाँ, हिंदू। तो सिंधु रूपांतरित होकर बन गया
0: हिंदू।
2: शाबाश। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदू शब्द से उनका तात्पर्य हिंदू धर्म से नहीं था।
0: तो फिर?
2: हिंदू शब्द एक भौगोलिक शब्द था जो सिंधु नदी या सिंधु की घाटी क्षेत्र को संदर्भित करता था।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। सर, ऋग्वेद के अलावा क्या कुछ और भी ग्रंथ है जिनसे हमें और अधिक जानकारी मिल सकती है?
2: बिल्कुल जिशा, कुछ और हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे विष्णु पुराण और महाभारत। अच्छा जरा ये बताओ, मैंने अब तक कितने ग्रंथों के नाम तुम्हें बताए?
1: आपने अब तक तीन ग्रंथों के नाम बताए।
2: अच्छा, तो कौन कौन से हैं वो तीन ग्रंथ?
0: सर, ऋग्वेद, महाभारत, विष्णु पुराण।
2: अरे वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने, बहुत अच्छे। विष्णु पुराण में बच्चों हम पढ़ते हैं वो देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं।
0: अच्छा।
2: हाँ।
1: सर, आपने प्राचीन ग्रंथ महाभारत का भी नाम लिया था।
2: बिल्कुल।
1: क्या उससे भी हमारे देश की जानकारी मिलती है?
2: देखो, पहली बात तो ये है कि महाभारत ग्रंथ के नाम में ही भारत का नाम है।
0: अच्छा।
2: हाँ, महाभारत में पहली बार भारत को भारतवर्ष भी कहा गया है।
0: अच्छा।
2: हाँ, और साथ साथ इस ग्रंथ में एक और नाम है भारत का।
0: वो क्या?
2: बताता हूँ बच्चों, वो है जम्बूद्वीप।
1: जम्बूद्वीप?
2: हाँ, जम्बूद्वीप। महाभारत में भारतवर्ष को जम्बूद्वीप भी कहा गया है।
0: जम्बूद्वीप?
2: हाँ।
0: ये नाम भला क्यों?
2: देखो, जम्बू का अर्थ होता है जामुन। इसे जम्बुल भी कहते हैं। जामुन का पेड़ उन दिनों इस भूभाग पर बहुत अधिक पाया जाता था, इसलिए भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया।
0: अच्छा।
2: हाँ, सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेखों में संपूर्ण भारत का वर्णन जम्बूद्वीप के नाम से भी किया है।
0: सर, मैंने सुना है कि उन दिनों हमारा देश बहुत बड़ा था।
2: बिल्कुल ठीक तुमने सुना है, उन दिनों भारत में आज के बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी सम्मिलित थे।
0: इतने सारे देश?
2: हाँ, और शायद इसी कारण से भारत को महाभारत भी कहा गया है।
0: अच्छा।
1: सर, अभी तक हमने जाना कि हमारे देश को भारत, भारतवर्ष
0: और जम्बूद्वीप कहा जाता था। सर, इंडिया और हिंदुस्तान भी तो हमारे देश को कहा जाता है।
2: बिल्कुल।
0: ये नाम कैसे आए?
2: लगता है सब कुछ जानकारी मानोगे। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंडिया नाम कैसे आया। देखो बच्चों, इंडिया नाम इंडस से आया है। तुम्हें याद है ना कि सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं?
0: जी सर।
2: हाँ, तो अभी मैंने बताया था कि भारत में फारसी लोग आए, लेकिन आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानियों का भी हमारे देश में आगमन हुआ।
0: अच्छा।
2: हाँ, यूनानी

0: जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया।
1: ओ।
0: और सिंधु नदी को इंडोई या इंडिके कहा।
1: ऐसा क्यों कहा उन्होंने?
0: उनके साथ भी भाषा की समस्या थी।
1: ओ,
0: हाँ।
1: तो इसका मतलब है कि यूनानियों के लिए सिंधु कहना मुश्किल था और इंडो या इंडिके कहना ज्यादा आसान था।
0: हाँ। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा, तुम्हें एक बात और बता दूं, और वो ये कि प्राचीन यूनानी लोग भारत में रहने वालों को इंडोई कहते थे।
1: अच्छा, इंडोई यानी इंडिया के रहने वाले इंडोई कहे जाते थे।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह से नाम पड़ा इंडिया।
0: हाँ?
1: और हिंदुस्तान?
0: देखो, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग तुर्क और मुगलों ने किया। वो जिन इलाकों से आए थे उन इलाकों के नाम के आगे प्रायः स्थान शब्द हुआ करता था, जैसे
1: अफगानिस्तान।
0: बिल्कुल सही।
1: बलूचिस्तान।
0: सही।
1: तुर्किस्तान।
0: बिल्कुल। और उज़्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। और बच्चों, शायद स्थान का अर्थ स्थान से रहा हो।
1: सर, अब हमें हमारे सवालों का हल मिल गया।
0: अच्छा?
1: हाँ, बिल्कुल।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: सर, आपने हमें बड़ी मजेदार जानकारी दी। हमारे देश के इतने सारे नाम हैं, लेकिन हमें किस नाम का प्रयोग करना चाहिए?
0: बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो, हमारे संविधान की अंग्रेजी प्रति के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में कहा गया है, इंडिया जो कि भारत है।
1: अच्छा।
0: हाँ। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें संविधान की प्रस्तावना याद है?
1: जी, प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
0: बहुत अच्छे। तो हमारे देश का नाम हुआ भारत, जिसे इंडिया भी कहते हैं। समझ में आया?
1: जी सर।
0: शाबाश। अच्छा, आज जो भी तुमने जाना है, समझा है, उस जानकारी को तुम कल क्लास में सबके साथ बांटोगे।
1: सबके साथ?
0: हाँ, सबके साथ।
2: तो साथियों, कैसे लगी आपको अपने प्यारे देश भारत अर्थात इंडिया के विषय में ये जानकारी? अच्छी लगी ना? इतने सारे नाम शायद ही किसी और देश के रहे होंगे। आज हमने जाना कि हमारे देश का नाम है भारत अर्थात इंडिया।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत अर्थात इंडिया, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पहली उड़ान।
4: इस कार्यक्रम में विश्व इतिहास में मनुष्य की पहली उड़ान के बारे में रोचक जानकारी दी गई है, और बताया गया है कि कैसे गर्म गैस के गुब्बारे पर मनुष्य ने पहली बार उड़ान भरी। इस घटना ने भविष्य में आधुनिक वायुयानों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया।
5: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है, और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
6: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
7: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
8: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
7: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
8: हाँ पूछो बेटा।
7: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
8: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
6: लेकिन माँ,
8: ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि

0: भी बुझ रहा है। ठहरो जरा जोसेफ,
1: जी।
0: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
1: अच्छा माँ, ये लो माँ।
0: ला।
2: ओ, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
1: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे मिल गया मुझे,
0: क्या मिल गया
1: मुझे, माँ माँ माँ,
0: क्या मिल गया, क्या मिल गया,
1: मुझे मिल गया,
2: क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया
0: सब, क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ तो सही, क्या हो गया है?
1: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया, हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।
2: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
1: स्टीफन स्टीफन, माँ माँ माँ, जरा इस कमरे के धुएं को देखो। हाँ, इस कमरे के धुएं को देखो, इसमें इसमें क्या उड़ रहा है बताओ, बताओ उसमें क्या उड़ रहा है?
0: कुछ भी तो नहीं,
2: कुछ भी तो नहीं है।
1: ओ नहीं स्टीफन नहीं, ध्यान से देखो। हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है? हाँ उड़ रही है ना।
2: वो तो है, मगर
1: इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टीफन, कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
2: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो।
1: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें, हैं?
2: हाँ
1: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
2: हाँ, ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ, चलो देखते हैं।
1: ठीक है,
2: चलो,
1: आओ मेरे
2: चलो।
1: साथ।
0: अरे सुनो, अरे खाना तो खाते जाओ। स्टीफन, जोसेफ, सुनो तो।
3: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
4: अरे
5: गुब्बारा गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
4: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
6: हाँ भाई भीड़ तो है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यार, भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
4: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
6: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
4: आओ, आओ, आओ, यही ठीक रहेगा। आओ चलो।
7: ना जाने क्या करेंगे,
6: भला कोई चीज उड़
7: हो गया है।
6: अरे भाई साहब जरा रास्ता दीजिए, आगे जाने दीजिए।
4: भाई साहब हट जाइए। आ गए आ गए, यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं।
6: अरे अरे वो देखो, वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
4: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। वो देखो टोकरे में, हाँ
6: अरे अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
4: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
6: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे अरे वो देखो, स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है।
4: और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
6: अरे अरे अरे वो गुब्बारा तो ऊपर की ओर जा रहा है। अरे ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
4: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
6: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया।

0: साथियों, ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं, ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा, शेष यात्री यानी भेड़ और बतख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया, जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ऑलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहली उड़ान, और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार, नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर में इस बार गुरुवार को यानी आज 4 जून दिन में 12 बजे से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है TB, अस्थमा एवं श्वास संबंधित रोग कारण एवं निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर लव गुप्ता, सलाहकार पल्मोनोलॉजिस्ट अस्थमा TB फेफड़ा एवं श्वास रोग विशेषज्ञ, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके या मोबाइल नंबर 9412255575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में टीबी, अस्थमा एवं श्वास संबंधित रोग कारण एवं निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है टीबी, अस्थमा एवं श्वास संबंधित रोग कारण एवं निवारण। श्रोताओं, यदि आप टीबी, अस्थमा एवं श्वास संबंधित समस्या जैसे COPD, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, धूल मिट्टी, पालतू जानवरों के बालों से एलर्जी, वायरल संक्रमण या फेफड़ों की सूजन, टीबी के कारण सांस की समस्या आदि के समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर लव गुप्ता, सलाहकार पल्मोनोलॉजिस्ट अस्थमा टीबी फेफड़ा एवं श्वास रोग विशेषज्ञ टीबी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सिम्स हॉस्पिटल मथुरा से। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा गुरुवार 4 जून 2026 यानी आज, और समय दिन में 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो संवेदनशील भी है और मानवता को झकझोर देने वाला भी है। आज 4 जून को विश्वभर में अंतर्राष्ट्रीय निर्दोष बाल पीड़ित दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन मासूम बच्चों को समर्पित है जो युद्ध, हिंसा, आतंक, संघर्ष, शोषण या अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण पीड़ित होते हैं। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया को यह याद दिलाना है कि हर बच्चे को सुरक्षित, खुशहाल और सम्मानजनक बचपन पाने का अधिकार है।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह को। फिल्म का नाम था बॉम्बे टॉकीज। इस गीत को लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने और इस गीत को संगीत से संवारा था अमित त्रिवेदी ने। हम बात कर रहे थे बचपन जीवन का, जीवन की। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस की स्थापना इसलिए की ताकि विश्व समुदाय बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए और अधिक जागरूक और संवेदनशील बने। आज भी दुनिया में अनेक हिस्सों में बच्चे युद्ध और संघर्ष के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन से वंचित हो जाते हैं। बच्चों की मुस्कान में भविष्य की आशा छिपी होती है, लेकिन जब यही बचपन हिंसा, भय और असुरक्षा का शिकार हो जाता है तो केवल एक परिवार ही नहीं बल्कि

अभी आपने सुना शैलेंद्र का लिखा गीत, शंकर जयकिशन का संगीत, आवाजें थी मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। फिल्म का नाम था बूट पॉलिश। श्रोताओं, हम बात कर रहे थे बाल अधिकार की। हमें यह समझना होगा कि बच्चों पर होने वाला कोई भी अत्याचार केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक समस्या है। चाहे वह बाल श्रम हो, बाल विवाह हो, शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न हो या फिर उपेक्षा, हर स्थिति में बच्चे का भविष्य प्रभावित होता है। शिक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और सम्मान के साथ जीने का अधिकार, ये सभी बच्चों के मौलिक अधिकार हैं। एक संवेदनशील समाज वही है जो अपने बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की युगल आवाज़ों में श्री 420 फिल्म का ये गीत। शब्द रचना हजरत जयपुरी की थी और इस गीत को धुन से संवारा था शंकर जयकिशन ने। श्रोताओं, यदि किसी बच्चे के साथ अन्याय होता दिखाई दे तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। हमारी जागरूकता और संवेदनशीलता किसी बच्चे का जीवन बदल सकती है। महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी राष्ट्र का भविष्य उसके बच्चों में दिखाई देता है। यदि हम अपने बच्चों को सुरक्षित, शिक्षित और संस्कारित वातावरण देंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज और राष्ट्र उज्ज्वल बनेगा। माता पिता, शिक्षक, पड़ोसी और समाज के सभी सदस्य बच्चों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और यह कोशिश और यह प्रयास हमें सदैव करना चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम था दो कलियां। शब्द रचना साहिर की थी और इस गीत को धुन से संवारा था रवि ने। श्रोताओं, यह दिवस हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। बच्चे किसी भी परिस्थिति में हिंसा और शोषण का पात्र नहीं है, वे प्रेम, सुरक्षा और अवसर के अधिकारी हैं।

अभी आपने सुना वाणी जयराम और साथियों के स्वर में गुड्डी फिल्म का ये गीत। श्रोताओं, आइए हम संकल्प लें, हर बच्चे के अधिकारों का सम्मान करेंगे, बच्चों के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाएंगे, बाल श्रम और बाल शोषण जैसी कृतियों का विरोध करेंगे, बच्चों को शिक्षा और संस्कार से जोड़ने में सहयोग करेंगे, उनके सपनों को उड़ान देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब एक बच्चा मुस्कुराता है ना, तब केवल एक चेहरा नहीं बल्कि पूरा समाज मुस्कुराता है।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आइए अब सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं रश्मि शर्मा।

तो आखिर आप भी आ ही गए। तो जनाब, जब हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम ने आपके दिल की धड़कनें बढ़ा ही दी हैं, तो फिर सोचना कैसा।

0: अरे अरे घबराइए मत, मैं बीमार नहीं आपका इलाज करने आई हूँ, क्योंकि अब आपका इलाज होगा आप ही के पसंदीदा गीतों के साथ और हमारे साथ की गई प्यारी प्यारी बातों के साथ। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन श्रोता हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। हेलो आकाशवाणी
1: जी, रश्मि दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रही है, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: दीदी मैं आपका जाना पहचाना नियमित श्रोता, ब्रज रेडियो श्रोता मित्र चौधरी महेंद्र सिंह, ग्राम नगला राणा चिहरा मथुरा से बात कर रहा हूँ।
0: जी स्वागत है कार्यक्रम में, कैसे हैं आप?
1: दीदी हम लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते
0: हैं। जी और हम भी यही कामना करते हैं कि हमारे सभी श्रोता आनंदित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आज क्या कहेंगे कार्यक्रम में?
1: दीदी सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि यात्रा ब्रज 84 कोस की, इसका आनंद रेडियो के माध्यम से हमें घर बैठे मिल रहा है। आप हमें जो रिकॉर्डिंग सुनवा रही हैं कार्यक्रम ब्रज माधुरी में, ये हमें कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है।
0: जी हमारा अहोभाग्य हमारे

0: श्रोताओं को हमारी ये प्रस्तुति पसंद आ रही है।
1: अब मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि 1 जून 2026 को हमारे बीच पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर जी नहीं रही। भली वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मधुर आवाज हम संगीत प्रेमियों के कानों में हमेशा हमेशा गूंजती रहेगी।
0: जी,
1: उनको भाव श्रद्धांजलि देते हुए, अर्पित करते हुए मैं आपसे एक नम्र निवेदन करूंगा। फिल्म का नाम है जहां प्यार मिले। चले जा चले जा चले जा जहां प्यार मिले, ये शीर्षक गीत है। आप इस गीत को हमारे रेडियो तक जरूर पहुंचाने की कृपा करेंगी, ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है।

0: दीदी रेडियो श्रोता मित्र याद राम बोल रहा हूँ दीदी, गांव उस पार जिला मथुरा से।
1: जी स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
0: और सब दीदी कैसी हैं आप?
1: मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, और हमारा आकाशवाणी परिवार भी स्वस्थ है, मस्त है, आनंदित है।
0: दीदी हम भी आपसे, आपकी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी दीदी ऐसे ही बनी रहे, हमें आकाशवाणी के यही प्रोग्राम ऐसे ही सुनवाते रहे। हमको बहुत अच्छा लगता है दीदी, आप बहुत मेहनत करके और हम लोगों को प्रोग्राम सुनवाती हैं, बहुत अच्छा लगता है दीदी, और धन्यवाद देते हैं हम आपके लिए।
1: जी जी जी आपका बहुत आभार। और आज क्या सुनना चाहेंगे?
0: दीदी गाना सुनेंगे हम एक,
1: बताइए।
0: दिल एक तेरा ओ साजना, कैसा जादू तेरा ओ साजना,
1: मेरा दिल अब तेरा ओ साजना।
0: जी जी जी जी जी
1: ठीक है।
0: नमस्ते दीदी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।
1: राधे राधे, जय श्री कृष्णा।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: नमस्ते। जी
0: नमस्ते। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: आपके नियमित श्रोता साथी योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। एकदम
0: कैसे हैं योगेश जी?
1: बढ़िया है।
0: और मौसम कैसा है अभी?
1: मौसम का मिजाज गर्म है, बारिश का अभी तक तो फिलहाल अता पता नहीं है।
0: अच्छा, हमारे यहाँ तो हो चुकी है थोड़ी सी गर्मी में कमी आई है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं
1: जी,
0: जी।
1: उम्मीद करते हैं मानसून जल्द आए और इस मौसम में थोड़ा परिवर्तन होगा,
0: बिल्कुल, परिवर्तन तो नियम है।
1: प्रकृति का नियम
0: हाँ,
1: है।
0: प्रकृति का है ना, तो हर कुछ महीने कुछ पल में ही कुछ कुछ चीजें बदल जाती हैं, तो मौसम तो बदलना ही है, और आज नहीं तो कल। फिलहाल हम और हमारे श्रोता एक दूसरे के साथ में जो अटूट रिश्ता है उसे कायम रखें, हम एक दूसरे के प्रति ना बदलें, और बस ऐसे ही आप सभी के फ़ोन कॉल्स हमारे कार्यक्रम में आते रहें और अपनी फरमाइश भी हमें बताते रहें। क्या सुनना चाहेंगे आज?
1: फिल्म ब्लैकमेल से सुनवा देंगे,
0: कौन
1: पल
0: सी?
1: पल दिल के पास तुम रहते हो।
0: ठीक है,

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? परिचय दे दीजिए। कैसे
1: चौधरी धर्मवीर सिंह लंगड़ा, भूपला की आगरा से मैम। बढ़िया
0: हैं धर्मवीर जी? और आजकल अब गर्मी की वजह से पंछियों पर भी कुछ असर देखने को मिला या?
1: हाँ, अभी तो ये नवंबर में आते हैं हमारे यहाँ कीटम झील में।
0: अच्छा,
1: हाँ, गर्मियों में तो ये चले जाते हैं, विदेशों से भी आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं पक्षी,
0: जी
1: और
0: जी
1: बहुत ठंडे इलाके से आते हैं।
0: जी जी
1: फिर मार्च में यहाँ से चले जाते हैं वो।
0: अच्छा। तो अभी तो हमारे यहाँ के जो स्वदेशी पंछी हैं बस वही इर्द गिर्द नजर आते हैं।
1: जी।
0: जी
1: एक चीज बताना चाहूँ मैम, ये गौरैया चिड़िया है ना, वो भी विलुप्त होती जा रही है,
0: हाँ
1: बहुत कम संख्या रह गई है।
0: बिल्कुल।
1: अब मैं बता रहा हूँ, मैं हूँ 54 ईयर्स है मेरी। तो पहले हम देखते थे झोपड़ियां और वो सब होती थी, कच्चे मकान हुआ करते थे, तो उनमें अपना घोंसला रख ले ली थी वो, तो और सब पानी वानी भी रखते थे सब लोग उनके लिए। लेकिन आजकल दिखाई नहीं दे रही है, पक्के मकान बन गए।
0: हाँ वही ना, कि पंछियों के जो रहने की जगह थी वो अब हमने खत्म कर दी, अपने सुख सुविधा के लिए, अपने आराम के लिए, अपने आर्थिक फायदों के लिए। तो अब जो प्रकृति का मनोरम दृश्य था वो भी अब यदा कदा ही कहीं कहीं नजर आता है। तो जब हम उनके ठिकाने हमने ख़त्म कर दिए तो वो कहाँ जाएं? और ऐसी अवस्था में जो अभी आजकल आप देख ही रहे हैं, चाहे फ़ोन की वजह से या जो बड़े बड़े जो टावर लगाए जाते हैं उससे भी जो उसकी जो किरणें होती हैं उनका भी एक प्रतिकूल असर इन पर पड़ता है। तो
1: बिल्कुल
0: बहुत
1: बिल्कुल
0: सारे कारण हैं गौरैया के विलुप्त हो जाने के। निश्चित रूप से ये बड़े ही दुख की बात है कि हमारे जो पंछियों की प्रजाति हैं वो खत्म होती जा रही हैं।
1: आज गाना सुनवाइए हमें, चल ओ जा रे पंछी, अब ये देश हुआ भी गाना। एक हमारे मेकर हैं सावलिया जी, कुवैत से।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार महोदया जी, मैं सुरेंद्र सिंह रेडियो श्रोता मित्र गांव चटीगरा जिला मथुरा से बोल रहा हूँ।
0: जी स्वागत है कार्यक्रम में।
1: ये आप सुनाइए कैसी हो। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है।
0: बिल्कुल, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तब आप क्या क्या करते हैं गर्मी से बचने के लिए?
1: हम बहन जी, हम तो कुछ नहीं करते, हम लोग बैठे रहते हैं कमरों में, कूलर में, अपने आराम से पंखे में बैठे रहते हैं।
0: आज क्या पसंद
1: जी
0: रहेगी?
1: हाँ, आज हमारी फरमाइश रहेगी फिल्म काजल का गाना है जी, आशा जी की आवाज में,
0: कौन सा गीत?
1: तोरा मन दर्पण कहलाए।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, प्रस्तुति थी रश्मि शर्मा की। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर में आज यानी कि गुरुवार 4 जून दोपहर 12 बजे से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है गर्मियों में बच्चों की उचित देखभाल। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर रितेन गोयल, बाल रोग विशेषज्ञ, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 25 30 135 पर फोन करके अथवा हमारे मोबाइल नंबर 9412255575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में गर्मियों में बच्चों की उचित देखभाल से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है गर्मियों में बच्चों की उचित देखभाल। हमारे साथ विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर रितेन गोयल, बाल रोग विशेषज्ञ, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन कार्यक्रम से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

मेहनत जिनकी पहचान है, संघर्ष जिनका अभिमान है, कोयला खदान के हर श्रमिक को हमारा प्रणाम है। अंधेरों में रहकर जो रोशनी को आधार बनाते हैं, ऐसे कोल माइनर्स राष्ट्र के सच्चे कर्मवीर कहलाते हैं। न दिन की परवाह, न रात का विश्राम, खदानों के वीर श्रमिकों को हमारा बार बार प्रणाम, बार बार प्रणाम। साथियों, भारत में कोल माइनर्स डे प्रतिवर्ष 4 मई को मनाया जाता है। यह दिवस उन कोयला खनिकों के सम्मान में मनाया जाता है जो कठिन और

जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में काम करके देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस दिन खनिकों के परिश्रम, त्याग और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को याद किया जाता है। साथियों, कोयला भारत के प्रमुख ऊर्जा स्रोतों में से एक है। बिजली उत्पादन, इस्पात उद्योग और अनेक औद्योगिक कार्यों में कोयले का व्यापक उपयोग होता है। कोयले को धरती की गहराइयों से निकालने का कार्य कोयला खनिक करते हैं। यह कार्य अत्यंत कठिन, श्रमसाध्य और जोखिम भरा होता है। खनिकों को अंधेरी खदानों, धूल, गर्मी, अनेक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत में कोल माइनर्स डे का उद्देश्य खनिकों के योगदान को सम्मान देना, उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस अवसर पर विभिन्न संस्थाओं और कोयला कंपनियों द्वारा सम्मान समारोह, जागरूकता कार्यक्रम और सुरक्षा संबंधी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। आपसे होती रहेगी इस विषय पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आपके साथ बने रहेंगे। और साथियों, हम आपसे बातचीत कर रहे थे आज कोल माइनर्स डे के बारे में, और ये दिवस हमारे उन खनिकों के सम्मान में मनाया जाता है जो दिन रात मेहनत करके हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। कैसी ऊर्जा? कोयला खनिक देश की आर्थिक प्रगति और औद्योगिक विकास के महत्वपूर्ण आधार हैं, और उनके अथक परिश्रम के कारण उद्योगों को ऊर्जा प्राप्त होती है, देश की विकास यात्रा आगे बढ़ती है। इसलिए हमें उनके योगदान का सम्मान करना चाहिए, उनके सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्य वातावरण के लिए निरंतर प्रयास करते रहने चाहिए। धरती की गहराइयों में जो मेहनत का दीप जलाते हैं वो कोयला खनिक ही हैं जो देश को ऊर्जा दिलाते हैं। कोयला माइनर्स डे हमें उन वीर श्रमिकों के त्याग, साहस और समर्पण को याद करने का अवसर देता है जो राष्ट्र की प्रगति के सच्चे आधार हैं।

ईयर ऑफ ग्लोबल स्ट्रेंथ, वैश्विक शक्ति का एक वर्ष। साथियों, आज का युग वैश्वीकरण का युग है, जहां विश्व के सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वैश्विक शक्ति का एक वर्ष, इसका अर्थ है ऐसा वर्ष जिसमें विश्व के देशों ने मिलकर विकास, सहयोग, शांति और प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हों। यह केवल आर्थिक शक्ति तक सीमित नहीं है साथियों, बल्कि विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मजबूती को भी दर्शाता है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है, जैसे महामारी, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं और आर्थिक संकट। इन चुनौतियों से निपटने के लिए देशों ने आपसी सहयोग बढ़ाया और नई तकनीकों का विकास किया। इससे वैश्विक स्तर पर मजबूती और एकता का भाव बढ़ा है। भारत ने भी वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान को मजबूत किया है। विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान, डिजिटल तकनीक, व्यापार और कूटनीति के क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं। भारत की बढ़ती आर्थिक क्षमता और विश्व शांति के प्रति उसकी प्रतिबद्धता ने उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है।

साथियों, हम बात कर रहे थे एयर ऑफ ग्लोबल स्ट्रेंथ के बारे में, यानी वैश्विक शक्ति का एक वर्ष। भारत ने भी वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई है, ये तो हम सभी जानते हैं। हम देख पा रहे हैं कि अपनी पहचान को भारत ने कितना मजबूत किया है। विज्ञान का क्षेत्र हो, अंतरिक्ष अनुसंधान, डिजिटल तकनीकी, व्यापार और कूटनीति के क्षेत्र में भी भारत ने उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं, और भारत की बढ़ती आर्थिक क्षमता और विश्व शांति के प्रति उसकी प्रतिबद्धता ने उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। अंततः यही कहेंगे कि वैश्विक शक्ति का वास्तविक अर्थ केवल शक्तिशाली बनना नहीं, बल्कि मानवता के कल्याण, सतत विकास और विश्व शांति के लिए मिलकर कार्य करना है। जब सभी देश सहयोग और सद्भावना के साथ आगे बढ़ते हैं, तभी विश्व वास्तव में सशक्त बनता है। विश्व की शक्ति उसकी एकता में निहित है। सहयोग और सद्भाव से ही प्रगति सुनिश्चित है। वैश्विक शक्ति का उद्देश्य केवल विकास नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता का कल्याण भी है।

वसुधैव कुटुंबकम का संदेश लेकर भारत ने विश्व में नई पहचान बनाई है। वैश्विक शक्ति के इस एक वर्ष में सहयोग और सद्भाव की ज्योति जगाई है। विश्व को परिवार मानकर जो आगे बढ़ता है वही सच्चे नेतृत्व का परिचय देता है। भारत ने एक वर्ष में यह सिद्ध कर दिखाया कि विकास का मार्ग सबको साथ लेकर चलता है। शक्ति केवल सामर्थ्य में नहीं सबको जोड़ने की भावना में होती है। वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों से ही वैश्विक प्रगति की नई कहानी लिखी जाती है। साथियों, फिल्म संगीत का ये सफर अब यहीं समाप्त होता है। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर रितेन गोयल, बाल रोग विशेषज्ञ, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स मथुरा।

0: है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपने मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे वर्ल्ड नंबर वन पैथोलॉजिस्ट के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर शिरादा वैली मथुरा।
1: श्रोताओं नमस्कार, आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर, और आज हम बात करेंगे गर्मी या लू या जो बढ़ता हुआ तापमान है इसमें छोटे छोटे बच्चों की हम कैसे देखभाल करें या जो बच्चे थोड़े बड़े भी हो गए घर में हैं तो बहुत सारी समस्याएं बच्चों के साथ रहती हैं। बड़े हो रहे होते घर के वातावरण में उनको कभी निमोनिया हो जाता है, कभी सर्दी गर्मी का असर हो जाता है, डायरिया हो जाता है, कभी कभी त्वचा पे रैसेस आ जाते हैं, एलर्जिक हो जाते हैं, दांत निकलने तो अलग समस्या हो जाती है, फीडिंग की समस्या, तो बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे प्रश्न हैं जो जीवन से जुड़े हुए हैं और कई बार हम उनको ध्यान देते हैं कई बार नहीं भी देते, लेकिन चूंकि बच्चे हैं हर बात बता नहीं पाते, बोल नहीं पाते, रो के ही उनका सारा कम्युनिकेशन हमसे होता है तो रोने का तरीका भी उनका अलग अलग समय पर अलग अलग होता है। तो ये आज हम जानेंगे। डॉक्टर रितेन गोयल साहब हैं, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो सिम्स है मथुरा में, आप उसमें एक्सपर्ट के तौर पर कार्य करते हैं, आज हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत।
2: नमस्ते, धन्यवाद
1: जी। तो बच्चों की दुनिया अच्छी दुनिया, मतलब हंसती गाती खेलती दुनिया, लेकिन उस दुनिया में भी कभी कभी बीमारियां आ जाती हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? जैसे अभी समय मौसम थोड़ा 40 के पार कभी चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है, लेकिन नीचे आता है तो ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, तो ये जो अब उमस के महीने रहेंगे 3-4 महीने अब हमें इन्हीं परिस्थितियों में गुजारना है, तो जिन परिवारों में बच्चे हैं वो उनकी समस्याएं हम तक

0: मैं एक बार नंबर बता देता हूँ श्रोताओं, दो टेलीफोन लाइनें हमारी खुली हुई हैं, 94-122-25-575 व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर अपनी समस्याएं हमें भेज सकते हैं। और एक बेसिक नंबर है जिसमें 0565 कोड है और 2530-135, इस नंबर पर आप हमारी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। जो भी प्रश्न है, जो भी जिज्ञासाएं, समस्याएं, उनके समाधान हमारे साथ जो डॉक्टर बने हुए आधा घंटे तक, उनकी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब कहें तो फोन से ही शुरुआत कर दें हम, एक आ रहे हैं श्रोता
1: हाँ
0: हमारे
1: हाँ
0: पास।
1: बिल्कुल
0: जी जी
1: स्टार्ट
0: जी
1: कर सकते हैं।
0: हेलो
2: हेलो सिंह साहब, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं? जी क्या क्या नाम बताया?
2: जी राजू लवानिया बोल रहा हूँ सर।
0: अच्छा राजू लवानिया जी बोल रहे हैं। लवानिया जी बताइए, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
2: जी सबसे पहले डॉक्टर साहब को नमस्कार।
1: नमस्ते जी।
2: डॉक्टर मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे बच्चों की बात चली है अभी थोड़ी देर पहले वाले सिंह साहब जी बता रहे थे, जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं कुछ भ्रांतियां ऐसी हैं कि सर्दियों में दांत निकलने में ज्यादा आसानी होती है और गर्मियों में कठिनाई, तो क्या ये बात सच है? अगर ऐसा कुछ है तो कौन सी देखभाल करनी चाहिए जैसे बच्चे को दांत निकलते समय परेशानी न हो?
1: चलिए आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक्चुअली दांत निकलने में हमारी सोसाइटी में बहुत सारी मिसकम्युनिकेशन है। अगर बच्चे को बुखार आता है, दस्त होते हैं, छिड़छिड़ापन होता है, हमारी चीजों को ब्लेम दांत पर डाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। जब दांत निकलते हैं तो मसूड़ों में हमारे खुजली स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मसूड़ों में सूजन आती है, जिसकी वजह से बच्चा हर चीज को मुंह में लेता है, चाहे वो जूता, चप्पल, कीड़ा मकोड़ा, एनीथिंग उसके हाथ में जो भी आ जाए, वो सबको मुंह में लेता है। उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है कि कोई भी, सपोज मानो उसने किसी की चप्पल उठाकर चाट ली या कोई कीड़ा खा गया, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। दांत निकलने से इटसेल्फ कोई दिक्कत नहीं होती है, और जैसे दांत निकल रहा है उसको सूदिंग चाहिए होती है, तो जैसे सूदर्स होते हैं, सिलिकॉन की चाबी वगैरह आती है, अगर स्टरलाइजर वो दे सकते हैं, अदरवाइज सिंपल ग्लिसरीन जो घर में होती है चेहरे पे लगाते हैं, उसको भी फिंगर से लेके हम लगा सकते हैं मसूड़ों के ऊपर, तो उससे मसूड़ों में जो सुरसुराहट, जो खुजली होती है, वो चीज कम हो जाती है। शहद हम लोग मना करते हैं, एक साल से पहले शहद का यूज नहीं करना होता है।
0: जी जी जी।
1: तो दांत आसानी से, बाकी सर्दी और गर्मी का ऐसा कुछ नहीं होता। गर्मी में क्या होता है कि इन्फेक्शन वाली चीजें ज्यादा होती हैं, पसीना है, गंदगी है, तो मक्खियां मच्छर ज्यादा होते हैं, तो उन सब चीजों की वजह से इन्फेक्शन ज्यादा होने का चांस रहता है। सर्दियों में थोड़ी सी चीजें स्टरलाइज रहती हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि सर्दी में दांत आसानी से निकलते हैं, गर्मी में दांत निकलने का प्रोसेस सेम रहता है। बच्चे की एज के हिसाब से 6 महीने के बाद दांत निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। हमको उस समय इन्फेक्शन से बचाना होता है। हम बच्चों के नाखून को काट के रखें, उनके जितने भी खिलौने हैं उनको हम डेली वॉश कर दें साबुन के पानी से, इवन बॉटल्स हैं, स्टरलाइजर्स हैं, या जो सूदर्स होते हैं उनको भी स्टरलाइज करना चाहिए डेली बोतल के साथ में। मेन चीज होती है कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है। सपोज कोई बच्चा दूध बोतल से पीता है तो उसकी बोतल हर बार स्टरलाइज होनी चाहिए। आप 4 या 5 बोतल खरीद कर रखो, हर बार एक नई बोतल यूज करो जो स्टरलाइज्ड हो। जब 4-5 बार बच्चा पी ले उसको दोबारा स्टरलाइज कर लो, ऐसा नहीं गर्म पानी में धो और उसको यूज कर लिया। मेन इन्फेक्शन वजह से होता है। आपके घर में जो गलीचे हैं, पर्दे, उनको वॉश करवा दो। आप बच्चे को इन्फेक्शन से बचाना है अल्टीमेटली हमको।
0: जी जी, मतलब दांत निकलेंगे, सरबराहट होगी, बच्चा हाँ। के आसपास जो होगा उसको वो मुंह में ले जाएगा, तो मेन कारण उस बच्चे का मुंह में ले जाने वाली चीजों से होने वाला इन्फेक्शन हाँ। है। बाकी मौसम तो जैसा है सब ठीक रहता है उसमें। अब जैसा बात चली थी डॉक्टर साहब के मौसम है इस समय ह्यूमिड है थोड़ा, तो इस समय बच्चों की देखभाल को हम कैसे करेंगे इसमें?
1: देखो बच्चों की इस समय सपोज मानो गर्मी बहुत ज्यादा है ना, और एकदम सडनली बारिश हो जाती है, तो जो भी बदलता हुआ मौसम होता है उस केस में बच्चे इन्फेक्शन जल्दी पकड़ते हैं। सपोज कोई एलर्जिक बच्चा है, किसी को टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, एडिनोइड्स की प्रॉब्लम है, किसी की नाक की हड्डी टेढ़ी है, या कोई एलर्जिक है कि हल्का सा मौसम में चेंज हुआ, तो ऐसे सबसे मेन चीज तो होती है हाइड्रेशन पूरा रखना है, कि पानी का इंटेक प्रॉपर रखना है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, जूस हो, दूध हो, लेमन वाटर, सादा पानी। हमको पानी बच्चों को पिलाने के लिए प्रोत्साहित करते रहना है। दूसरा होता है कि सडन चेंज इन टेम्परेचर जो होता है, सडन जो चेंज उसको हमको अवॉइड करना है, कि बच्चा गर्मी से आया, ठंडा पानी पी लिया, एसी में आके बैठ गया। हमको अपनी बॉडी को टाइम देना चाहिए बच्चों को, एक तापमान को नॉर्मलाइज होने के लिए। ठीक है, जैसे अगर आजकल घड़े का पानी नहीं पीते है ना, घड़े का पानी बेस्ट रहता है कि हमने ठंडा पानी पी लिया गर्मी से आके, वो चीज बिल्कुल डेफिनेटली नुकसान करेगी। दूसरा, कोई अगर इन्फेक्टेड पर्सन है उससे थोड़ा दूर रहना है, है ना। स्नीजिंग अगर छींक किसी को आती है तो अपना शर्ट के कफ में छींके या रुमाल लेके छींके, ओपन में नहीं छींकना है। वैक्सीनेशन पूरा रखना है, जिससे कि जो नॉर्मल बीमारी होती है, फ्लू, टाइफाइड और सांस की जो इन्फ्लुएंजा वगैरह के वैक्सीन आते हैं, उनको अपना कंप्लीट रखना है। डाइट में एक अच्छा न्यूट्रिशन, प्रोटीन का इंटेक अच्छा होना चाहिए, आयरन का इंटेक अच्छा होना चाहिए, प्लस विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स होते हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, उनका इंटेक हमारा अच्छा होना चाहिए।
0: जी जी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने वैक्सीनेशन की बात की, कई बार हम वैक्सीनेशन कराते हैं जो एक, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग हॉस्पिटल में डिलीवरी हो रही है, बच्चे का रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं, चाहे वो सरकारी में हो या प्राइवेट में, तो उसका एक कार्ड मिल जाता है, उसी हिसाब से वैक्सीनेशन के बाद भी थोड़ी छोटी छोटी समस्या

0: समस्याएं डॉक्टर बच्चों को होती रहती
1: जी,
0: है,
1: बिल्कुल।
0: तो वहां क्या कुछ सावधानी से बनती है
1: देखो,
0: उसमें?
1: वैक्सीन जो होता है वो बहुत ही लीथल डिसीज के लिए होता है, जो हमारी जानलेवा बीमारी होती है। हर डिसीज के लिए वैक्सीन हमारे पास नहीं है। अब जैसे वायरल इन्फेक्शन है, हर साल हम ये बोलते हैं कि बच्चों को 8 इन्फेक्शन नॉर्मल होते हैं, बड़ों को 4 इन्फेक्शन नॉर्मल होते हैं। जब भी चेंज होता है मौसम, उस केस में वायरस इन्फेक्शन प्रिवेंट कर जाते हैं।
0: जी जी।
1: तो उससे बचने का तरीका तो ये कि आपको अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाकर रखनी है। इम्यूनिटी किसी दवाई से नहीं बढ़ती है। जो

0: अलग अलग तरह के सिम्टम आते हैं, तो वहाँ माँ बाप को जानकारी नहीं होती तो वो थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं। तो अगर वैक्सीनेशन उस तरह का है तो डॉक्टर बताएंगे उस चीज पे ध्यान देना चाहिए।
1: जी, जैसे वैक्सीन जितने भी होते हैं उसमें मेन एक डीपीटी का वैक्सीन होता है जिसमें फीवर आने का चांस रहता है पर्टुसिस की वजह से।
0: जी,
1: बाकी कोई भी वैक्सीन फीवर कर सकता है, पेन कर सकता है, कोई वैक्सीन, और हो सकता है कि एक बंदे को कोई वैक्सीन पेन फीवर कर रहा है दूसरे को ना करे, लेकिन पर्टुसिस वाले वैक्सीन में मोस्टली फीवर आता है डीपीटी में। तो लेकिन वैक्सीन के बाद में बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है, एक रिएक्शन तरह होता है, तो उस केस में बॉडी को थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है।
0: जी,
1: तो नॉर्मली कोई वैक्सीन उसके बाद हम पेशेंट को बोलते हैं कि 24-48 घंटे इसको विग्रेस एक्टिविटी नहीं करनी है, जहां वैक्सीन लगाया उस पर मसाज नहीं करनी है। अगर दर्द बुखार लगता है तो सिंपल एक पैरास्टामोल की ड्रॉप दे सकते हैं, पानी का इंटेक पूरा रखना है।
0: जी,
1: क्योंकि वैक्सीन का रिएक्शन हर पेशेंट में डिफरेंट होता है।
0: जी, अच्छा, बढ़ती हुई उम्र में तो थोड़ा सा हम एलर्जिक किस चीज से है थोड़ा ये पता लग जाता है कि भाई जैसे आपने कहा कि मौसम बदल रहा है तो वहां स्नीजिंग हो जाती है, जुकाम खांसी हो जाता है, किसी को टॉन्सिलाइट है वो भी हमें समझ में। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो किसी चीज से एलर्जिक है, उस पर क्लोज वॉच रखने के लिए कुछ उसके लिए थोड़ा सा कैसे?
1: देखो, एलर्जी होती है बाई बर्थ तीन जगह से मैनिफेस्ट करती है। एक तो पेट में करती है कि बच्चे को पेट दर्द होता रहता है, कभी दस्त हो रहे हैं, कभी कोलिक होता है। दूसरा आती है स्किन में, स्किन बिल्कुल सूखी हो जाएगी, जैसे मेढक की स्किन होती है, टोड स्किन टाइप की स्किन हो जाती है, है ना, बिल्कुल ड्राई स्किन, आप खुजाओगे तो निशान पड़ जाएगा, लाइन बन जाएगी। तीसरा लंग्स में आती है कि बच्चे को बार बार सांस की दिक्कत हो जाती है। तो एलर्जी मोस्टली छोटे बच्चों में तीन जगह से मैनिफेस्ट करती है, पेट में, फेफड़े में और स्किन पे।
0: जी,
1: तो वो स्किन वाली प्रॉब्लम मालूम पड़ जाती है कि हमको सपोज किसी बड़े को मच्छर खाएगा तो एक जगह पे स्पॉट बनेगा।
0: हाँ।
1: जो एलर्जिक होंगे उनमें पूरे में फैल जाएगा वो काफी बड़ी एरिया के अंदर, और स्किन बिल्कुल ड्राई रहती है। तो ऐसे बच्चों की
0: तो अगर स्किन पे कुछ चकत्ते आ रहे हैं वो आ रहे हैं तो थोड़ा सा अपना दिखा लें डॉक्टर साहब,
1: दिखा लें। नहीं तो सिंपल होता है, कोई घर में कोई भी लोशन, क्रीम या नारियल का तेल सबसे बेस्ट रहता है, स्किन को मॉइस्ट करके रखें। ड्राई स्किन में एलर्जी ज्यादा होती है, और जो मॉइस्ट स्किन होती है गीली उसमें एलर्जी कम होती है।
0: जी, छोटे बच्चों की जो समस्याएं होती है वो थोड़ा सा फीडिंग को भी समस्या रहती है, लेकिन उससे पहले एक फोन ले लेते हैं। आ रहे, हेलो,
2: हेलो
0: जी, नमस्कार भैया।
2: नमस्कार जी सर, मैं वेद प्रकाश बोल रहा हूँ, गाँव जहांगीरपुर से।
0: जहांगीरपुर से वेद प्रकाश जी ना?
2: नेत्रपाल जी सर, नेत्रपाल जी।
0: नेत्रपाल जी, ठीक है ठीक है, डॉक्टर साहब बैठे हुए बात करिए।
2: डॉक्टर साहब से मैं प्रश्न करना चाहता हूँ सर। हमारी बच्ची है, साल भर की है, तो वो रोती रहती है, माँ का दूध पीती है, पता नहीं रोती रहती रहता है।
1: जी सर, रोने के बहुत सारे रीजन होते हैं ना, बच्चा छोटा होता है वो अपनी बात बोल नहीं पाता, रोके ही बोलता है वो, चाहे उसको भूख लगी हो, चाहे उसको सुषु आई हो, चाहे पोटी आई हो, पोटी वाली जगह पे रैशेस हो, पेट में दर्द हो, है ना, कई बार बच्चों में खून की कमी होती है, उससे भी छिड़छिड़ाते रहते हैं।
2: मैंने ये
1: बहुत सारे रीजन है, एक रीजन होता है खून की कमी होना, है ना।
2: डॉक्टर, हम बहुत बच्ची हमेशा परेशान रहती है, क्या कारण है?
0: तो एक बार कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ टेस्ट भी हो सकते हैं इनको कराएं,
1: देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। अगर
0: तो आप ऐसा है नेत्रपाल जी, अगर उस हॉस्पिटल और उस डॉक्टर की सलाह आपको ठीक नहीं लग रही तो आप एक अच्छे डॉक्टर को और दिखा लीजिए, अच्छे हॉस्पिटल में ले ही जाइए, लेकिन बच्चे की समस्या तो आपको समाधान करना पड़ेगा।
2: आपको बता सकते हैं,
1: सिटी हॉस्पिटल में
0: सिटी हॉस्पिटल में
1: 11 से 3 बजे तक
0: डॉक्टर नितिन गोयल को दिखा लीजिए, ठीक है सर जी। डॉक्टर साहब, एक योगेश शर्मा जी हैं भरतपुर से, आप व्हाट्सएप पर लिख रहे हैं कि डॉक्टर साहब बच्चों को गर्मी और लू में बचाने के लिए क्या एसी में रखा जाना चाहिए, सुझाव दें।
1: सर, एसी में रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके घर में जैसी भी सुविधा है, चाहे कूलर हो चाहे एसी हो, अगर कमरे का टेम्परेचर अगर गर्म है तो उसको हमको कूल करना है किसी भी तरीके से, तो एसी में रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डिपेंड करता है कितना बड़ा बच्चा है, सब वो छोटे बच्चों जो पैदा हाल के पैदाइश होते हैं उनको बोलते हैं कि 26 से 28 डिग्री के आसपास आप एसी चला के मेंटेन कर सकते हो, बड़े बच्चों में आप 22 से 24 के आसपास मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो एसी में रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चों को बीमारी जो होती है सर्द गर्म की वजह से होती है कि एकदम गर्मी से आके एसी में बैठ गया, ठीक है,
0: मतलब टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होना चाहिए कि आप बाहर से लाए उसमें और फिर एसी में आ गए, या एसी में से अचानक आप 40 में चले जाए, तो 25 से 40 में योगेश जी जाना या 40 से 25 में आ जाना, ये वेरिएशन थोड़ा सा बच्चा क्या बड़े को भी परेशान करता है। मैं डॉक्टर साहब जानना चाह रहा था फीडिंग, अब जैसे हम घर परिवारों में रह रहे एकल परिवार हैं, फिर से एक फोन आ रहा है उससे बात कर लेते हैं। हेलो
3: हेलो

0: नमस्ते
1: नमस्ते सर,
0: बताओ अपना नाम बताओ अपना।
1: सर मैं नुसरत बोल रही हूँ।
0: क्या नाम?
1: नुसरत।
2: नुसरत
0: जी। नुसरत, नुसरत बताओ ये नुसरत तो, क्या समस्या?
1: हाँ, वो डॉक्टर मेरी भांजी है तो वो मट्टी बहुत खाती है।
0: अच्छा, ये तो बहुत पुरानी समस्या है।
2: मट्टी खाने का जो रीजन होता है वो होता है खून की कमी होना बॉडी में, है ना। हमें पुराना लगता है कि पेट में कीड़े हो रहे हैं, कैल्शियम हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता। मोस्टली बच्चे खून की कमी की वजह से मट्टी खाते हैं, उनको क्रेविंग होती है।
1: अच्छा, तो हमने तो डॉक्टर की सलाह से सिरप वगैरह भी पिला दी और कैल्शियम की दवाई भी खिला दी, लेकिन अभी भी मट्टी होती नहीं है।
2: कैल्शियम की कमी से बच्चे मट्टी नहीं खाते हैं, बच्चे मट्टी खाते हैं खून की कमी से।
0: नुसरत जी, आजकल तो मिट्टी मिली नहीं रही घरों में, आपको कहाँ मिट्टी आ गई?
1: नहीं,
0: मिट्टी के लिए लोग तरस रहे हैं,
1: दीवार पर लगा रहता है वो।
2: मैम आप उसका खून चेक कराइए, अगर बच्चे मिट्टी खाता है तो डेफिनेटली उसका खून हीमोग्लोबिन 10 से कम होगा।
0: हाँ।
2: तो हम खून बढ़ाएंगे तो मिट्टी खाने की आदत छूटेगी उसकी।
1: ठीक है सर, ठीक है,
0: जी जी। डॉक्टर साहब, एक समय था जब घर परिवारों में कई पीढ़ियां एक साथ रहती थी, तो चीजें अनुभव परंपरा से आते रहते थे। अब एकल परिवार है, छोटे परिवार में अब तो माँ बाप बहुत जल्दी घर से बाहर भी चले जाते हैं, लोग बच्चे जो है दूसरे लोगों के साथ पल रहे, तो ऐसे में जो बढ़ता हुआ जो बच्चा है उसके जो बैलेंस डाइट है उसको घर के चीज़ों से कैसे मैनेज करें, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि हम बाहर से चीज़ें ला के उसको बनाएं। तो घर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे बच्चे की बैलेंस डाइट बनाई जा सकती
2: है? सर, जैसे हम बात करते हैं शुरू से कि 6 महीने का बच्चा हो गया, हम कहते हैं इसका वीनिंग स्टार्ट करना है, अन्न प्रसादन स्टार्ट
0: ऊपर से। हाँ जी,
2: तो हम कभी भी प्रेफर नहीं करते कि बाहर का सेरेलेक्ट हो, हम कहते हैं घर में बनी हुई खिचड़ी आप दो उसको। जैसे स्टार्टिंग करते हैं लिक्विड से, दाल का पानी हो गया, दही का पानी हो गया, पतली मूंग की दाल हो गई, नारियल पानी हो गया, है ना, वेजिटेबल सूप है, तो इनसे हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों को टेस्ट नहीं होता, हम एक चीज को दिन में 4 बार देते हैं, 5 से 7 दिन देते हैं, उसको टेस्ट आना स्टार्ट होता है। तो हमको मालूम पड़ता है बच्चे को मीठा पसंद है, नमकीन पसंद है। एक बार लिक्विड डाइट जब बच्चा एक्सेप्ट करने लगता है तो हम सेमी सॉलिड्स पे आते हैं। सेमी सॉलिड्स में जैसे सूजी का हलवा बनाकर दे दिया कभी, पतली मूंग की दाल हो गई, खिचड़ी हो गई। सबसे अच्छा हम बोलते हैं पेशेंट को कि आप दाल को या ड्राई फ्रूट्स वगैरह को एक सुखा के ग्राइंड करके रख लो, कभी भी बनाना, हल्का गुनगुने पानी में डाला, उसकी खिचड़ी बन जाती है, उसमें घी या बटर डाल के आप उसको बच्चे को दे सकते हो।
0: जी जी।
2: फ्रूट्स में आलू, उबला हुआ आलू होता है, है ना, पोटैटो, और जैसे एप्पल हो गया, एप्पल की प्यूरी हो गई, चीकू हो गया, तो आप धीरे धीरे करके बच्चों को टेस्ट करा सकते हो। एक बार सेमी सॉलिड स्टार्ट हो जाते हैं फिर तो हम चपाती वगैरह भी मैश करके दे सकते हैं, डिपेंड करता है बच्चा कितना सेप करता है, कितना सेप करता है। और 2 साल के बाद बच्चा सब कुछ खा सकता है जो हम खा रहे हैं।
0: जी जी। तो उसमें आप कोई भी फ्रूट खिलाइए।
2: जी, बैलेंस डाइट का मतलब है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, सारी चीज होनी चाहिए। तो जैसे हम रोटी, चपाती हो गई, चपाती में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, है ना, मिस्सी रोटी देते हैं उसमें चने काटा मिला देते हैं तो उसमें प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाता है। ठीक है, चावल कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, सब्जी हम बनाते हैं, सब्जी में हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं जो हमारी विटामिन्स की पूरी पूर्ति वो करते हैं। तो इस तरह हमारी बैलेंस डाइट बनती है।
0: जी जी। मतलब बैलेंस डाइट बनाने के लिए ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कारोबार करना है, बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी, घर में वो चीजें हैं पहले से और हमारे आसपास है। एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो
3: हेलो
0: जी, नमस्कार, नाम बताइए अपना।
3: नमस्कार
0: जी जी, सेट थोड़ा धीमा करिए और अपनी बात बताइए।
3: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार।
3: नमस्कार, मैं जितेंद्र दूसार से बोल रहा हूँ।
0: हाँ बोलिए भैया।
3: ग्राम मऊ तहसील खैर जिला अलीगढ़। हाँ,
0: जी जी जी।
3: डॉक्टर साहब आपको नमस्कार।
2: नमस्ते।
3: ये बताइए, जैसे तपेदिक के ऊपर चल रहा है जिक्र आज।
0: अच्छा,
3: जैसे किसी पेरेंट्स को है, क्या ये आनुवांशिक भी है?
0: मतलब ये जाना चाह रहे हैं, ये टीवी की बात कर रहे हैं।
2: अच्छा, टीवी
0: टी टी टी, तो क्या किसी माँ बाप को अगर टीवी है तो क्या
3: आनुवांशिक है या नहीं है?
2: जी बिल्कुल, बच्चे में, छोटे बच्चे में, छोटे बच्चे में जाने का चांस रहता है टीवी का, अगर मदर को टीवी है। तो अगर मदर को टीवी होता है तो हम बच्चे कुछ जांच करा के देखते हैं उसको टीवी है नहीं। अगर कोई भी हमको डाउट लगता है तो बिल्कुल जो टीवी की एक दवाई होती है उसको हम 6 मिनट देते हैं लोडोस के अंदर।
0: जी, तो
3: अगर इसकी जांच कौन कौन सी है, जैसे किसी बच्चे को होती है तो कोई पकड़ में आ जाए?
0: जी, इसमें सबसे पहले तो देखो
3: टेस्ट कौन सा है।
0: जी जी, इसके टेस्ट आप निशुल्क हो रहा है तो ये जान लीजिए टीवी का। और आप किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जाके अगर ऐसी समस्या है तो एक बार माँ को और बच्चे को लेके जाएं और उसको दिखाएं तो वहाँ ज्यादा होगा। आज बच्चों के बारे में हम बात तो कर रहे हैं लेकिन टीवी के बारे में ये समस्या गंभीर है डॉक्टर साहब, अलग से दिखाना चाहिए।
3: एक और सवाल है मेरा छोटा सा।
0: बताओ बताओ बताओ।
3: जैसे बच्चों का भी अब आप जानते हो कि फास्ट फूड पे निर्भर हैं।
0: हाँ।
3: माँ बाप दोनों वर्कर हैं तो फास्ट फूड भी खाते हैं कि पैसे ले जाओ ये ले लेना वो

0: खा लेना, कहीं इतना सही है या गलत है, इस पे प्रकाश डाले।
1: वन इन अ वाइल हर चीज ठीक है भाई, 10 दिन में 15 दिन में एक बार दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, डेली दे रहे बिल्कुल नुकसानदायक है ना।
2: खाना तो घर का ही अच्छा है जी। डॉक्टर साहब, राधा देवी राया से आप लिख रही हैं, आजकल बच्चों में हेपेटाइटिस ए की समस्या सुनने में आ रही है, कारण और बच्चा।
1: देखो, हेपेटाइटिस एक वायरल डिसीज है, वायरस है ना, कारण जो होता है वो ये वाटर बोन डिसीज होती है, यानी खाने पीने से आती है। आपने कहीं गंदा खा लिया, गंदा पी लिया, किसी में हेपेटाइटिस ए का वायरस इन्फिल्ट्रेट है, ठीक है। बचाव इसका वैक्सीनेशन है, हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन आता है, सिंगल डोज वैक्सीन है, आप लगवा सकते हैं, लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्ट करता है।
2: आजकल तो इस पे काफी चल रहा है। इसमें एक प्रकाश जैन नांदेड़ महाराष्ट्र से लिखते हैं, छोटे बच्चों को कितने साल तक वैक्सीनेशन का विधान है, मतलब एक
1: सीडूल? सर, वैक्सीनेशन मैक्सिमम 90% वैक्सीनेशन 2 साल तक पूरा हो जाता है, उसके बाद फिर 5 साल पे लगता है, 10 साल पे लगता है, 16 साल पे लगता है, या कोई नया वैक्सीन मार्केट में लॉन्च होता है तो वो लगता है। मैक्सिमम वैक्सीनेशन आपका 90% 2 साल तक पूरा हो जाता है।
2: 2 साल तक हो जाता है, फिर कुछ बूस्टर डोजे रह जाती है शेड्यूल के हिसाब से।
1: और ऐसा नहीं है कि अगर 2 साल से पहले आपने वैक्सीन नहीं लगवाया तो आप नहीं लगा सकते हो, है ना। वैक्सीन का अपने कैचअप टाइम होता है, जहाँ तक हम वैक्सीन को लगा सकते हैं।
2: जी जी जी, नमस्कार।
3: हाँ नमस्कार सर। सर मैं मथुरा से बोल रही थी, मेरा बच्चा 2.5 साल का है, तो उसको कब्ज की परेशानी रहती है।
2: 2.5 साल का, नाम बताइए अपना।
3: मेरा नाम नीतू है।
2: नीतू जी, ठीक है, 2.5 साल का बच्चा कब्ज है।
1: मैम, कब्ज एक हैबिट होती है, कब्ज बीमारी नहीं होती। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि आपको हैबिट डेवलप करानी है। दिन में 2 से 3 बार पॉटी में बैठाओ बच्चे को अपने आप, ठीक है। खाने के बाद में, खाने में चीकू, आम, पपीता, चने की रोटी, किशमिश, मुनक्के भीगे हुए, ये चीजें देनी है आपको।
3: डॉक्टर साहब, बच्चे तो अक्सर ये सब चीजें खा नहीं पाते ना, क्योंकि बच्चे हमारे हिसाब से तो खाते नहीं है।
1: मैडम, हैबिट बनानी
3: पड़ेगी,
1: हैबिट बनानी पड़ेगी, बीमारी नहीं है, ये हैबिट है ना। आपको पॉटी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, दिन में 3 बार बिठाना है, खाने के बाद बच्चे को पॉटी में 15 मिनट के लिए कम से कम। फूड हैबिट्स में चेंज करना पड़ेगा, मैदा वाली चीजें बंद करनी पड़ेंगी, पैकेट वाली चीजें बंद करनी पड़ेंगी आपको।
2: कहीं ऐसा तो नहीं कि घर में बड़े लोग भी बहुत अच्छा तला भुना खा रहे हो, मैदा खा रहे हो?
3: नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, घर में तो नॉर्मल बनता है, बट बच्चा दाल चावल ये सब चीजें खाना नहीं चाहता।
2: 2.5 साल का तो समझदार भी, आप थोड़ा सा डालेंगी तो मैं समझता हूँ।
1: मैडम, बच्चे साथ में खाते हैं, आप इसको प्ले ग्रुप में डाल दो, ये और बच्चों के साथ में खाना सीख जाएगा, बच्चे अकेले नहीं खाते हैं।
2: स्कूल से सीख के आएगा, अच्छे स्कूल में डाल लिया आपने ना। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब इसमें जैसे फीडिंग की बात चल रही थी, बहुत से सारे लोग जो ऊपर का खिलाते, एक हमारे सज्जन ने पूछा भी भाई बाहर का नहीं खाना चाहिए, कहीं कहीं दूध ही ऊपर का दे रहे, लेकिन दूध भी आजकल इतना ठीक नहीं आ रहा, तो बच्चे कई बार शायद ज्यादा सेंसिटिव होते हैं उन चीजों को, वो नहीं लेते जो कंटामिनेटेड है वो है, लेकिन कुछ बच्चों को आदत पड़ जाती है, तो जैसे ये नीतू जी कह रही कि आदत ही नहीं है, तो ऐसे में परिवार के साथ, चूंकि छोटे परिवार है, न्यूक्लियस परिवार है, बड़े लोग, पहले तो बड़े लोग घूमते फिरते खेलते खिला देते थे, पता भी नहीं लगता था, या आस पड़ोस में जाके लोग बच्चे खाना चीज कहते थे, तो वो चीजें नहीं है, ये समस्या एक बहुत बड़ी समस्या।
1: सर, ये बिल्कुल न्यूक्लियस फैमिली की वजह से सारी प्रॉब्लम, जो एक ज्वाइंट फैमिली होती, बच्चा कभी भी अकेला नहीं खाता है, आप उसके पीछे लेके भागोगे वो आगे आगे भागेगा।
2: जी जी,
1: बच्चा साथ में खाता है, आप 4 लोग 5 लोग अपनी थाली लगा के बैठ जाओ, बच्चा अपने आप समय से लेकर खाना स्टार्ट कर देगा। बच्चों को टेस्ट नहीं होता किसी भी चीज का, उनको टेस्ट डेवलप कराना होता है, जब वो एक चीज को मुंह में 10 बार रखेगा जबरदस्ती, उसको टेस्ट आना स्टार्ट होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई अगर बच्चा नहीं खाता 2.5 साल का, आप स्कूल में डाल दो प्ले ग्रुप में, और बच्चों के साथ में खाना स्टार्ट कर देगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल। एक श्रोता जुड़ने, हेलो हेलो जी, किसी लाइन कट गई इसमें, तो एक आजकल जैसे डॉक्टर साहब उसमें थोड़ी सी बात कर ले, शुरुआत में हुई तो थी निमोनिया, आजकल बच्चों को हो जाता है, गर्मी भी हो रहा है, सर्दी जी, में भी हो रहा है, सर्दियों की बीमारी।
1: एक्चुअली क्या है, निमोनिया का जो परिभाषा है वो एक लेमन लैंग्वेज, लेमन आदमी के लिए अलग है। हर सांस की बीमारी, हर खांसी निमोनिया नहीं होती है। निमोनिया की पहचान एक्सरे में होती है कि उसमें कोई हमारा जो फेफड़ा है वो सफेद हो रहा है, कैसा हो रहा है। मोस्टली जो प्रॉब्लम हम जो समझते हैं वो एलर्जिक प्रॉब्लम होती है, कि मौसम चेंज हुआ, सांस लेने में दिक्कत स्टार्ट हो गई, खांसी स्टार्ट हो गई, तो वो बेसिकली एलर्जिक प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिसीज, जो कि बड़ों में जैसे अस्थमा होता है ना। निमोनिया तो होगा कि बहुत तेज बुखार होगा, एक्सरे में हम देखेंगे तो हमको एक पैच मिलेगा, जो हमारा फेफड़ा काला होता है वो सफेद दिखेगा हमको। तो निमोनिया बैक्टीरिया से होता है, निमोनिया इतना कॉमन नहीं होता, मोस्टली कॉमन मतलब कई बार गले में खांसी हो गई, सांस की नली में सूजन आ गई, फेफड़ों में सूजन आ गई, तो वो एक हर आदमी, उस हर नॉर्मल आदमी के लिए वो सारी चीज निमोनिया है, बट उनकी अलग अलग कैटेगरी होती है जिसको अलग तरह से ट्रीट करना होता है।
2: बच्चों में जैसे जो टॉन्सिलाइट की प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चों में बड़ा प्रिविलेज करती है, वो हर कुछ समय बाद हो ही जाएगी, 15 दिन बाद 20 दिन बाद, तो उसमें फिर बुखार आ जाना, वो आ जाना, तो ऐसे बच्चे जब आपको पता

0: तो उनके लिए कोई विशेष
1: जी
0: सावधानी?
1: सर, टॉन्सिलाइटिस बेसिकली टॉन्सिल से लिम्फ लिम्फ नोड्स होते हैं कि इन्फेक्शन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए बड़े हो जाते हैं, उनके साथ में एक एडिनोइड ग्लैंड और होती है वो भी बड़ी हो जाती हैं। तो प्रिवेंट करने के लिए तो होता है कि मोस्टली इसमें 8 साल के बाद ये अपने आप छोटे होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। बाकी सर्दी जुकाम से बचाना होता है ऐसे बच्चों को, इनकी इम्यूनिटी बिल्डअप करनी होती है। जैसे हम सबसे घर में सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है कि इनको गर्म पानी की भाप दी जाए बिना कोई दवाई डाले शाम के टाइम, तो उससे हमारी सारे नाक के साइनस होते हैं वो क्लियर होते हैं, स्पेस नैरो होती है। जब ऑक्सीजनेशन प्रॉपर होता है तो इन्फेक्शन के चांस नहीं होते हैं।
0: थोड़ा सा चूंकि मौसम शुरू बात
1: हाँ
0: कर डायरिया की बात भी, उल्टी दस्त बच्चों को अगर होता है तो वहाँ कई बार हम उसके इलाज में लग जाते हैं, लेकिन उस बीच में उसका शरीर का फ्लूड बहुत कम हो जाता
1: जी,
0: है, तो उस समय सिर्फ डायरिया और उसको उल्टी दस्त को रोकना ही नहीं बल्कि उसकी फीडिंग पे भी
1: फीडिंग
0: ध्यान
1: पे।
0: है, तो थोड़ा सा एक
1: सर
0: एक्सप्लेन।
1: डायरिया जैसे दस्त वगैरह होते हैं, तो दस्तों के
0: हाँ
1: अंदर एक तुमको पानी कमी पूरी रखनी है।
0: जी,
1: तो एक तो रहता है कि आप ORS के पैकेट मार्केट में मिल जाते हैं, तो ORS का 21 ग्राम का पैकेट रहता है, उसको 1 लीटर पानी में मिला लो और 24 घंटे तक थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को पिलाते रहो आप।
0: हाँ
1: खाने पीने में दस्तों के अंदर मीठी चीजों को अवॉइड करना होता है, जैसे मीठा दूध हो गया, फ्रूटी फ्रूट जूस क्या देना है, केला सबसे अच्छा काम करता है, खिचड़ी दही अच्छा काम करता है, नारियल पानी दे सकते हैं, सादा पानी, नींबू पानी, तो थोड़ा थोड़ा करके इंटेक आप देते रहो। जैसे ज्यादा दोगे तो उल्टी कर देगा बच्चा, तो सिप्स में पिलाते रहो। अगर आपका बच्चा 4 से 6 घंटे में पेशाब कर रहा है तो इसका मतलब पानी कमी नहीं है। अगर 12 घंटे से ज्यादा पेशाब नहीं करता है, दस्त हो रहे हैं, तो बिल्कुल उसको एडमिट करके पानी छड़ाना चाहिए ड्रिप वगैरह।
0: जी, तो ये चीजें भी ध्यान रखने
1: जी
0: की है। एक सिविक सेंस का सा सवाल आया, सिमरन जी लिख रही है कमला नगर आगरा से, कि डॉक्टर साहब आज के समय में बच्चे की निर्धारित उम्र क्या है, 12, 13 या कुछ और? माँ बाप के लिए तो बच्चे हमेशा बच्चे ही होते हैं, तो थोड़ा सा बताइए कि बच्चे तो हम
1: बच्चे
0: सामान्यतः
1: सर
0: के 6 साल तक के बच्चे की बात कर रहे हैं
1: नहीं
0: अभी।
1: सर, हमारी किताब के हिसाब से 18 साल तक के जो होते हैं वो बच्चे होते हैं, पीरियडिक्स के अंदर आते हैं, ठीक है।
0: जी।
1: तो बाकी तो
0: अब जैसे पेडोगोलॉजी के हिसाब से हम देख लेते हैं कि भाई जो बच्चा पढ़ने गया वो एक बच्चा है, एक किशोर हो जाता है, एक फिर युवा हो जाता है, तो शायद मुझे लगता है ये जानना चाह
1: सर
0: रहे कि
1: प्यूबर्टी के चेंजेस 11 साल के बाद आने स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों में, 11 से 13 साल के बीच में प्यूबर्टी के चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। बाकी आप किस सेंस में पूछना चाह रहे हो, लाइक जैसे बच्चा है आपको किसको दिखाना है, मेडिसिन वाले को या पीरियडिक्स को? तो पीरियडिक्स के अंदर मोस्टली 18 साल तक किताब कहती है कि, है ना, बच्चे, हाँ बच्चे माने जाते हैं, उसके ऊपर 18 ईयर के ऊपर से एडल्ट हो जाते हैं। बाकी उनकी बॉडी में चेंजेस 11 से 13 साल में आ जाते हैं, जो फिर एडोलेसेंट बिहेवियर इनका स्टार्ट हो जाता है, इसमें उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स
0: वहां
1: हैं,
0: पे बिहेवियर
1: डेवलपमेंट है,
0: वाली समस्याएं शुरू
1: वहां
0: हो
1: पे
0: जाती
1: बिहेवियर की
0: हैं।
1: प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं।
0: लेकिन आजकल तो डॉक्टर साहब बिहेवियर की समस्या बहुत छोटे बच्चों में भी हो रही है, अब उसका कारण सोशल मीडिया भी हो सकता है, हमारे घरों में लगे हुए टीवी भी हो सकते हैं, हम खुद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख रहे हैं, या माँ बाप के व्यवहार को बच्चे बहुत ऑब्जर्व करते हैं। कई बार जब हम एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं पति पत्नी, या क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं है तो उनको संभालने वाले भी नहीं, झगड़े बहुत हो जाते हैं, लेकिन बच्चा तो ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो
1: जी
0: उसके व्यवहार में भी बहुत
1: बदलाव आते हैं
0: बदलाव आते हैं, तो इन चीज़ों पे माँ बाप को बहुत कॉन्शियस नहीं रहना
1: सब,
0: चाहिए।
1: बिल्कुल रहना चाहिए, माँ बाप को फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए, हर चीज डिस्कस करनी चाहिए, पूछना चाहिए। स्क्रीन टाइम इसमें मेन रीजन होता है, स्क्रीन टाइम को फिक्स कर देना चाहिए कि 24 घंटे में 1 घंटे स्क्रीन टाइम रखना है केवल, ओनली 1 आवर, चाहे वो टीवी का हो चाहे मोबाइल का हो। बाकी थोड़ा टाइम देंगे कि जैसे गर्मी का मौसम है, छुट्टियां चल रही हैं, इंडोर एक्टिविटीज कर सकते हैं, शाम के टाइम आउटडोर एक्टिविटीज कर सकते हैं, तो
0: कुछ खेल बच्चों के साथ खेल लें।
1: जी
0: समय, माना के भागदौड़ का जीवन है, समय कम है, लेकिन उस छोटे और कम समय में जब समय मिले तब तो इन्वॉल्व
1: जी बिल्कुल होना
0: हुआ
1: चाहिए
0: जा सकता
1: इन्वॉल्व।
0: है। शायद मुझे लगता है कि इन्वॉल्व की समस्या, इन्वॉल्वमेंट वाली कम हो रही है, इसीलिए
1: इसलिए सब
0: बच्चे
1: प्रॉब्लम। हाँ
0: चीजें ला रहे
1: पेरेंट्स को,
0: हैं।
1: किसी पेरेंट्स को लगता है कि भाई मोबाइल दे दिया बच्चे को तो वो भी फ्री हो गया, बच्चा भी फ्री है, बट वो चीजें लॉन्ग टर्म में आंखों में नुकसान करती हैं, उसके दिमाग पर असर डालती हैं, जिससे उनके बिहेवियर में बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं, चिड़चिड़ापना है, गुस्सा है, नींद नहीं आना, ये सब प्रॉब्लम बच्चों में जल्दी स्टार्ट हो जाती है।
0: तो अब ऐसे में आपको क्या लगता है, अब चूंकि समय समाप्त हो रहा है, हम समाप्त करना चाहेंगे कि व्यवहारगत उनके पालने की समस्या, उनकी देखभाल की समस्या, और यूँ तो स्कूल्स पे आजकल हम जब PTM में जाते हैं तो कई बार हम पेरेंट्स को देखते हैं कि कई बार माँ बाप ये चाहते हैं कि हमने अच्छे स्कूल में डाल लिया तो हमारी सारी समस्या खत्म हो गई, तो इस उसमें परिस्थितियाँ तो जो हैं वो ही रहेंगी, लेकिन इसमें भी माँ बाप की जिम्मेदारी बड़ी
1: बिल्कुल सर, माँ
0: ओवर
1: बाप की
0: ओवर।
1: जिम्मेदारी पूरी है, बच्चों को प्रॉपर टाइम देना है, प्रॉपर समझना है, उनकी समस्याओं को समझना है, एक तरीके से उनका सेटलमेंट करना है कि क्या है। स्कूल एक नॉलेज देता है, ठीक है, स्कूल सारी चीजें नहीं सिखाता, सोशलिटी बिहेवियर वो सब पेरेंट्स सिखाते हैं, आपकी सोसाइटी सिखाती है।
0: आपके साथ माँ बाप नहीं रह रहे हो, बुजुर्ग नहीं रह रहे हो, दादा दादी नहीं, लेकिन कभी कभी त्योहार

0: पे या जब समय मिले तो उनके पास आप तो चल
1: बिल्कुल
0: के जा
1: जाना चाहिए
0: सकते
1: सर,
0: हैं
1: जितने भी
0: या बुला
1: हमारे
0: लेना
1: जितने
0: चाहिए।
1: फेस्टिवल्स होते हैं उनको सेलिब्रेट करना चाहिए, उनकी इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए, उनकी स्टोरीज बतानी चाहिए, जिससे कि अपने वो अध्यात्म के साथ में जुड़े रहें, सारा उनको मालूम होना चाहिए कि भाई हमारे धर्म में क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें उनको क्लियर होनी चाहिए। तो और अपने जो भी नियर वंस हैं रिश्तेदारों के जाना चाहिए, बात करना चाहिए, जिससे कि सोशल बिहेवियर डेवलप होना
0: संबंध
1: चाहिए।
0: कैसे निभाए जाते हैं अगर बड़े उस बात को ठीक से कर रहे हैं तो शायद बच्चे अपने
1: जी
0: आप सीख
1: बिल्कुल
0: जाते हैं उसमें। तो श्रोता बंधु, आप थे डॉक्टर रितेन गोयल साहब, बाल रोग विशेषज्ञ, आकाश सिटी इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस मथुरा से आप जुड़े हुए हैं। आप इनकी सलाह ले सकते हैं, इनसे मुलाकात कर सकते हैं। आज बहुत सारी चीज़ों को हमने आपके फ़ोन कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लिया, कुछ समस्याएं वैसे भी डिस्कस की, लेकिन घर परिवार में जब बच्चा होता है तो वो हमारे लिए खुशी की बात होती है। वो खुशी लेकर के ही आता है क्योंकि बच्चा कोई संस्कार नहीं होता, वो बच्चा तो आनंद का विषय होता है, वो हमें खुशी ही देता है। लेकिन उसके लालन पालन की, उसकी देखभाल की, और उसकी एक बड़ा लंबा समय होता है, कम से कम आप 2 से 3 साल तो मान ही सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी हमारी बढ़ जाती है, हमारी अपनी लाइफ भी हो सकती है लेकिन बच्चे की लाइफ को अपनी लाइफ के साथ जोड़ना, उसको आगे लेके जाना, उसको संस्कार देना, उनको परिस्थितियों से जो है जोड़ के रखना, समाज को दिखाना। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हमने की, जो मौसम की वजह से आ रही हैं, इन्फेक्शन की वजह से आ रही हैं या इधर उधर से आ रही हैं, उनको भी संभालना है। तो बच्चों को संभालना एक बड़ी जिम्मेदारी, सिर्फ आधा घंटे के इस कार्यक्रम में हम आपको नहीं सिखा सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी यही देना चाहते हैं कि ये हमारा सामूहिक जिम्मेदारी है, किसी एक की नहीं है, पत्नी की नहीं है, पिता की नहीं है, समाज की जिम्मेदारी है। तो इसको उसी रूप में निभाएं, आनंद से लें और आने वाली समस्या को गंभीरता से लेके एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे हॉस्पिटल को जरूर जाएं, घर में लेके ना बैठें। ये हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। डॉक्टर साहब, आप आए, जानकारी दी और जुड़े हमारे श्रोताओं से, इसके लिए आपका बहुत बहुत
1: थैंक
0: धन्यवाद।
1: यू,
0: नमस्कार।
1: नमस्ते।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर। विशेषज्ञ थे डॉक्टर रितेन गोयल, बाल रोग विशेषज्ञ, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स मथुरा।
3: सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ, आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपने मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजिस्ट के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली मथुरा। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ, आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपने मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजिस्ट के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली मथुरा।
2: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज लोक गीत। आज की कलाकार हैं सुनीता वर्मा।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोक गीत का। आज की कलाकार हैं सुनीता वर्मा।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: हमारी जनगणना हमारा विकास।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोक गीत का। आज की कलाकार हैं सुनीता वर्मा। आइए सुनते हैं सुनीता वर्मा के ही स्वर में कार्यक्रम का ये अगला ब्रज लोक गीत।

0: कार्यक्रम ब्रज लोकगीत अब यहीं समाप्त तो होता है। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। इस समय अपराह्न के 1 बजने को हैं, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। इस बातचीत में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल्स क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिश्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री सुकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक की जानकारी दी है।
2: ये हमारा 23rd प्लेनरी मीटिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट होने जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
1: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों तक निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराएगी। सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जानी है। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के

नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। शेयर बाजार दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 35 अंक गिरकर 74,311 पर, जबकि निफ्टी 5 अंक फिसलकर 23,401 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is holding talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The discussions involve the full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in areas of energy, security, trade and investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation and renewable energy. Earlier, External Affairs Minister S. Jaishankar called on Ms. Rodriguez. In a social media post, Dr. Jaishankar said India values her long-standing commitment to the India-Venezuela relationship. Ms. Rodriguez arrived in New Delhi yesterday on a five-day visit to India. She is accompanied by a delegation comprising the Ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance, Science and Technology, and Transportation. President Draupadi Murmu has said India and Lao People's Democratic Republic share close civilizational ties reflected in the
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर. प्रस्तुत है केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी. अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संवेश्वरों में देश गान. अपराह्न 1:15 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम वनिता लोग, जिसमें होगी चर्चा. विषय होगा करें योग रहें निरोग. साथ ही आप सुनेंगे एक और चर्चा, आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस. साथ ही आप सुनेंगे खान पान वार्ता के तहत गर्मियों में घर में बनाए जाने वाले पेय पदार्थ. वार्ताकार होंगी भावना अग्रवाल. अपराह्न 1:45 पर आप आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का. सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम अपराह्न 2:30 पर पेश किया जाएगा. हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी संध्या 4:00.

हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी संध्या 5:30 पर, जिसमें आज की बात के अंतर्गत आप सुनेंगे चर्चा आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और साथ ही आप सुनेंगे सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम विषय पर चर्चा। युवा वार्ता के अंतर्गत आप सुनेंगे समाज सेवा की भावना और युवा मानसिकता विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगी बीना शर्मा। संध्या 6:15 पर किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम में होगी चर्चा मिट्टी का स्वास्थ्य और हरी खाद। साथ ही आप सुनेंगे एक और चर्चा कृषि भूमि का संरक्षण विषय पर। वार्ता में आप सुनेंगे धान की नर्सरी तकनीक। वार्ताकार होंगे डॉक्टर वाई के शर्मा। कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। फिल्मी भजनों पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन आप सुन सकेंगे संध्या 6:45 पर।

सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप सुनेंगे मथुरा वृंदावन के प्रमुख तीर्थ। जानकारी देंगे राजकुमार शर्मा, जिसे प्रस्तुत किया जाएगा संध्या 7:05 पर। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी संध्या 7:31 पर प्रस्तुत किया जाएगा। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला सरकार

0: प्रसारित किया जाएगा प्रादेशिक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। अभी आप सुन रहे थे केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देशगान।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम वनिता लोक।

गिरने से डरना नहीं, हर बार उठना सीखो। हार जीत का खेल है जीवन, अनुभवों को लिखना सीखो। हिम्मत हो अगर दिल में, पहाड़ भी झुक जाएगा। जो खुद पर रखे भरोसा, समय भी रुक जाएगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ नीतू सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार और आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम वनिता लोक में हमारी बहनों का बहुत बहुत स्वागत। बहनों, कार्यक्रम की फुलवारी में हम लेकर आए हैं आपके लिए जानकारी, मनोरंजन, घरेलू टिप्स और फिल्मी तरानों का खजाना। सबसे पहले तो बहनों ये बताइए कि आप कैसी हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारी बहनें हमेशा खुश रहें, लेकिन बहनों सच तो यह है कि हम महिलाएं तभी खुश रहती हैं जब हमारे बच्चे खुश होते हैं। बच्चों की खुशी से बढ़कर कोई और खुशी नहीं होती है। लेकिन बहनों, हम ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि आज भी समाज में ना जाने कितने बच्चों ने अपना बचपन ही खो दिया है। ऐसे बच्चे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार हैं। उनके जीवन में सिवाय उत्पीड़न और भय के कुछ नहीं है। ऐसे आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 4 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 1982 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। उस समय फिलिस्तीनी और लेबनानी बच्चों पर हुए हमलों को देखते हुए इस दिन की स्थापना की गई थी, ताकि संघर्ष क्षेत्रों में बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। आज का दिन उन लाखों बच्चों के दर्द और पीड़ा को पहचानने के लिए समर्पित है जो तिल तिल कर अपना बचपन खो रहे हैं। बच्चों में आक्रामकता के पीछे मुख्य रूप से अपूर्ण जरूरतें, तनाव और संवाद कौशल की कमी होती है। जब बच्चा परिवार में लगातार तनाव, झगड़े या हिंसा देखता है, तो ऐसे में बच्चे जाने अनजाने ऐसा व्यवहार सीख लेते हैं और घर में अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। और बहनों, ऐसे में जब बच्चे अपनी निराशा, थकान, भूख या डर को शब्दों में बयां नहीं कर पाते, या उन्हें लगता है कि उन्हें कोई नहीं समझ पा रहा है, तो वे हिंसक व्यवहार करने लगते हैं। जल्दी गुस्सा आना, मारपीट करना, गाली देना जैसे व्यवहार को अपनाते हैं। बच्चों में स्वयं पर आत्मनियंत्रण की कमी, साथियों का दबाव या हिंसक कार्यक्रम, या फिर आजकल चलने वाले हिंसक खेल देखने से भी बच्चे हिंसक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, जो कि युवा होने पर भी अपने व्यवहार में बदलाव नहीं कर पाते। बहनों, परिवार का प्यार और व्यवहार ही बच्चों को सभ्य बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इनके कोमल हृदय में प्यार और आत्मविश्वास का विकास बहुत होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आज बच्चे कल के अच्छे नागरिक बनके

अपने परिवार और देश को नई पहचान दें। उनमें आशाओं के पंख हों जिनके सहारे वे दुनिया में अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। बहनों, हम तो बस यही कहना चाहेंगे, प्यार से संवारो तो महक उठेंगे जीवन भर। ये नन्हे पौधे हैं जो कल का संसार है, इनके कोमल मन को कभी ना ठेस पहुंचाना, ये तो ईश्वर का सबसे प्यारा उपहार है।

बहनों, इस समय गर्मी अपने चरम पर है। दिन का तापमान इतना बढ़ा हुआ है कि घर से निकलने का मन ही नहीं करता है। लेकिन बहनों, सभी को अपने दैनिक कार्यों के लिए बाहर जाना भी जरूरी होता है। और बहनों, ऊपर से वैसे भी अब गर्मियों की छुट्टी चल गई हैं, और बच्चों की जब गर्मी की छुट्टी होती है तो बच्चे दिन भर मस्ती करते हैं और पूरे दिन क्या फरमाइश करते हैं कि कुछ ना कुछ ठंडा पीने को दें। और ऐसे में बहनों, हम क्या करते हैं, हम लोग अक्सर बाजार से डिब्बा बंद पेय पदार्थ लाकर बच्चों को बहुत शौक से पिलाते हैं और सोचते हैं कि हम बच्चों को एनर्जी ड्रिंक दे रहे हैं। लेकिन बहनों, बाजार की डिब्बा बंद पेय पदार्थ नुकसान करते हैं, महीनों केमिकल के जरिए रखे रहते हैं। ऐसे में हम यदि अपने बच्चों को घर के बने फ्रेश और एनर्जी से भरपूर पेय पदार्थ देते हैं तो बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है। बहनों, जब बात गर्मियों के पेय पदार्थ की कर ही रहे हैं।

0: तो सुनवाते हैं आपको खान पान के अंतर्गत वार्ता, गर्मियों में घर में बनाए जाने वाले पेय पदार्थ। हमें जानकारी दे रही हैं भावना अग्रवाल।
1: जून की इस तपती और झुलसाने वाली गर्मी ने तो सभी को परेशान किया हुआ है। घर से बाहर निकलने के ख्याल से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहनों, ऐसा लगता है मानो सूर्य देवता क्रोधित हो जाएंगे और शरीर का सारा रस सुखा देंगे। बीच में बहनों तापमान में गिरावट भी आती रही है, लेकिन पारा फिर से चढ़ जाता है। बहनों, आप तो जानती ही हैं कि मौसम से डरकर घर में बैठे रहना भी संभव नहीं है, क्योंकि हम सभी के परिवार के सदस्यों को कामकाज के कारण बाहर तो जाना ही पड़ता है, जो कि आवश्यक भी है। इस मौसम में तो कुछ खाने का दिल भी नहीं करता, बस मन करता है कि कुछ ठंडा ठंडा पिया जाए। बहनों, बच्चों की तो इन दिनों छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई अब भी चलती रहती है। कोई कोचिंग के लिए जाता है तो कोई ट्यूशन के लिए, और कोई कोई तो इस गर्मी में भी बाहर खेलने से बाज नहीं आता। और बहनों, जब बच्चे घर वापस आते हैं तो उनकी बस एक ही मांग होती है कि कुछ ठंडा ठंडा पीने को चाहिए। ऐसे में बाजार की कोल्ड ड्रिंक से अच्छा है कि हम उन्हें घर पर बने हुए स्वादिष्ट पोषक तत्वों से भरपूर शीतल पेय पदार्थ पीने को दें। तो बहनों, जल्दी से आप कागज़ और पेन ले लें और कुछ ऐसे ही पोषक तत्वों से भरपूर ताजे शीतल पेय पदार्थों की विधि नोट कर लें। सबसे पहले हम जानेंगे कि बेल का शरबत कैसे बनाया जाता है। तो बहनों, सबसे पहले बेल का शरबत बनाने के लिए जो आवश्यक सामग्री चाहिए, आप उसे नोट कर लें। इसके लिए हमें चाहिए 2 बेलफल, छोटे आकार के, जो बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं, 2 कटोरी चीनी और आवश्यकता अनुसार पानी। बेल का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले बेल को फोड़ लें और इसके गूदे को निकालकर एक अलग भगोने में रख दी जाए। इस बेल के गूदे में अंदाज से पानी डालकर अच्छी तरह मसल लें। इस मसले हुए गूदे को एक साफ सूती कपड़े की सहायता से छान लें। अब इस छने हुए रस में चीनी मिला लें। बहनों, यदि रस गाढ़ा लगे तो आप इसमें और पानी भी मिला सकती हैं। ठंडक प्रदान करने वाला बेल का शरबत तैयार है। इसे बर्फ डालकर पिएं और पिलाएं। बहनों, यदि आप इस रस को अधिक समय तक रखना चाहती हैं तो इस रस को धीमी आंच पर थोड़ा गाढ़ा होने तक पका लें और फिर ठंडा करके कांच की बोतल में भरकर रख लें। बहनों, जब भी आवश्यकता हो तो आधा गिलास पानी में 3 चम्मच इस गाढ़े रस को मिलाकर ऊपर से बर्फ डालकर ठंडा ठंडा पेश करें। इसे अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें ऊपर से नमक, पिसी काली मिर्च और नींबू का रस भी मिला सकती हैं। बहनों, ये तो हुई बेल के शरबत की बात। इसके बाद आप नोट कीजिए दही फ्रूट क्रीम बनाने की विधि। दही फ्रूट क्रीम बनाने के लिए बहनों, हमें चाहिए 2 कप ताज़ा दही, आधा कप क्रीम, आधा कप कटे फल जैसे आम, केला, खीरा, अंगूर, 1/4 कप चीनी, आधा छोटा चम्मच नींबू का रस, आधा छोटा चम्मच वनीला एसेंस। दही फ्रूट क्रीम बनाने के लिए पहले चीनी को सिल्पर या फिर मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लें। फिर इस पिसी चीनी के 2 भाग कर लें। 1 भाग को दही में डालकर मिला लें और दूसरे भाग में नींबू का रस और वनीला एसेंस मिला लें और फिर इस नींबू और एसेंस वाली चीनी में क्रीम डालकर पफ कर लें। यानी कि बहनों, क्रीम को इतना फेंटें कि वह फूलकर हल्की हो जाए। अब एक कांच का बड़ा ग्लास लें और इसमें पहले मीठा दही डालें, फिर कटे हुए फल की 1 परत लगाएं। इसके बाद क्रीम डालकर फ्रीज में ठंडा होने के लिए रख दें। बहनों, जब भी कोई फरमाइश करे उसके आगे ठंडी ठंडी दही फ्रूट क्रीम भरे गिलास पेश करें और तारीफ पाएं। इस मौसम में जब भी कोई मेहमान आता है तो हमें फटाफट शरबत तैयार करके देना होता है, लेकिन बहनों, ठंडे पानी में जब चीनी घोलते हैं तो अधिक समय लगता है। इस समय को बचाने के लिए बहनों, मैं आपको एक आसान सा तरीका बताती हूँ। आप जिस प्रकार एक तार की चाशनी बनाती हैं, बस उसी प्रकार चीनी का गाढ़ा घोल बना लीजिए और इस घोल को ठंडा करने के बाद बोतल में

0: भर कर रख लीजिए। इसे कई दिनों तक रखा जा सकता है। आपको जब भी किसी भी प्रकार का शरबत बनाना हो, आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। आप इसी घोल या सिरप का इस्तेमाल करके अदरक नींबू की शिकंजी भी बना सकती हैं। अदरक नींबू शिकंजी बनाने के लिए हमें जो आवश्यक सामग्री चाहिए उसे भी आप नोट कर लीजिए। 5 गिलास अदरक नींबू शिकंजी बनाने के लिए चाहिए 1/2 कप नींबू का रस, 1/4 कप अदरक का रस, 2 कप चीनी का घोल या सिरप। इसे बनाने के लिए बहनों एक भगोने में 4.5 गिलास पानी ले लें और सभी सामग्री यानी कि नींबू का रस, अदरक का रस और चीनी के घोल को पानी में मिला लें। अब इसमें कुटी हुई बर्फ मिलाकर कांच के गिलास में डालकर पेश करें। आप चाहे तो इसमें स्वादानुसार नमक और भुना जीरा पाउडर भी मिला सकती हैं। बहुत से लोग कॉफ़ी के बहुत शौकीन होते हैं, परंतु गर्मियों में गरम गरम कॉफ़ी पीने का दिल नहीं करता। इस समस्या का समाधान हम कोल्ड कॉफ़ी के ज़रिए कर सकते हैं। क्यों ना कोल्ड कॉफ़ी बनाने की विधि भी नोट कर ली जाए। 1 गिलास कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 गिलास दूध, 1 छोटा चम्मच कॉफ़ी पाउडर, 4 चम्मच चीनी और कुटी हुई बर्फ। कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए बहनों सभी सामग्री को मिलाकर मिक्सी में चला लीजिए। जब ढेर सारे झाग बन जाएं, तब एक कांच के गिलास में कोल्ड कॉफ़ी डालकर ऊपर से थोड़ी और कुटी बर्फ डाल दीजिए और चुटकी भर कॉफ़ी पाउडर बुरक कर ठंडी ठंडी कोल्ड कॉफ़ी पेश करें। तो बहनों आपने बेल का रस, दही फ्रूट क्रीम, अदरक नींबू शिकंजी और कोल्ड कॉफ़ी बनाने की आसान सी विधि अवश्य नोट कर ली होगी। आशा करती हूँ कि आप इन आसान से पेय पदार्थों को अवश्य आजमाएंगी। आखिर में एक और आसान सा टिप आपको दिए जाती हूँ। कई प्रकार के शरबतों को आप आइस ट्रे में जमा कर रख दीजिए, जैसे रूह अफजा, खस या फिर संतरे का या आम का शरबत। इन्हें आप आइस ट्रे में भरकर जमा लें और जब भी ज़रूरत हो दही की मीठी लस्सी में इन शरबतों के रंग बिरंगे क्यूब्सों को डालकर परोसें। ये पीने में तो स्वादिष्ट लगते ही हैं, साथ ही देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं।
1: बहनों आप सुन रही थी खान पान के अंतर्गत वार्ता, गर्मियों में घर में बनाए जाने वाले पेय पदार्थ। हमें जानकारी दे रही थी भावना अग्रवाल। हम तो बस बहनों यही कहना चाहेंगे, जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं जिंदगी उनके आगे सिर झुकाती है।

जीवन भर जो योग करेगा जीवन वो निरोग रहेगा। चिंता मन से दूर भगाओ, तन मन अपना मजबूत बनाओ। जी हाँ बहनों, अपने को स्वस्थ रखने के लिए योग करना बेहद ज़रूरी है। योग करने से शरीर में आलस खत्म हो जाता है, हम अपने को फ्रेश फील करते हैं। बहनों, योग शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने का सबसे शक्तिशाली और प्राकृतिक तरीका है। योग के द्वारा हम चिंता मुक्त होकर दिमाग को काफ़ी हल्का महसूस करते हैं। बहनों, नियमित योगाभ्यास करने से रक्त संचार बेहतर होता है, हम अनेक जानलेवा बीमारी से बच जाते हैं, क्योंकि योग हमारे तन मन दोनों को स्वस्थ रखता है। योग शरीर को ऊर्जावान बनाता है, स्मरण शक्ति मजबूत होती है। बहनों, अलग अलग तरह के योगासन के माध्यम से हम शरीर को लचीला और मजबूत बनाते हैं, जैसे पीठ दर्द, मोटापे का शिकार, लंबाई बढ़ाना, रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना और पेट की चर्बी को कम करने के लिए अलग अलग योग होते हैं, जिनको नियमित रूप से करना काफ़ी फायदेमंद होता है। और बहनों, इससे हमारा रूटीन भी बनता है, हमारा ये लगता है कि हाँ, हमें अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी स्वास्थ्य के लिए 10-15 मिनट कम से कम दिन में अपने लिए देने हैं। बहनों, इसी के साथ जैसे हम रोज़ाना जब तक हम 10 या से 15 मिनट तक आंखें बंद करके ध्यान करें, ये मेडिटेशन

चिंता को दूर करने का बहुत अच्छा उपाय है। ये एकाग्रता बढ़ाता है और हमारी चिंता इससे छूमंतर हो जाती है। योगाभ्यास हमेशा सुबह खाली पेट या फिर भोजन करने के कम 3-4 घंटे के बाद करना चाहिए। मैंने योग करने से नियमितता बनाए रखें। हमें रूटीन में योग करना है, ऐसा नहीं है कि आज हमने योगा करा और हमने 4 दिन का आराम कर लिया। ऐसा करने से आराम हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक हम नियमित रूप से योग करेंगे और इसके जब हम योग करते हैं तो हमें ऐसा थोड़ी ना है कि हम 1-2 दिन में योग करेंगे और हमारे बॉडी में चेंजेस नज़र आ जाएंगे। योग के परिणाम दिखने में आमतौर पर 6 से 12 सप्ताह का समय लगता है, इसीलिए धैर्य रखें। योग यदि स्वच्छ हवादार जगह पर करते हैं तो अधिक फायदा होता है। बहनों, शुरुआत में जबरदस्ती शरीर पर प्रेशर नहीं डालें, क्षमता के अनुसार ही आसनों का अभ्यास करें। तो बहनों, ऐसे ही बस हम तो चाहते हैं हमारी बहनें मस्त रहें और खुश रहें। बहनों, अब समय होता है हमारे कुछ घरेलू टिप्स का। बहनों, हम महिलाएं आमतौर पर क्या करती हैं कि फेस पे तो अलग अलग फेस पैक लगाकर घरेलू उपचार करके चमका लेती हैं, लेकिन बालों को अधिकतर नज़रअंदाज कर देती हैं, जिससे कि बाल हमारे रूखे सूखे और बेजान हो जाते हैं। तो बहनों, अगर ऐसे में हम थोड़ा समय अपने बालों को भी दें तो हमारे बाल भी अच्छे रहेंगे। इसके लिए हमें बहुत कुछ नहीं करना, बस घर के थोड़े से छोटे मोटे उपाय करके हम अपने बालों को स्वस्थ कर सकते हैं। जैसे एलोवेरा का पेड़ तो आजकल सब जगह पौधा होता है। एलोवेरा का एक पत्ता तोड़ें और उसका जेल निकाल लें। उस जेल को अपने बालों में लगा लें। बालों में लगा कर आधे घंटे के लिए बाल छोड़ दें ऐसे ही, और फिर सादा पानी से बालों को धो लें। बहनों, अगर हम एलोवेरा जेल ऐसे ही नहीं लगाएं तो हम हिना के साथ भी लगा सकते हैं। मेहंदी के साथ भी अगर हम एलोवेरा जेल मिक्स करके लगाते हैं तो हमारे बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से जैसे हम मेथी दाने का भी हम प्रयोग कर सकते हैं अपने बालों के लिए। मेथी दाने को हम 4-5 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। जब वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो उसको मिक्सी में पीस लें। उसमें थोड़ा सा दही मिला लें। दही और मेथी दाना मिलकर बहुत अच्छा मास्क तैयार हो जाता है। इसे अपने बालों में अप्लाई करें और आधे घंटे या 1 घंटे के बाद अपने बालों को धो लें। बहनों, बालों में हम जो भी चीज़ लगाते हैं तो उससे पहले हमारे बाल साफ होने चाहिए, क्योंकि क्या होता है अगर गंदे बालों में हम ये सब लगाएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा और हमारे बाल और ज़्यादा खराब हो जाएंगे। जैसे बहनों, डेली रूटीन में सबके यहाँ चावल बनते हैं, तो हम अक्सर क्या करते हैं, चावल जो हम भिगो के रखते हैं उसका पानी फेंक देते हैं। अगर हम इस पानी को स्प्रे बोतल में डालकर बालों में लगाएं तो ये भी बहुत अच्छा शाइन करता है। और जैसे कई काफ़ी लोगों के क्या होता है कि चावल का माड़ निकल कर बनते हैं चावल, तो उस माड़ को भी हम वेस्ट कर देते हैं। अगर उस माड़ को हम रख लें और उसके थोड़े बालों में लगाएं, जैसे 8 दिन में 4 दिन में जब भी हमें समय है तब हम आराम से बालों में लगाएं और 1 घंटे के बाद बालों को नॉर्मल पानी से धो लें, तो बाल बहुत शाइनी हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं। बहनों, इसी तरीके से चाय की पत्ती, हम लोग चाय तो डेली पीते ही हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि इसके पत्ती का पानी को हम सिर पर भी लगाकर यूज़ कर सकते हैं बालों के लिए भी। बालों में के ग्रोथ के लिए चाय की पत्ती के पानी को अच्छी तरह उबाल लें। अच्छी तरह उबालने के बाद जब वो पानी थोड़ा सा गाढ़ा सा हो जाए उसे स्प्रे बोतल में डाल लें छान कर, और इसको हम अपने बालों में स्प्रे कर सकते हैं। कभी भी चाय की पत्ती का पानी हो, चावल का माड़ हो, इन सब को लगाने से ये होता है कि हमें बार बार शैम्पू नहीं करना पड़ता, हम केवल नॉर्मल पानी से भी बालों को धो सकते हैं। तो बहनों, ये तो थे कुछ घरेलू टिप्स जो आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। बस हम तो यही कहना चाहेंगे चलते चलते, खुशी एक एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है, गम एक ऐसा अनुभव है जो हर किसी के पास है, पर जिंदगी तो वही जीता है जिसे खुद पर

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अभी बहनें सुन रही थीं अपना कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया नीतू सक्सेना ने। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर को फिल्म आपके साथ के इस गीत के लिए। गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे हेमलता और यशुदास की जुगलबंदी में फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाई के इस गीत को। गीत को लिखा रविंद्र जैन ने, संगीत भी रविंद्र जैन का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला और आखिरी गीत।

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को फिल्म ड्रीम गर्ल के लिए। गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इसी गीत के साथ संगीत का ये सफर अब यहीं समाप्त तो होता है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय अपराह्न के 2 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद NEC का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा

0: व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित जीबीआरसी का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। ये अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है, इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
2: ICU 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है शॉर्ट सर्किट से। कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है, बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी छुट्टी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जाँच कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रूपये और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और

0: में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
1: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहुखेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
2: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहुखेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,000 नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

इस वक्त आप सुन रहे हैं सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। फिल्म संगीत के सफर में मैं हूं आपके साथ, आपके रेडियो मित्र उषा पांडे।

अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और लता मंगेशकर की जुगलबंदी में फिल्म दुश्मन के इस गीत को। गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत उत्तम सिंह का। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के इस गीत के लिए। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की ये अगली पेशकश।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल की आवाज में फिल्म दिल है कि मानता नहीं के इस गीत को। गीत को लिखा समीर ने और संगीत नदीम श्रवण का था। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अभी आपने सुना नूरजहां फिल्म के इस गीत को, गीत को अपनी आवाज दी साधना सरगम ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण को, फिल्म थी दस्तक, जावेद अख्तर की शब्द रचना थी और संगीत राजेश रोशन का।

सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का ये सफ़र अब यहीं समाप्त होता है। इस सफ़र को तय किया आपने अपनी रेडियो मित्र उषा पांडे के साथ। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय अपराह्न के 3 बज चुके हैं। अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। संध्या के 4 बजे हमारी दूसरी सभा के प्रसारण में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय संध्या के 4 बजे हैं। अब हमारी दूसरी सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: रक्षा और देश की सुरक्षा में सदैव अपने कर्तव्य समर्पण और देश सेवा में निष्ठा से तत्पर रहते ही हैं। साथ ही ग्रीन इनिशिएटिव से लेकर मिशन लाइफ तक जंगल, पहाड़, नदी और आकाश की भी हिफाजत में जुटे हैं। प्रोटेक्टिंग द नेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग नेचर, यानी देश की रक्षा, प्रकृति की रक्षा। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ से कैंटोनमेंट बन रहे हैं जीरो वेस्ट जोन, सोलर पावर से चल रहे हैं कैंप और प्लांटेशन ड्राइव से हर सोल्जर बन रहा है एक इको वॉरियर। ये है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन्ड मिशन जिसके लिए हमारी सेना जानी जाती है। और इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को ये इनिशिएटिव और भी सशक्त और भी स्पेशल बन रहा है। भारत की धरती सलाम कर रही है अपने सपूतों को, अपने सैनिकों को। 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने आकाशवाणी रेनबो पर आज का विशेष संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित है, जिसे बड़े दिल से बनाया है टीम रेनबो ने। और आज का ये स्पेशल एपिसोड आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ, और हमारे ओबी टीम मेंबर हैं वैभव श्रीवास्तव। और हमारी रेनबो टीम पहुंची हुई है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी कैंप दिल्ली में। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कमांडेंट गौरांग जैन के संदेश से।
1: तो आज मौजूद है आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में और हम बात करने वाले हैं यहाँ के कमांडेंट कर्नल गौरांग जैन से। सर, वेलकम टू द शो।
2: थैंक यू, और आपका यहाँ कैंप में आने के लिए और एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद।
1: सर, जब लोग आर्मी के बारे में सोचते हैं, हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की खासकर, तो हमारे जहन में आता है डिसिप्लिन, ड्रिल्स, मिलिट्री ऑपरेशंस, कोवर्ट ऑपरेशंस और ये सब चीजें। तो सर, बॉर्डर्स को सिक्योर करने से लेकर पर्यावरण को सिक्योर करने तक ये बदलाव की शुरुआत कैसे हुई, प्लीज हमें बताइए।
2: देखिए, जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये सिर्फ बॉर्डर की हिफाजत के बारे में नहीं है, इसमें हमारी मिट्टी, जल, वायु सभी इस सुरक्षा के उसमें आते हैं। ये पर्यावरण संरक्षक आज सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक ये हमारे आवश्यकता बन चुकी है, और ये सिर्फ हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। फौज का और पर्यावरण का हमेशा से एक अटूट रिश्ता रहा है। आप जानते हैं कि कैंटोनमेंट हमेशा से ही हरे भरे मिलेंगे आपको, और जो हमारे सैनिक हैं इनमें साफ सफाई रखना, पेड़ पौधे लगाना, ये उनके डीएनए में है। लेकिन आज सिर्फ साफ सफाई से या पेड़ पौधे लगाने से नहीं होगा, हमें एक पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनानी पड़ेगी और हमें कल्चरली अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमने मिशन ग्रीन के तहत हमारा डीकार्बनाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अपक्षित मुक्त सैन्य भारत अभियान, जैसे कि जीरो वेस्ट इकोसिस्टम्स को हम बोलते हैं, वो चलाया जा रहा है, और ताकि हम आने वाली पीढ़ी को इसको सुरक्षित कर सके।
1: सर, क्या जीरो वेस्ट मॉडल एक्चुअल में मुमकिन है, क्या इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से हमें बता सकते हैं प्लीज?
2: जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है, और इसके लिए बस हमें थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत होती है। जीरो वेस्ट मॉडल के लिए कुछ मापदंड होते हैं, जैसे कि कोई भी वेस्ट हमारा लैंडफिल में ना जाए, वेस्ट को सोर्स पे ही 100% हम सेग्रीगेट करें, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको 100% हम इन हाउस कंपोस्ट कर सकें, कोई भी वेस्ट हम ओपन बर्निंग में ना करें या इंसिनरेशन ना करा जाए इत्यादि। जैसे मैंने बताया कि अगर ये अपनाना है तो हमें सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, वेस्ट को वेस्ट ना समझें बल्कि उसको हम रिसोर्स समझें। जिस दिन हमने वेस्ट को रिसोर्स समझ लिया, हम उसको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि रिसोर्स को हम रखते हैं और वेस्ट को हम फेंकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी सामान आप देखेंगे कि उसको हमने रिसोर्स की तरह समझ के रखा है, तो या तो वो खुद ही हम यूज कर सकते हैं या कोई और, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो रिसाइकिल होकर कहीं ना कहीं किसी के इस्तेमाल में आ ही जाएगा।
1: सर, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स कैंप किस प्रकार से जीरो वेस्ट में तब्दील किया गया, क्या इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आप हमें समझा सकते हैं प्लीज?
2: जी बिल्कुल, आज जैसा आप जानते हैं पहले जितना भी वेस्ट होता था ये इकट्ठा होकर म्यूनिसिपैलिटी लैंडफिल्स में जाया जाता था, जो फिर कूड़े का पहाड़ बन गया। सो इसके लिए हमने जीरो वेस्ट के लिए सिस्टम तैयार किया। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार वेस्ट को सोर्स पे ही चार तरीके से हम सेग्रीगेट करते हैं, जैसे ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, स्पेशल केयर वेस्ट और सैनिटरी वेस्ट। इसके अलावा हमने कोलैबोरेट किया है कई एनजीओ से या संस्थाओं से, जो कि रिसाइकल हमें इन साइंटिफिक तरीके से इसको कर सके। इसके अलावा कई उपकरण भी लगाए गए हैं। तो सब करने से इसका नतीजा ये हो रहा है कि जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो अब 100% हम इन हाउस यानी कि कैंप में ही कंपोस्ट कर रहे हैं, या फिर उसको हम बायोगैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपका किचन का वेस्ट हो गया या हॉर्टिकल्चर वेस्ट। जो ड्राई वेस्ट है जैसे पेपर वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, उनको हम इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद इन संस्थाओं को देते हैं जो वहां पे इनको रिसाइकिल करके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स में तब्दील करते हैं, और इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का करते हैं। इसके अलावा अवेयरनेस के लिए हमने कुछ रैक्स लगाए गए जिसको हम वॉल ऑफ काइंडनेस कहते हैं, ताकि जो सामान काम का है लेकिन शायद मेरे काम का नहीं है उसको

0: कुछ करने के लिए लोग अपना वहां पे उसको डोनेट करते हैं, जैसे किताब, बुक्स, शूज, बच्चों के खिलौने, बर्तन, वो डोनेट करते हैं और जिसको जरूरत है वो उसको वहां से ले लेता है। सो इन सब छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जो हमने चीजें शुरू करी है यहाँ पे, इससे पिछले कुछ ही महीने में सिर्फ कैंप ने करीब 50 टन से भी ज्यादा वेस्ट को रिसाइकिल कर दिया गया है और लैंडफिल जाने से बचाया गया है। और इसी तरीके से बाकी कई यूनिट और हमारे स्टेशन अब जीरो वेस्ट में इस तरीके से तब्दील हो रहे हैं।
1: कहना होगा कि इनिशिएटिव्स वाकई कमाल के हैं और आई होप कि आर्मी से इंस्पिरेशन लेके बाकी लोग भी इनिशिएटिव्स करें। सर, क्या ये अभियान कैंप को साफ रखने और कचरे को लैंडफिल में जाने से रोकने के लिए है या इसको और आगे बढ़ाने के लिए, आपने क्या सोचा है या क्या कदम उठाए हैं?
0: देखिए, साफ सफाई रखना और लैंडफिल में कचरा ना जाने के लिए ये एक छोटा सा पार्ट है ओवरऑल जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो, क्योंकि इसमें और भी कई चीज शामिल हो जाती है, जैसे कि हमारे नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना। आपको पता है नेचुरल रिसोर्स एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, चाहे हम पानी की बात करें चाहे हम फ्यूल की बात करें, तो उनको कंजर्व करना। इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन करना, वृक्ष लगाना, ये भी सारा हमारे पूरे पर्यावरण की तरफ आता है और इन सब चीजों पर भी हम काफी काम कर रहे हैं। अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन पे आऊं, सबसे पहले फ्यूल कंजर्वेशन, तो उसमें ईवाइजेशन यानी कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैंप में ही आज की डेट में 25 से ज्यादा व्हीकल हमारे इलेक्ट्रिक हो रखी हैं, जिसमें हमारे सैनिक यहाँ पे ऑफिस में जा रहे हैं। सोलराइजेशन का काफी काम चल रहा है जिससे कि बिजली की खपत कम हो रही है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो हमारा थल सेना भवन बन रहा है वो GRE4 कंप्लाइंट है और एक इको फ्रेंडली मटीरियल से बनाया जा रहा है। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करने के लिए करीब 100 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, सेंसर लाइट्स लगाई जा रही हैं और वाटर कंजर्व करने के लिए वहां पे इंटीग्रेटेड एसटीपी प्लांट, अनेकों वाटर रिसाइक्लिंग पिट्स लगा रहे हैं और यही पानी इस्तेमाल किया जाएगा वहां के एबोरिकल्चर को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा वहां पे मेगा कंपोस्ट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं जो कि करीब 1500 केजी तक का कंपोस्ट एक दिन में वहां पे कर सकते हैं। सो जब हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षक की तो वो सिर्फ एक पहलू वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है बल्कि पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच आती है जो कि एज एन आर्मी और एज अ कैंप हम इसको अपना रहे हैं।
1: आपने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, होलिस्टिक अप्रोच। मैं पूछूंगा कि इन सभी इनिशिएटिव्स का अल्टीमेट गोल क्या है आपके हिसाब से?
0: देखिए, अल्टीमेट गोल तो यही है कि हम पर्यावरण को किस तरीके से सुरक्षित कर सके लेकिन साथ में कैसे हम एक डीप रूटेड कल्चरल चेंज यानी कि सांस्कृतिक बदलाव ला सके। हमारे जो जवान हैं, हमारे सैनिक हैं, ये देश के हर प्रांत से आते हैं और यहां से उसके बाद वो देश के हर जगह यानी कि बॉर्डर एरिया से लेकर बड़े शहर तक तैनात होते हैं। अगर हम यहां पे एक ग्रीन सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं तो ये हमारे एक ग्रीन एम्बेसडर्स का काम करेंगे। यहां पे एक जीरो वेस्ट इकोसिस्टम में है, डेली उठ के ये अपने वेस्ट को सोर्स पे ही सेग्रीगेट कर रहे हैं, प्लांटेशन ड्राइव में हिस्सा ले रहे हैं, एक पेड़ मां के नाम के जैसे अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। तो जब ये वो यहां पे इस चीज को हिस्सा ले रहे हैं तो ये अब एक इनकी जीवन शैली और एक इनकी आदत बन चुकी है। जब यहां से ये पोस्टिंग जाएंगे कहीं पे भी तो ये अपना माइंडसेट लेके जाएंगे और वहां पे ये सोसाइटी में इस चीज को रेप्लिकेट करेंगे और एक कल्चरल चेंज डेवलप करेंगे।
1: सर, पूछना चाहूंगा कि वाकई एक अद्भुत विजन है और हमें पूरी उम्मीद है कि पर्यावरण संरक्षण में इसमें काफी मदद मिलेगी। आई होप कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये रंग लाएं और जैसा आपने कहा कि एक माइंडसेट चेंज हो ना सिर्फ फौजियों का, सोल्जर्स का, बल्कि पूरे देश का इसके थ्रू।
0: जी, यही हमारा इसके ऊपर कोशिश है, चाहे वो आर्मी हेडक्वार्टर कैंप है और या फिर पूरे इंडियन आर्मी इसके ऊपर लगी हुई है और मुझे यकीन है कि हमें इसमें और आगे बढ़ावा मिलेगा और सोसाइटी में चेंज आएगा। मैं चाहूंगा कि आप जो हमने यहाँ पे ये चेंजेस ला रहे हैं, जो जीरो वेस्ट कैंप है, जैसे कि ये इंडियन आर्मी का ये पहला जीरो वेस्ट यूनिट है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको जाके देखें और ग्राउंड पे, और हमारे मेजर अजीत मोरे हैं जो इसके प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, तो ये आपको एक बार ग्राउंड पे पूरा इसको दिखाएंगे।
1: साहब, हमसे बात करने के लिए, ग्रीन इनिशिएटिव्स के बारे में बताने के लिए और हमेशा की तरह एक सोल्जर होने के नाते हमें प्रेरणा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू होस्ट यू।
2: जय हिंद। तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: देश की मिट्टी को देश के सैनिकों का सलाम है दिल से। इस गीत के बाद अब हम आज के हमारे संदेश टू सोल्जर के स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स आर्मी कैंप के प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे से।
1: हम मौजूद हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स एमओडी आर्मी कैंप के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जोन में और हमारे साथ फिलहाल हैं प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे। सर, स्वागत है शो में। हमें इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बताइए कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं।
2: धन्यवाद, मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। तो मैं बहुत ही गर्व के साथ आपको कहना चाहूंगा, ये हमारे पूरे भारतीय सेना का पहला जीरो वेस्ट कैंप है। भारतीय सेना की हर एक यूनिट, हर एक इकाई जहाँ भी मौजूद है वो इसी तरीके से इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रही है। जब गवर्नमेंट के गाइडलाइंस मिले थे तो उसी के अनुसार हम यहाँ पे वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट, इसको हम यहाँ पे सेग्रीगेट करते हैं। मतलब मुद्दा यह है कि वेस्ट को उसके सोर्स पे ही 100% रिसाइकल किया जाए। साथ ही साथ में जब ऑर्गेनिक वेस्ट या वेट वेस्ट की हम बात करते हैं तो इसमें हम एरोबिक्स लगाए हैं, जिसको एरोबिक से हम खाद बनाते हैं और साथ में बायोगैस लगाया गया है। बायोगैस कंपोजिट सिस्टम से हम इसको कुकिंग हाउस में इस्तेमाल करते हैं। ड्राई वेस्ट में प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, ई वेस्ट और टेक्सटाइल वेस्ट लगाया गया है, तो इसके द्वारा भी हम इसको रिसाइकल्स को आगे देते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, वेस्ट इज नॉट अ वेस्ट, इट इंडिफिनिट रिसोर्सेस। इसको मैं एग्जांपल के तरीके से आपको समझाना चाहूंगा। समझ लो मैंने किसी भी दुकान से आज चिप्स का पैकेट खरीद लिया, चिप्स मैंने खा लिए, रैपर फेंक दिया, तो रैपर मेरे लिए तो वेस्ट है। साथ ही साथ में मैंने केला खरीद लिया, केला खा लिया और उसका छिलका फेंक दिया, दोनों चीजें मेरे लिए वेस्ट है। अगर मेरे जैसे किसी समझदार इंसान ने उसको दोनों को इकट्ठा करके फेंक दिया, वो प्लास्टिक कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा, वो धरती की हानि पहुंचाएगा। वो केला भी मैंने कहीं और फेंक दिया, कोई उस पे फिसलेगा, गिरेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई समझदार इंसान है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, प्लास्टिक को मैंने प्लास्टिक वेस्ट में डाल दिया और उसको रिसाइकल कर दिया और उसको ब्यूटीफुल इक्विपमेंट्स में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वही केले के छिलकों को हमने खाद के एरोबेस में डाल दिया और उससे हमने खाद बनाई जो नेचर को आगे प्रोटेक्ट करती है। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, वेस्ट इज द ओनली वेस्ट इफ यू वेस्ट इट।
1: थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए।
2: धन्यवाद।
0: हमने सुना कैसे पूरी डिटेल में मेजर अजीत मोरे

0: ने ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ के बारे में बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके जानते हैं पूरे मिशन के बारे में। तो सबसे पहले बात एरोबिन कंपोस्टिंग की, जिसके बारे में बता रहे हैं हवलदार राजकुमार।
1: तो बात चल रही थी आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की। हम यहाँ फिलहाल मौजूद हैं एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के पास और हमारे साथ मौजूद हैं हवलदार राजकुमार जी। सर, हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में प्लीज बताइए।
2: मैं आपको ऑर्गेनिक यानी के बेड बेस्ड के बारे में बताऊंगा। किचन और हॉर्टिकल्चर को मैनेज बेस्ड करने के लिए हमने कुक हाउस में एरोबिन सिस्टम और बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल किया है। एरोबिन के अंदर हम वेजिटेबल बेस्ड, फ्रूट बेस्ड, सूखी पत्तियां और बिना पका हुआ किचन वेस्ट को डालते हैं, जो कि 20 से 30 दिन में रिसाइकल होकर खाद बन जाती है। इस खाद को हम एरोबिन से निकालते हैं, जो कि 2 से 3 दिन सूखने के बाद इसको हम एक अच्छी क्वालिटी में खाद दर्शाई गई है। पूरी तरह से खाद तैयार होने के बाद इस तरह से खाद निकलती है। इसको आप पैकिंग भी कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से पर्यावरण फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें ना ही बिजली और ना ही किसी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। कैंप में अब तक सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर इसे हमने 750 केजी खाद को तैयार किया है।
1: हवलदार राजकुमार जी, इसकी कैपेसिटी कितनी है और कितने दिन में खाद बन जाती है?
2: इसकी कैपेसिटी 400 केजी की होती है। इसे हर दिन 20 से 25 केजी वेस्ट डाला जाता है, जो कि 20 से 25 दिन के अंदर कंपोस्ट यानी कि खाद तैयार हो जाती है।
1: साहब, एक और बात बताएं हमें, ये जो एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम है, इसको इस्तेमाल में लाने के लिए और क्या मिलाया जाता है?
2: इसको ड्राई रखने के लिए इसके अंदर सूखी पत्ती डाली जाती है। इसके अंदर किसी भी केमिकल की जरूरत नहीं है, ये बायोलॉजिकल काम करता है।
1: सर, आपने हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में इतनी जानकारी दी, हमें बताया कि किस तरीके से खाद बनती है और बिना केमिकल्स को यूज किए बनती है। ये ग्रीन इनिशिएटिव है, मेड इन इंडिया इनिशिएटिव है। साथ ही साथ आप देखिए कि अगर इस तरीके के सिस्टम्स पूरे देश में इंस्टॉल किए जाएं, आर्मी से सीख ली जाए किस तरीके से हम वेट वेस्ट को, जैसा कि हमें प्रोजेक्ट ऑफिसर ने बताया था कि हम किस तरीके से वेस्ट को वेस्ट ना रखकर उसको एक एसेट में तब्दील कर सकते हैं, इसे कहते हैं वाकई वेस्ट से एक एसेट बनाना। थैंक यू सो मच।
0: अभी हमने जाना एरोबिन कंपोस्टिंग के बारे में। श्रोताओं, हम आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे हम कि कैसे बायोगैस प्लांट लगा करके हमारी आर्मी कैंप में किचन मेंटेन किया जा रहा है, और इस बारे में डिटेल में बता रहे हैं हमें हवलदार राजकुमार।
1: भारत में नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो दशकों और न जाने कितने वर्षों से होता आया है, लेकिन जिस तरीके से आर्मी इसे इस्तेमाल करती है और जिस तरीके से इसके नए प्रोसेसेस को सबके सामने रखा जाता है, ये वाकई अद्भुत है, अद्वितीय है। अभी फिलहाल हम आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की एक और बात करते हैं, जहां पर हम फिलहाल बायोगैस मशीन और बायोमेथनाइजेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। इसके बारे में हमें और बताएंगे हवलदार राजकुमार जी। सर प्लीज।
2: एलपीजी की खपत को कम करने के लिए हमने कुक हाउस में बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल कर रखा है। इसके अंदर हम मेस में बचा हुआ खाना जैसे कि पानी गर्म, दूध उबालना, अंडे उबालना इत्यादि कामों में इस्तेमाल करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, बायोगैस को अपनाना बल्कि आत्मनिर्भरता बनना ही नहीं, बल्कि अपनी धरती को हरा भरा रखने में भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए वेस्टेज को फेंके ना, उससे ऊर्जा बनाए।
1: तो बायोगैस इनिशिएटिव एक और ग्रीन इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से कचरा यानी वेस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस तरीके के इनिशिएटिव से आप क्या कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं या हमारा देश क्या कर सकता है, वो ये है कि हम इस तरीके के इनिशिएटिव से वेस्ट को कम करके उन सभी एसेट्स को अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सभी रिसोर्सेज की बाहरी खपत को कम करके अपने ही आसपास की चीजों को इस्तेमाल करके रिसोर्सफुल बनकर हम वो सभी एसेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। हवलदार राजकुमार जी, हमें प्लीज बताइए कि इसमें एक दिन में कितना वेट वेस्ट डाला जाता है और इससे कितनी गैस उत्पन्न होती है?
2: जी हाँ, ये प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे पास जो प्लांट लगे हुए हैं, इसमें एक दिन में 20 से 22 केजी वेस्ट डाला जाता है, जो कि 3 से 4 गैस को प्रोड्यूस करके इसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं।
1: इसको इस्तेमाल करने से कितने एलपीजी की बचत होती है, कितने सिलेंडर्स की बचत होती है, अगर आप हमें बता पाए?
2: ये भी प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे कुक हाउस में जो प्लांट लगे हैं, इसमें हर एक प्लांट से एक महीने में 4 से 5 एलपीजी सिलेंडर की बचत होती है।
1: और सर, इसको कितनी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, इसमें क्या क्या चीजें लगती हैं, अगर आप हमें बताएं?
2: जी, सबसे इसकी खासियत यही है कि प्लांट को मेंटेनेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास प्लांट लगा हुआ है तकरीबन 6 महीने से लगा हुआ, अभी तक इसकी कोई भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ी।
1: बायोगैस प्लांट है इंडियन आर्मी का एक और ग्रीन इनिशिएटिव, जिसमें हम वेस्ट से बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। एलपीजी सिलेंडर्स, 4 से 5 सिलेंडर्स की खपत जितनी होती है, उतना हमें प्रोड्यूस यहां से इस मशीन से मिलता है।
0: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: देश पर जान न्यौछावर करने वाले हमारे जवान सरहद और देश के भीतर ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं यूज्ड कुकिंग ऑयल को कैसे फिर से इस्तेमाल में लाया जा रहा है और इस बारे में जानकारी दे रहे हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार।
1: यूज कुकिंग ऑयल के बारे में हम सब जानते हैं, इस ऑयल को अगर बार बार इस्तेमाल किया जाए तो ये सीरियस इंजरी सीरियस हार्म दे सकता है ह्यूमन बॉडी को। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है किस तरीके से यूज कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल किया जाए, घर घर से इकट्ठा किया जाए। इसके लिए हमारे साथ हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार जी। सर हमें प्लीज इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में प्लीज बताइए।
2: सर जैसे कि FSA की गाइडलाइन के अनुसार जो भी हमारा कुकिंग ऑयल है उसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे काफी सेहत के ऊपर भी असर डालता है, इसे कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसी को देखते हुए हमने इसको अलग करके जो भी हमारा कुकिंग ऑयल जो था इसको यूज्ड है उसको हम अलग करके किसी रिकॉग्नाइज्ड संस्था को देते हैं ताकि उसकी रिसाइकल कर इसका बायोडीजल या सोप बनाया जा सके। इसको कलेक्शन करने के लिए हमने अलग अलग इसके लिए ड्रम्स जो केन्स रखे हुए हैं ताकि उसको सही तरीके से उसको डिस्पोज कर सके और इसको हम आगे डिस्पोज ऑफ कर सके। सर
1: थैंक यू सर हमें यूज कुकिंग ऑयल के बारे में बताने के लिए धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
0: अभी तक हम जान रहे थे वेट वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कि कैसे गीला कचरा रिसाइकल किया जा रहा है या अगर यूं कहें कि ये कचरा अपसाइकल किया जा रहा है। अब बहुत अहम और हमारी जिंदगी पर असर डालने वाला प्लास्टिक वेस्ट, इसे कैसे अपसाइकल करके फिर से यूजेबल बनाया जा सके जबकि प्लास्टिक के बारे में आम धारणा है कि ये कभी खत्म नहीं होता, इसकी जानकारी दे रहे हैं हवलदार अब्बास।
1: इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव को हम आगे ले जा रहे हैं। फिलहाल हमने वेट वेस्ट की बात की, हमने यूज कुकिंग ऑयल की बात की, अब हम बात करेंगे प्लास्टिक वेस्ट की, अब हम बात करेंगे ड्राई वेस्ट की। हमारे साथ हैं हवलदार अब्बास जी। सर हमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में प्लीज बताइए, कैसे ये कचरा इकट्ठा किया जाता है, किस किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, कैसे आप इसको यहां

0: रखते हैं और उसके बाद क्या होता है, प्लीज।
1: सभी को मेरा जय हिंद। प्लास्टिक आज के गंभीर विषय बन चुका है। हमारी कोशिश यही है कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। फिर भी जो प्लास्टिक जनरेट होकर हमारे पास आता है उसको सही से डिस्पोज कैसे करें, इसके लिए हमारे कैंप की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिसके दौरान हमारे ब्लॉक्स, लिविंग एरियाज, कैंटीन एरियाज में हमने प्लास्टिक कलेक्शन पॉइंट्स को इंस्टॉल किया गया है। वहां से ये प्लास्टिक सेग्रीगेट होकर हमारे इस मेन कलेक्शन पॉइंट पे लाया जाता है। इसमें प्लास्टिक के बोतल, पैकिंग मटेरियल, दूध की पन्नियां, नमकीन पैकेट्स, यहां से ये सारा मटेरियल, वेस्टेज मटेरियल मान्यता प्राप्त एजेंसीज में भेजा जाता है रिसाइकलिंग के लिए। इससे वहां पे फर्नीचर बनाया जाता है, जैसे टेबल, चेयर, बेंच, कबर्ड, इसमें डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और इनका इस्तेमाल हम पब्लिक प्लेस पे किया जाता है ताकि लोगों को मोटिवेशन और अवेयरनेस मिले। जैकेट ग्लेशियर्स में डिप्लॉय हमारे सोल्जर्स द्वारा इकट्ठे किए गए हुए प्लास्टिक मटेरियल के वेस्टेज से बनाई गई है, जो दर्शाती है कि आर्मी न खिलिफ रागिस्तानों में बल्कि ग्लेशियर्स में पर्यावरण को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है।
2: हवलदार अब्बास जी, मुझे ये भी बताइए कि रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर नॉर्मल फर्नीचर के मुकाबले कैसा होता है? अगर एक नॉर्मल फर्नीचर की बात की जाए और ये जो रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर है इसकी बात की जाए, दोनों का कंपैरिजन कैसा है, कितना मजबूत है, हम सभी लिसनर्स को बताइए।
1: ये नॉर्मल फर्नीचर से बहुत ज्यादा अच्छा है, ये मजबूत है, धूप बारिश इस पे कोई असर नहीं पड़ता है और ये देखने में भी अट्रैक्टिव है और साथ में कंफर्टेबल भी है।
2: सर, क्या ये रिसाइकल प्रोडक्ट्स आम लोग भी खरीद सकते हैं, इसके बारे में अगर आप बता पाए?
1: जी हाँ बिल्कुल, ये आप खरीद भी सकते हो और प्लास्टिक के बदले इसको ले भी सकते हो।
2: सर, हर आइटम पर कुछ प्लास्टिक नंबर लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है अगर आप हमें बता पाए?
1: जी, ये जो मार्क 80 केजी का लिखा है ये दर्शाता है कि 80 केजी प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से इस बेंच को बनाया गया है। ये चीज भी दर्शाती है कि 80 केजी वेस्ट को फैलने से रोका गया है।
2: एब्सोल्युटली, 80 केजी वेस्ट, आप सोचिए 80 किलो वेस्ट कितना ज्यादा होता है। उस वेस्ट को इकट्ठा करना, उसको रिसाइकल करना, उसको प्रोसेस करना और उसके बाद ये मजबूत फर्नीचर, ये मजबूत बेंच, ये सब चीजें बनाना, कितनी अहम चीज है ये, कितना मजबूत इनिशिएटिव है, कितना फ्यूचर ओरिएंटेड है और कितना ज्यादा सस्टेनेबल है। सर, पब्लिक वेस्ट या प्लास्टिक वेस्ट की अगर बात की जाए, किस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, कितनी चीजें हैं
1: इसमें? डिफरेंट तकरीबन 28 आइटम्स बनाई जाती है, जिसमें आप टेबल, कबर्ड, तो बहुत सारी चीजें बनाई जाती है।
2: हमें प्लास्टिक वेस्ट के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच सर।

0: तो इसी तरह कंधों से कंधे मिलाकर हम अपनी धरती को स्वच्छ और बेहतर बना सकते हैं और प्लास्टिक जैसे खतरनाक वेस्ट को भी अपसाइकल कर रहे हैं। अब बात करते हैं पेपर वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में और इस बारे में बता रहे हैं हमें नायब सूबेदार कुलदीप राज।
1: ड्राई वेस्ट में ही हमने पहले प्लास्टिक वेस्ट की बात की, अब हम बात करेंगे पेपर वेस्ट की। किस तरीके से पेपर्स को इकट्ठा किया जाता है, कैसे वेस्ट पेपर्स को यहाँ पर लाया जाता है और उसके बाद उसको श्रेड किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस के बारे में हमें बताएंगे कुलदीप राज जी। सर प्लीज हमें इस पूरे प्रोसेस के बारे में समझाएं।
2: जय हिंद। पेपर का इस्तेमाल पूरे कैंप में कम से कम किया जाता है, जिससे पेपर और समय दोनों की बचत होती है और एनवायरमेंट में भी फायदा मिलता है, जिससे पेपर का इस्तेमाल कम होता है और पेड़ पौधे कटने से बचते हैं। जो भी पेपर वेस्ट होता है, जैसे कि शटल पेपर, गत्ता, किताबें, रजिस्टर इत्यादि, प्लास्टिक वेस्ट की तरह मान्यता प्राप्त एजेंसी को दिया जाता है और जिससे पेपर, किताबें, डायरी इत्यादि बनाए जाते हैं, जिसे इस्तेमाल में लाया जाता है। रीयूज करने से रिसोर्सेज की कमी और सर्कुलर इकोनॉमी में बढ़ावा मिलता है।
1: तो किस तरीके से डिजिटल इंडिया का एक्चुअल एग्जीक्यूशन यहां पर चल रहा है, तो जैसा कि आपने देखा इंडियन आर्मी की ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक और है प्लास्टिक वेस्ट और वेट वेस्ट के अलावा पेपर वेस्ट को किस तरीके से रिसाइकल और अपसाइकल किया जाता है, कैसे मान्यता प्राप्त एजेंसीज तक ये सारे पेपर्स पहुंचते हैं। डिजिटल इंडिया की प्रॉपर एग्जीक्यूशन तो आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में की जा रही है। डिजिटलाइजेशन के बाद पेपर वेस्टेज या पेपर यूसेज कहें बहुत कम हो चुका है, डिजिटल चीजों का, डिजिटल माध्यम का उपयोग ज्यादा होता है, लेकिन जितने भी पेपर्स इस्तेमाल होते हैं जो जरूरी होते हैं उनको भी रिसाइकिल किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
0: एक और वेस्ट जो हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है और वो है ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिससे हमारे मोबाइल, टैबलेट्स, चार्जर्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और भी कितने ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें शामिल हैं। और ये ई वेस्ट भी हमारी धरती के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। और इस ई वेस्ट को कैसे अपसाइकल

0: साइकिल किया जा रहा है, बता रहे हैं हवलदार अशफाक अहमद।
1: ड्राइवर्स की ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करते करते अब हम आ चुके हैं एक स्पेशल कैटेगरी वेस्ट की तरफ, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी ई वेस्ट। बेहद जरूरी चीज जो हम सभी के घरों में मिलती है, छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े, वायर्स, प्लग्स, आप सभी ने देखा होगा, क्या वो सब चीजें ई वेस्ट का हिस्सा है? आइए जानते हैं हवलदार अशफाक अहमद जी से। सर, स्वागत है शो में। जितनी भी चीजें हमारे घरों में मिलती है, क्या वो सब ई वेस्ट में आती है?
2: जय हिंद। हाँ बिल्कुल, वो सारी ई वेस्ट में आती हैं। ई वेस्ट एक अत्यंत गंभीर समस्या बन चुकी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ई वेस्ट की समस्या भी बढ़ती जा रही है। इसके लिए कैंटोनमेंट, RWS और ऑफिस एरियाज में ई वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स को एस्टेब्लिश किया गया है, जो कि स्पेशल केयर वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें न सिर्फ ऑफिस एरिया के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बल्कि जवान अपने घरों से भी बैटरी, चार्जर, बल्ब जैसे इत्यादि लाके इसमें डाल सकते हैं। जो आप ई वेस्ट बॉक्स है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं, ये जवानों ने अपने घरों से लाके इसमें डाला हुआ है। इस ई वेस्ट को मान्यता प्राप्त एजेंसीज के सेग्रीगेशन प्लांट्स में भेजा जाता है, जहां पर उन्हें साइंटिफिक तरीके से रिसाइकल करके उनमें से सिल्वर, कॉपर, अल्मीनियम जैसे एलिमेंट को निकाल के दोबारा से उपयोग में लाए।
1: बिल्कुल, मतलब ग्रीन मेटल्स को हार्वेस्ट किया जाता है। इस सभी ई वेस्ट का उपयोग करके हम इन ग्रीन मेटल्स को निकालते हैं, इनको बनाते हैं और उसके बाद इसका दोबारा से इस्तेमाल होता है। ग्रेट इनिशिएटिव, एक्सलेंट इनिशिएटिव। सोचिए कितना ज्यादा कचरा हम घरों से, बाकी जितनी भी चीजें हैं वहां से इकट्ठा करके यहां पर लाते हैं और उसके बाद इससे कुछ और उपयोगी, कुछ यूजफुल बनाते हैं। एक्सलेंट इनिशिएटिव आई वुड से।

0: ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए हमारी इंडियन आर्मी कन्वेंशनल फ्यूल को नहीं बल्कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रही है। इसके बारे में बता रहे हैं हवलदार आशीष जी।
1: जय हिंद, मैं हवलदार आशीष। एनर्जी कंजर्वेशन वेस्ट मैनेजमेंट की तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ग्रीन इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने के लिए और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और सोलराइजेशन यानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय सेना में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ऑलरेडी इनमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हमारे पास आर्मी हेडक्वार्टर कैंप में 25 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का एक फ्लीट है जिनका इस्तेमाल डिपार्टमेंटल ट्रांसपोर्ट और इंटरनल मोमेंट्स के लिए किया जा रहा है। एक इलेक्ट्रिक कार्स का एक फ्लीट है, साथ ही हाइड्रोजन बस और इलेक्ट्रिक बसेस का एक फ्लीट नजर आ रहा होगा। साथ एक इलेक्ट्रिक रिक्शा रखा हुआ है। इनके चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं जहां पे इन व्हीकल्स को चार्ज किया जाता है। एक व्हीकल को फुल्ली चार्ज होने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है और एक फुल्ली चार्ज्ड व्हीकल तकरीबन 300 किलोमीटर की एवरेज देता है। ऐसा करने से हम मंथली तकरीबन 4000 लीटर और ईयरली 48000 लीटर तक तेल की बचत कर रहे हैं। इन इनिशिएटिव्स को और इन व्हीकल्स को यूज करके हम न सिर्फ अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचा रहे हैं बल्कि अपने एनवायरनमेंट को भी साफ सुथरा रख रहे हैं।
0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के हमारे ग्रीन इनिशिएटिव मिशन लाइफ स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और अब बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में जानते हैं जो इमोशनली भी बहुत रिलेवेंट

0: ब्रांड है और वो है वॉल ऑफ काइंडनेस। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें पुराने कपड़े, किताबें और यूनिफॉर्म शामिल हैं। हमारे फौजी भी अपनी यूनिफॉर्म के साथ भी इमोशनली अटैच्ड होते ही हैं। तो कैसे डिग्निफाइड वे में इन्हें डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, बता रहे हैं हवलदार विनोद कुमार और राइफलमैन दिनेश कुमार।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, आर्मी और ह्यूमैनिटी, ये दोनों शब्द हम सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन आर्मी के ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स इतने हैं, जिन्हें गिनवाया जाए तो शायद ये दिन ये रात सब कम पड़ जाए। हम ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करने आए थे, लेकिन यहाँ पर इनिशिएटिव्स के साथ साथ जो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, उसी के साथ साथ एक ऐसा इनिशिएटिव भी है जो काइंडनेस को और ज्यादा दर्शाता है। कैबिनेट है ये 155 किलो प्लास्टिक को इस्तेमाल करके बना है। सोचिए 155 किलो प्लास्टिक अब सड़कों में या कचरे के डिब्बों के आसपास नहीं बिखरा हुआ है, उसको इस्तेमाल करके ये शेल्फ बनाया गया है। ये अपने आप में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है जिसके बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं। और इसके साथ साथ ही दिस इज एक्चुअली अ वॉल ऑफ काइंडनेस, विच मीन्स डोनेट व्हाट यू कैन टेक व्हाट यू नीड, मतलब अपनी मर्जी से आप डोनेट कर सकते हैं और जो भी जरूरत है वो आप यहां से ले जा सकते हैं। अमेजिंग इनिशिएटिव, ऐसा एक काम जो इंडियन आर्मी ही सोच सकती थी, इंडियन आर्मी ही कर सकती थी। आइए इस वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में हम और कुछ जानते हैं। हमारे साथ हैं हवलदार विनोद कुमार जी। सर, स्वागत है शो में, प्लीज हमें वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में कुछ बताइए।
2: जय हिंद। आज मैं आपको वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में परिचित करवाऊंगा। वॉल ऑफ काइंडनेस यानी नेकी की दीवार, ये एक सोशल सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट है जो कि रीयूज के कंसेप्ट को प्रमोट करता है। हमारे यहाँ काफी सारे लोग आते हैं जो कि अपने साथ घर में पड़ा एक्स्ट्रा सामान, जो कपड़े, जूते, किताबें, जहाँ यूनिफॉर्म, वो सब इधर डोनेट करते हैं। बुक्स की शेल्फ है और यूनिफॉर्म की, कपड़ों की, जिस अलमीरा में ये डोनेट करके जाते हैं और जहाँ से जरूरतमंद लोग जहाँ से उठा के बिना किसी हिचकिचाहट के ले जाते हैं। और बेसिकली हमारा उद्देश्य है कि चैरिटी नहीं बल्कि डिग्निटी के साथ जहाँ से सामान ले जा सके। बाकी अभी तक डेटा के अनुसार 10 टन से 12 टन तक कपड़े जहाँ से डोनेट हुए थे और काफी सारा सामान जरूरतमंद लोगों को दिया जा चुका है।
1: सो वॉल ऑफ काइंडनेस के साथ साथ एक और शेल्फ है जिसमें ट्राई सर्विसेज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की यूनिफॉर्म्स हैं, क्या इसके बारे में और बता सकते हैं?
2: देखिए, अभी आपने सारे रैक्स देख लिए, अभी ये लास्ट में मैं बताता हूँ यूनिफॉर्म रैक्स। इसमें हम तीनों सेनाओं के यूनिफॉर्म रखते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। देखिए, फौजी आदमी के लिए सबसे बड़ा प्राइड होता है उसकी यूनिफॉर्म, ये हमारे इमोशन को टच करती है और दूसरा ये हमारा प्राइड है। हम चाहते हैं इसका सही तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए, इसलिए हम इसे रिस्पेक्टफुल तरीके से इनको जहां रखते हैं तीनों सेना की यूनिफॉर्म को।
0: बता रहे हैं राइफलमैन दिनेश कुमार।
2: वॉल ऑफ काइंडनेस में अभी तक कपड़े, यूनिफॉर्म, इसके अलावा जहां पर बुक्स भी है। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम खत्म हुए थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक जिन लोगों ने अपने एग्जाम खत्म किए उनके बुक्स जहां पर काफी डोनेट की गई हैं और ये सभी डोनेट सामान जरूरतमंद लोगों के काम आएगा। और इसके अलावा अब जहां और भी बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे जेई, नीट, सीरियस और SSB, सभी तरह की बुकें आपको देखने को जहां मिल जाएंगी। और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहां पर जितने भी फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो अफसर जवान, वो अपने बच्चों के खिलौने, किताबें, ये सब जहां पर डोनेट करते हैं।
0: हमारे फौजी भाई कई बार डिफिकल्ट टेरेन्स में पोस्टेड होते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी इजीली अवेलेबल नहीं होती है। ऐसे में हमारी आर्मी ने सोलर एनर्जी का प्रयोग कर डेवलप किए हैं सोलर हट्स और सोलर सिक्योरिटी चेक पोस्ट, जिसमें सोलर पावर से चलने वाले कई तरह के डिवाइसेस प्रयोग में लाए जाते हैं। आइए जानते हैं आर्मी के इस इनिशिएटिव के बारे में।
3: जब हम सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो सबको पता है सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हम नेचुरल सनलाइट को इस्तेमाल करके सोलर हट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसको हमने बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस में लगाया, जिससे आने वाले कम्प्यूटर्स इसका बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरा सोलर पावर्ड है जिसमें 4 फैंस की सुविधा दी गई है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, वायरलेस चार्जिंग पॉइंट और साथ ही साथ में अगर हम चाहे तो रिकॉर्डिंग, CCTV रिकॉर्डिंग की भी इसमें क्षमता है। सोलर हट तो आपने देख लिया, अभी आपके सामने दर्शाई गई है सोलर संतरी पोस्ट। जैसे कि हम सभी जानते हैं आर्मी देश के विभिन्न विभिन्न भागों में डिप्लॉयड है, जैसे जब भी आर्मी रिमोट एरिया में डिप्लॉयड होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होती है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए हमने इस इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी चेक पोस्ट को बनाया गया है। जैसे इसके अंदर एक फैन की सुविधा दी गई है जो गर्म और ठंडी हवा भी देता है, साथ ही साथ में इसमें मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और एक इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट की भी सुविधा दी गई है। ये एक मोबाइल संतरी पोस्ट है जिसको यहां से लेकर हम किसी भी जगह पे डिप्लॉय कर सकते हैं।
1: इंडियन आर्मी देश की सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी कर रही है। आज हमने ग्रीन इनिशिएटिव्स देखे जो इंडियन आर्मी ले रही है, किस तरीके से ई वेस्ट, वेट वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, हर तरीके से कैसे इंडियन आर्मी हमारे पर्यावरण को बचा रही है, फ्यूचर को बचा रही है। यहाँ पर हेडक्वार्टर कैंप आर्मी में आके हमने सब जाना किस तरीके से आर्मी ये बेहतरीन इनिशिएटिव्स कर रही है और लगातार हमारे फ्यूचर को सेफ गार्ड

0: करके सस्टेनेबल तरीके से बेहतर बना रही है। हम इस वक्त प्रोजेक्ट इंचार्ज मेजर अजीत मोरे के साथ हैं। सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आप क्या कहेंगे, ये ग्रीन इनिशिएटिव्स कितने जरूरी हैं, किस तरीके से आर्मी पूरे देश के सामने इस प्रेरणा को रख रही है?
1: थैंक यू वैभव, मैं आपको एक कहना चाहूंगा, जो हमारी सोच है वेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण सुरक्षा में हम इसको कल्चरल चेंजेस लाना चाहते हैं। जिस प्रोडक्ट पे हम अभी बैठे हैं, ये अपसाइकल प्रोडक्ट, हमने एक चौथा पहलू भी इसमें जोड़ दिया है। साथ में आपको कहना चाहूंगा, जब वेस्ट मैनेजमेंट या पर्यावरण संरक्षण की बातें आती है, तो इसमें तीन बेसिक ह्यूमन टच पॉइंट्स, एक है इंडिविजुअल, एक है कम्युनिटी और तीसरा है अथॉरिटी, जिसमें आप लोकल बॉडीज होगी, आपके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो जब तक ये इंडिविजुअल के अंदर से नहीं आएगा, तब तक हमारा एरिया या हमारा पर्यावरण साफ नहीं होगा। ये आपको मैं जोर देकर कहना चाहूंगा, हमारे देश का हर एक सिटीजन, हर एक बंदा एक पर्यावरण योद्धा है, और जब तक उसके अंदर से ये आएगा, तभी हम हमारे देश के या हमारे गवर्नमेंट के स्वच्छ भारत अभियान को पूरा कर पाएंगे। तो कल हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं, तो ये हमारे गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, स्वच्छ भारत अभियान, मिशन लाइफ अभियान, इसको सफल बनाने के लिए हम सब देशवासी मिलकर इसको योगदान दें। जय हिंद।
2: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

देश की रक्षा और प्रकृति की रक्षा दोनों एक साथ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर सेना का संदेश है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आज का संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित था, जिसमें जीरो वेस्ट जोन से लेकर सोलराइजेशन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से ई वेस्ट मैनेजमेंट, साथ ही ऑर्गेनिक वेस्ट का साइंटिफिक मैनेजमेंट और बायोगैस के अलावा हमने जाना कि एरोबिन कंपोस्टिंग क्या है और कैसे इससे खाद बनाई जाती है,

और ये भी कि वॉल ऑफ काइंडनेस के माध्यम से पुराने कपड़े, जूते, किताबें, बच्चों के खिलौने डोनेट करके रीयूज कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जा रहा है। हम आशा करेंगे कि इंडियन आर्मी के अपनी धरती और प्रकृति के प्रति इस जज्बे से हम भी प्रेरणा लेकर अपना योगदान अवश्य देंगे और इसे बेहतर, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की कोशिश करते रहेंगे। आज के संदेश टू सोल्जर्स के इस स्पेशल शो की प्रस्तुतकर्ता थी राजलक्ष्मी और मेरे सहयोगी थे ओबी पर वैभव श्रीवास्तव। और आप सुन रहे हैं मेरी आवाज, मेरा नाम है शाहिद। जय हिंद।

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।

नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे सचेत टंडन की आवाज़ में कबीर सिंह फिल्म का ये गीत। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत की अगली पेशकश।
1: महफिल में मेरी आपका वेलकम है हजरात, भूल के गोले उबम रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे, अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब। शम्मा हूँ नई नई जलूंगी।

शाल मलिक होलगड़े को आप सुन रहे थे वेलकम टू कराची फिल्म के लिए। आइए अब सुनते हैं शाल मलिक होलगड़े और मोनाली ठाकुर की आवाज़ों में आइए फिल्म का ये गीत।

शालमली घूलघड़े और मोनाली ठाकुर की आवाज़ों में अय्यर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत अक्सर फिल्म से हिमेश रेशमिया की आवाज़ में।

हिमेश और रेशमिया की आवाज़ में अक्सर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है अजनबी।

अभी आप कुमार सानू और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में अजनबी फिल्म का गीत सुन रहे थे। इसी के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युव वाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम के साथ आज मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अरविंद कुमार। दोस्तों, युववाणी कार्यक्रम में आज की बात में हम चर्चा करेंगे दो महत्वपूर्ण विषयों पर। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और

प्रदायी घटनाओं की रोकथाम विषय पर। दोस्तों, ये दोनों विषय मानवता, शांति और सामाजिक सौहार्द से सीधे जुड़े हुए हैं। दोस्तों, प्रतिवर्ष 4 जून को यानी आज के दिन विश्व भर में आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य उन बच्चों को पीड़ा और अधिकारों की ओर विश्व समुदाय का ध्यान आकर्षित करना है जो युद्ध, हिंसा, आतंकवाद, घरेलू उत्पीड़न और अन्य प्रकार की आक्रामक गतिविधियों के कारण प्रभावित होते हैं। बच्चों उन्हें किसी भी राष्ट्र का भविष्य माना जाता है। उनका बचपन सुरक्षित, सुखद और भयमुक्त होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से दुनिया के अनेक हिस्से में बच्चे हिंसा, संघर्ष और शोषण का सामना कर रहे हैं। ऐसे वातावरण का उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, ये दिवस हमें यह भी याद दिलाता है कि बच्चों को केवल सुरक्षा ही नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम और सम्मान का अधिकार भी प्राप्त है। समाज, परिवार, विद्यालय और शासन सभी की ये जिम्मेदारी है कि बच्चों के लिए ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जहां वे निर्भय होकर अपने सपनों को साकार कर सकें।

युवाओं के रूप में हमारा भी कर्तव्य है दोस्तों कि हम बच्चों के प्रति संवेदनशील रहें, उनके अधिकारों का सम्मान करें और किसी भी प्रकार की हिंसा या उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाएं।

दोस्तों, भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं एक साथ विकसित होती हैं, और यही विविधता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है दोस्तों। क्योंकि कभी कभी कुछ असामाजिक तत्व अफवाहों, गलत सूचनाओं या संकीर्ण विचारों के माध्यम से समाज में वैमनस्य फैलाने का प्रयास करते हैं। ऐसी परिस्थितियां सामाजिक तनाव और हिंसा का कारण बन जाती हैं दोस्तों, जिससे समाज की एकता और विकास प्रभावित होता है। सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम के लिए सबसे आवश्यक है आपसी विश्वास और संवाद। हमें किसी भी सूचना को बिना सत्यापन के आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, विशेष करके सोशल मीडिया पर। अफवाहें कई बार बड़े विवादों का कारण बन जाती हैं। इनके अतिरिक्त शिक्षा और जागरूकता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बारे में सम्मानपूर्वक जानने का प्रयास करते हैं, तब पूर्वाग्रह स्वतः कम होने लगता है। युवा वर्ग समाज में सकारात्मक परिवर्तन का संवाहक बन जाता है। यदि युवा आपसी सद्भाव, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को अपनाएं, तो सांप्रदायिक तनाव की संभावनाएं काफी हद तक कम हो सकती हैं। दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि हमारी पहचान सबसे पहले एक जिम्मेदार नागरिक की है। राष्ट्र की प्रगति तभी संभव है जब समाज में शांति, सौहार्द और परस्पर सम्मान का वातावरण बना रहे।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी, मैं हूं आपके साथ अरविंद। आइए अब सुनते हैं युवा वार्ता। विषय है समाज सेवा की भावना और युवा मानसिकता। वार्ताकार हैं वीना शर्मा।
2: मानव का कार्यक्षेत्र यही समाज है, जिसमें रहकर वह अपने कर्मानुसार अगले जीवन की पृष्ठभूमि तैयार करता है। 84 लाख योनियों में से किसी एक में पढ़ने का मूल वह यही स्थापित करता है और भारतीय धर्म साधना में वर्णित अमृतत्व के सिद्धांत को अपने श्रेष्ठ कर्मों से प्रमाणित करता है। लाखों करोड़ों लोगों में से मरणोपरांत केवल वही व्यक्ति समाज में अपना नाम स्थायी बना पाता है जो जीवन में ही अपने को दूसरों के लिए अर्पित कर चुका है। वास्तव में दूसरों की सेवा की भावना से ही समाज स्थापित है और इस तत्व से समाज के नैतिक आदर्शों की प्रतिष्ठा होती है। दूसरों के लिए किए गए कार्यों से जहां अपना स्वार्थ सिद्ध होता है, वहां समाज में प्रधानता भी प्राप्त होती है। निस्वार्थ भाव से

की गई सेवा लोकप्रियता प्रदान करती है। इससे मानव का अपना कल्याण भी होता है, क्योंकि लोक की प्रवृत्ति है यदि आप दूसरों के काम आएंगे, समय पड़ने पर दूसरे भी आपका साथ देंगे। जो व्यक्ति दूसरों के लिए आत्मबलिदान करता है, समाज उसे अमर बना देता है और यह यश उपार्जित करता है। कीर्ति यस्य सजीविति, गुरु गोविंद के अमृतत्व का यही आधार है। ईसा ने कहा है, जो तुम में सबसे बड़ा होगा वह तुम्हारा सेवक होगा। प्रकृति का भी ऐसा ही व्यवहार है, वह कभी भी अपने साधन अपने लिए प्रयुक्त नहीं करती है। वृक्ष कवहू नहीं फल भके, नदी न सवेक नीर, परमानत के कारणे साधु धरा शरीर। मानव जीवन में समाज सेवा, सहानुभूति और दयालुता प्राय रोग, दरिद्रता, महामारी, उपद्रवों आदि में संभव हो सकती है। इनमें राजा सिवी, ददीची और गांधी जैसे बलिदान की आवश्यकता नहीं है। दयालुता के छोटे छोटे कार्यों, मृदुलता का व्यवहार, दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाना, दूसरों की दुर्बलताओं के प्रति उदार होना आदि में सहानुभूति के चिन्ह विद्यमान हैं। भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि में मानव मात्र की कल्याण भावना निहित है। यहाँ जो कोई भी कार्य होते हैं, वे सदा बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की दृष्टि से होते हैं। यही संस्कृति भारतवर्ष की आदर्श संस्कृति है। आज के युवाओं की मानसिकता में कई दृष्टिकोणों से अंतर आया है, लेकिन उनमें समाज सेवा की भावना का रूप यथावत बना हुआ है। समाज सेवा का गुण हर युवा में होना ही चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों का हित चाहते हैं और उनकी सेवा करते हैं, प्रभु उनसे सदा प्रसन्न रहते हैं। इससे उनका अपना चरित्र महान बनता है। लोग उसी को चाहते हैं जिसके हृदय के कपाट उनके लिए सदा खुले रहते हैं। मानवता का उद्देश्य और मानव जीवन की सार्थकता केवल इसी से है कि वह अपने कल्याण के साथ साथ समाज कल्याण में भी रुचि दिखाए। युवाओं का कर्तव्य बनता है कि वे अपनी सोच में अंतर लाएं और वे स्वयं उठें और दूसरों को भी उठाएं। दीन की करुणामयी पुकार से, बड़ी बड़ी आंखों में झलकते हुए आंसुओं से, असक्त और असहाय की याचना पूर्ण करना दृष्टि से, जिसका हृदय दबीभूत ना हुआ, तपती और भूखों को अपने भूखे पेट पर हाथ फिराते हुए देखकर, जिसने अपने सामने रखा हुआ भोजन नहीं दे दिया, अपने पड़ोसी के घर में लगती हुई आग को देखकर, जो उसकी रक्षा के लिए एकदम कूदना पड़ा, वह मनुष्य नहीं पशु है। त्याग और बलिदान ही हमारी संस्कृति के मूल भाव है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। आज यह समस्या बड़ी जटिल हो गई है कि युवा वर्ग किस विचारधारा को अपनाएं तथा समाज सेवा के कार्यों में किस प्रकार योगदान करें। बहुत से लोग अपने अपने ढंग से आज समाज सेवा की भावना को सामने रख रहे हैं। सरकार चलाने वाले नेता अपनी योजना लाद रहे हैं तथा निरीह समाज को अपनी चिंतन धारा पर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि कहने वाले अधिक हैं तथा सुनने वाले कम। कई बार युवा वर्ग भावावेश में आकर अनेक ऐसे कार्य कर बैठता है और अपना तथा समाज का अहित कर बैठता है। अतः आज युवाओं को अपनी मानसिकता का परिवर्तन करना होगा और युवाओं को चाहिए कि वे अपने मन में अच्छा और बुरा समझने की क्षमता उत्पन्न करें और अपनी विवेक बुद्धि से ऐसे सेवा के कार्य करें जो समाज व देश के कल्याणकारी हों। युवाओं को गांव में जाकर वहां की समस्याओं को समझना होगा और उनके निदान का प्रयत्न करना होगा। उन्हें स्वयं कार्य करना चाहिए तथा दूसरों के लिए आदर्श उपस्थित करना हो चाहिए। इससे ग्रामीण जनता में उनकी लोकप्रियता बढ़े तथा विभिन्न प्रकार की प्रगतियों से भी परिचित होते जाएंगे। उन्हें अपने पास पड़ोस में सहयोग तथा सद्भाव का वातावरण प्रदान करना चाहिए, जिससे विरोध मिटे तथा सहकारी भावना का विकास हो। मानव में दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती

0: की हैं, एक स्वार्थ साधना की तथा परमार्थ की। युवाओं की मानसिकता स्वार्थ परक के साथ साथ जब परमार्थ की हो जाती है तब वह समाज सेवा की भावना कहलाती है। अपने लिए तो पशु भी जीते हैं, मनुष्य केवल अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी जीते हैं। कहा भी जाता है यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्राचीन ग्रंथों में भी समाज की भावना के अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। उदाहरण के लिए दैत्यासुर राक्षस का वध करने के लिए महर्षि दधीचि ने कल्याण के लिए अपने प्राण बलिदान कर दिए। ईसा मसीह ने समाज सेवा हेतु सूली पर चढ़ना स्वीकार किया। सुकरात ने समाज सेवा के कारण जहर पिया। महात्मा गांधी ने अपना सारा जीवन समाज व देश की सेवा के लिए लगा दिया। अब्राहम लिंकन ने आजीवन समाज की सेवा की। मदर टेरेसा ने अपना जीवन समाज हित में लगा दिया। वर्तमान में युवाओं के मन में भी समाज सेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। वे आज समाज सेवा के विविध क्षेत्रों के कार्य कर रहे हैं, यथा धर्मशालाओं का निर्माण, औषधालय की स्थापना, जलाशय व पाठशाला बनवा रहे हैं। इन क्षेत्रों में आज का युवा वर्ग बड़े जोश के साथ काम कर रहा है। दीन दुखियों की सेवा करना, विकलांगों की सहायता करना, गरीबों को विद्या प्रदान करना आदि क्षेत्रों में युवा वर्ग बढ़ चढ़कर कार्य कर रहा है तथा समाज सेवा कर अपने जीवन को सफल बना रहा है। समाज सेवा की भावना का महत्व भारतीय संस्कृति में देखने को मिलता है। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भावते। समाज सेवा करने वाला संसार में पूज्य माना जाता है। यद्यपि आज चारों ओर स्वार्थ का बोलबाला है तथापि समाज सेवा करने वाले युवाओं की कमी नहीं है। आज के युवा को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यदि वे जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उन्हें अपने मन को दृढ़ बनाना है। इसलिए कवि ने कहा भी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। प्रत्येक युवा का कर्तव्य है कि वह अपना सब कुछ अर्पित कर भी समाज की सेवा के कार्यों में संलग्न रहे तथा समाज व देश की रक्षा, सेवा व विकास में सहयोग दे। हम समाज में कहीं भी रहें, किसी भी रूप में रहें, ईमानदारी एवं देश हित को सर्वोपरि मानकर कार्य करें। आज जब हमारा देश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से जूझ रहा है, ऐसे समय में प्रत्येक युवा का कर्तव्य है कि वे अपने व्यक्तिगत सुखों को त्याग कर समाज तथा देश के सम्मान तथा विकास के लिए तन मन धन से अपने को अर्पित करे तथा पूर्ण रूपेण समाज व देश की सेवा में जुट जाए।
1: तो अभी आप सुन रहे थे वार्ता समाज सेवा की भावना और युवा मानसिकता। वार्ताकार थे वीना शर्मा। और आइए अब सुनते हैं ये गीत।

0: कुछ कुछ होता है फिल्म केसी गीत के साथ ही उदित नारायण की आवाज में ये गीत था। इसी के साथ ही युवाणी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: श्री टंडन ने कहा कि दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची थीं। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत किया है और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। सत्र में भाग लेने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी नेता मजबूत और अधिक समृद्ध पूर्वोत्तर के निर्माण के अपने संकल्प में एकजुट हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार 2 गुना करने को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से

0: अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में ये दोगुने से भी अधिक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूअल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूअल तकनीक की शुरुआत केवल एक नए वाहन की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूअल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। इससे देश को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है और गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता के मामले में विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता का मुख्य कारण यह है कि देश के नागरिकों ने यह समझ लिया है कि वे अपनी छतों पर बिजली खुद पैदा कर सकते हैं और बिजली बिल शून्य हो सकता है। इसके अलावा श्री जोशी ने आज विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक में सरकारी भवनों के छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने की प्रगति की भी समीक्षा की। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। भारतीय टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। 5 बार की विजेता भारतीय टीम और मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश आमने सामने होंगे। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज का दिन भारत के लिए मिला जुला रहा। पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और हरिहरन की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी एरोन ताई और कैंग खाई रिंग को कड़े मुकाबले में हराया, लेकिन पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी कड़े संघर्ष के बावजूद पराजित हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

संध्या 6:15 पर किसान श्रोता सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी, जिसमें चर्चा के विषय होंगे मिट्टी का स्वास्थ्य और हरी खाद और कृषि भूमि का संरक्षण। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता धान की नर्सरी तकनीक विषय पर, जानकारी देंगे डॉक्टर वाई के शर्मा। साथ ही इसी कार्यक्रम में आप आनंद ले सकेंगे कुछ ब्रज लोकगीतों का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। संध्या 6:45 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन प्रसारित किया जाएगा। संध्या 7:05 पर आप सुनेंगे ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम के अंतर्गत मथुरा वृंदावन के प्रमुख तीर्थ स्थलों के बारे में जानकारी। ये जानकारी देंगे डॉक्टर राजकुमार शर्मा। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी प्रसारित किया जाएगा संध्या 7:31 पर। विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर, यह कार्यक्रम हम रात्रि 8 बजे प्रसारित करेंगे। रात्रि 8:35 पर

सुनिएगा कार्यक्रम देश गान। रात्रि 9:15 पर चित्रपट संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने प्रसारित किया जाएगा और रात्रि 10 बजे प्रादेशिक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार, रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी समाचार। ये दोनों कार्यक्रम भी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। रात्रि 11:10 पर समापन होगा हमारी इस दूसरी सभा का।

अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों के बारे में। हम अपने सुनने वालों को एक बार पुनः याद दिलाते हैं, रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय संध्या के 6:10 होने को हैं। आइए सुनते हैं देश गान।

0: समवेत सुरमे अभी आप सुन रहे थे ये देशभक्ति परक रचना। इसी के साथ देशकान का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

शाम के 6:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम किसान वाणी। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं दीपक गोस्वामी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनन को हमारी राम राम। भैया, हमारी खेत की जो माटी है वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह माटी को हमें स्वस्थ भी रखना है और स्वस्थ रखने के काजे हमें चिंता भी रखनी है। तो भैया, या को एक विकल्प ये भी है कि हम हरी खाद से अपनी माटी के स्वास्थ्य को अच्छा करें। हरी खाद का मतलब है कि फसल को उगाए के भाई खेत में मिट्टी के संग मिलाए के भाई जोत दें और वाते हमारी खेत की माटी को स्वास्थ्य अच्छो हो। अब यहाँ के बहुत सारे फायदे हैं भैया, जैसे सनई ढेंचा जैसी जो हमारी फसल है वे सड़क के हमारे खेती में जैविक कार्बन की मात्रा को बढ़ावे। दलहनी खेत हरी खाद जैसे ढेंचा, मूंग, लोबिया या तो हमारी जो खेत की माटी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़े और हमारी यूरिया की भी बचत हो। और भैया, मिट्टी की जो संरचना है यानी मिट्टी की पानी पकड़वे की जो क्षमता है, जल धारण की क्षमता है, बाकी जंबे की जड़न में मिट्टी की जो क्षमता है या तो मिट्टी

0: की संरचना सुधरे है और कटा भी रुके हैं। और भैया एक बहुत और अच्छी बात है, वो ये है कि हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं, जो हमारे मित्र जीव हैं, जैसे सड़वे हुए खाए वाले पदार्थ, केंचुआ, बैक्टीरिया, फफूंद, ये सब हमारे हरी खाद के प्रयोग करते ही पुनः सक्रिय है जामे। और भैया आगे जो हम फसल करें वहाँ में खरपतवार और रोग या में कम हुए, तो ये इतने सारे लाभ हमें याते मिले हैं। बस आवश्यकता ये है कि एक छोटा सा प्रयोग हमें अवश्य करना है। और भैया अगर खेत में दीमक या पानी की भारी कमी है तो पहले वाकू हमें सुधार अवश्य करना होगा। अब भैया सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि हम सबसे पहले अपनी खेत की माटी की जांच भी करावें और वाकई अनुरूप अपनी अगली जो खेती है वाकई योजना को तैयार करें। तो ये तो भैया बात रही मिट्टी के स्वास्थ्य में हरी खाद की उपयोगिता के संबंध में। अब आपको जानकारी देवा में है वार्ताक्रम में धान की नर्सरी तकनीक के विषय में हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर वाई के शर्मा।
1: प्यारे किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानसून अब आने वाला है, इसको ध्यान में रखते हुए जो खेती के कुछ काम किए जाते हैं उसमें प्रमुख रूप से हमारे यहाँ धान की खेती की जाती है। अगर मथुरा रक में इसका रकबा देखा जाए तो लगभग 50,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इसकी खेती की जाती है। जहाँ तक इसकी कुछ धान लगाने की विधियों का प्रश्न है, हमारे जनपद में मुख्य तौर पर धान की नर्सरी लगा के इसकी रुपाई की जाती है। आज हम इसी विषय पे आप किसान भाइयों को कुछ जानकारी देंगे। मेरा मानना है अगर आप धान की नर्सरी को ढंग से लगाने में सक्षम रहे या सही तरह से लगाने में सफल हुए तो आपकी धान की खेती आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। खरीफ मौसम की जो खाद्यान्न की फसलें होती हैं उसमें धान का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसा मैंने बताया कि इसकी खेती लगभग 50,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जनपद में की जाती है, जिनमें प्रमुख रूप से जो धान लगाया जाता है उसमें ये हमारा जो सुगंधी धान होता है इसको हमारे किसान भाई अधिक लगाते हैं और कुछ हमारे यहाँ संकर प्रजातियों का प्रचलन भी है। मोटे धान को हमारे जनपद में किसान भाई कुछ कम लगाते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, जिस तरह से मकान की नींव अगर मजबूत होती है तो मकान उसको मजबूत माना जाता है, इसी प्रकार से अगर धान की खेती में, धान की नर्सरी में धान अच्छी तरह से लगा लिया गया है तो निश्चित तौर से आपकी जो फसल होगी वो अच्छी होगी। क्योंकि कुछ रोग ऐसे होते हैं जो धान में नर्सरी से ही लग जाते हैं और जो आपको, जो आपकी फसल होती है उस चरण में जाके आपको बहुत दुखदाई देते हैं। तो कुछ प्रभावी बिंदु होते हैं नर्सरी लगाने के लिए, उस पर मैं प्रकाश डालता हूँ और किसान भाई थोड़ा उस पर ध्यान देंगे। नर्सरी लगाने के लिए सबसे पहले होता है कि उसका उत्तम समय क्या है। तो नर्सरी तैयार करने का उचित समय धान की पकने की अवधि वाले पर निर्भर करता है। जो आप धान की प्रजाति का चुनाव कर रहे हैं वो किस समय पर लगभग पक के तैयार होगी। सामान्यतः धान की नर्सरी लगाने हेतु मई माह का जो हमारा द्वितीय पखवाड़ा है उससे लेके और जो प्रथम पखवाड़ा हमारा जून का होता है उसमें नर्सरी लगाना इसके लिए उपयुक्त रहता है। दूसरा इसका प्रभावी बिंदु होता है कि हम प्रजातियों का चुनाव कैसे करें। ये बाजार के भाव पर निर्भर करता है, आपकी क्षेत्रीय अनुकूलता पर निर्भर करता है। फिर भी मैं आपको बता दूं प्रजातियों का चुनाव क्षेत्रीय अनुकूलता के अनुसार करें। साथ ही आपके पास जो उपलब्ध संसाधन हैं कि आपके पास सिंचाई के कितने साधन हैं, किस तरह का साधन है, उसको भी ध्यान में रख के प्रजातियों को चुनाव करें। मथुरा एवं इस मंडल के लिए प्रमुख संस्कृत प्रजातियां इस प्रकार से हैं जिनको आप नोट कर लें। अगर आप सुगंधित धान लगाना चाहते हैं तो जिसमें पूसा सुगंध 1, पूसा सुगंध 2, पूसा सुगंध 3, पूसा सुगंध 4 जिसको हमारे किसान भाई 1121 भी कहते हैं एवं पूसा सुगंध 5 है, मेनका का है और पूसा बासमती है, हरियाणा बासमती है, ये हमारी कुछ सुगंधित प्रजाति हैं। संकर प्रजातियों में PRS10 प्रो एग्रो की प्रजाति आती है जिसमें 6444 है, पंत संकर धान है प्रो एग्रो की 6201 आती है, इसके साथ 1509 एक नाम की प्रजाति है, ये भी एक बहुत अच्छी प्रजाति है, सुगंधित प्रजाति है। अगर इसका चुनाव करके किसान भाई इसे लगाना चाहें तो बहुत अच्छी रहती है। मोटे धानों में हमारा जो है पंत धान 10 है, पंत धान 12

है, क्रांति है, गोविंद है, साकेत है, मगर है, ये इस तरह की प्रजातियां हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस हिसाब से खेती करना चाहते हैं, कौन सी प्रजाति लेना चाहते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि किस जगह पे इसकी नर्सरी लगाएं, भूमि का चुनाव। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगने वाली नर्सरी के लिए धान की जो पौध होती है वो 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ट्रांसफर यानी रोपित की जा सकती है। यानी 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल नर्सरी लगाने के लिए 30 किलो बीज महीन, 35 किलो मध्यम और 40 किलो बीज मोटे की आवश्यकता होती है। और 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल धान की नर्सरी लगाने हेतु लगभग 1500 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में अगर आप धान की रोपाई करें, वो बिजाई करेंगे, तो उससे इतनी पौध तैयार हो जाएगी जो आप 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगा सकें। अब आती है भूमि की तैयारी कैसे करें। धान की नर्सरी हेतु अच्छी चिकनी दोमट मिट्टी होने आवश्यक है। पहले आप भूमि का चुनाव करके, इसके बाद जहाँ जल भराव की समस्या ना होती हो, पानी निकाला जा सके, ऐसी जगह पर चुनाव करें। नर्सरी में अधिक पानी निकाला जा सके ये बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जिस समय नर्सरी होती है पौधा बहुत कमज़ोर और टेंडर होता है, मुलायम होता है, जिसके कारण अगर दिन के तापक्रम अधिक हो जाते हैं तो पानी अधिक होने से गर्म हो जाता है। तो समय समय पर धान में नर्सरी लगाने के लिए, जब जहाँ नर्सरी लगाई जाती है वहाँ पानी को बदलते रहते हैं हम, तो यह आवश्यक है कि ऐसे स्थान का चुनाव करें जहाँ पानी ना भर सके। इसके बाद बीज को बोने से पहले नर्सरी में उसका शोधन करना बहुत ज़रूरी होता है। नर्सरी लगाने से पहले उपयुक्त प्रजाति का प्रमाणित बीज ही प्रयुक्त करें तथा साथ ही उसका शोधन अवश्य करें। जिन क्षेत्रों में जीवाणु झुलसा या जीवाणुधारी रोग का अधिक प्रकोप होता है, वहाँ 4 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्रति 25 किलो बीज की दर से मिलाकर पानी में रात भर उसे भिगोएं, दूसरे दिन छाया में सुखाकर उसको नर्सरी में डालें, तब उसकी नर्सरी लगाएं। सामान्य तौर पर रात भर बीज को 24 घंटे के लिए भिगोकर बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद जो उसमें अतिरिक्त पानी होता है उसे निकाल दिया जाता है और 75 ग्राम थीरम या 50 ग्राम कार्बनडेजम को 8 से 10 लीटर पानी में घोलकर प्रति 25 किलोग्राम बीज की दर से इसको भिगो दें या मिला दें। इसके बाद छायादार स्थान में इसको अंकुरित होने के लिए रख दें। 48 से 72 घंटे में यह अंकुरित हो जाता है। इसके बाद इसकी बुआई करें। अच्छी प्रकार से तैयार किए गए खेत को 1 से 1.5 मीटर चौड़ी सुविधा अनुसार लंबाई वाली क्यारियों को भूमि की सतह से लगभग 10 सेंटीमीटर ऊपर रखते हुए क्यारियां बना लें। दो क्यारियों के बीच में लगभग 30 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बना लें, जिससे अधिक पानी हो सके वो निकाला जा सके, सिंचाई कर सके, एवं नालियों में खड़े होकर हाथ से खरपतवारों को भी हम आसानी से निकाल सकें। बीज को क्यारियों में बोने से पहले 5 से 10 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग 5 किलोग्राम पोटास को 1000 वर्ग मीटर की दर से क्यारियों में खास रूप से प्रयोग करें, तो निश्चित तौर से जो आपके नर्सरी में लगने वाले जो रोग होते हैं या कमी होती है न्यूट्रिएंट्स की, जिनको हम पोषक तत्व कहते हैं, उनकी कमी से रोका जा सकता है। शुद्ध एवं स्वस्थ बीजों को 15-20 किलोग्राम मात्रा में प्रायः 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बुनाई करने की अनुमति या अनुमोदित होता है, इसकी रिकमेंडेशन है, उसके हिसाब से बीज का प्रयोग करें। अंकुरित हुए बीजों को 20 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से जो आपने क्यारियां बनाई हैं उसमें उसका प्रयोग करें, यानी उसमें उसकी बुझाई करें, तो ये जो आपकी पौध तैयार होगी वो आप चाहे श्री विधि से लगाएं, चाहे आप वहां से उठा के 1 महीने बाद उनको रोपित करें, इसमें सुविधा आपको मिल जाएगी। क्यारियों में बीज छिड़कने के समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें पानी उचित मात्रा में है। बुआई के 1 हफ्ते बाद क्यारियों में पानी को लगातार 4 से 5 सेंटीमीटर बढ़ाते रहें या बना के रखें, और गर्मी अधिक हो तो पानी को समय से निकाल दें और पुनः नया पानी भर दें। नर्सरी में कभी कभी देखा जाता है कि जो हमारी पौध होती है उसमें सफ़ेदा रंग का, जो सफ़ेदा नामक रोग होता है वो लग जाता है, यानी जो पौध होती है वो नीचे से सफ़ेद हो जाती है, उसको हम सफ़ेदा रोग कहते हैं। वो पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, जिसमें लोहे की कमी आपको अपने पौध में दिखाई देती है। अगर इस तरह की कमी के लक्षण दिखाई दें तो 1 सप्ताह के अंतराल से अमोनियम फेरस सल्फेट का 2% घोल का छिड़काव आप उसमें 2 बार या 3 बार कर सकते हैं। इसी तरह से जिन क्षेत्रों में जिंक की कमी देखी जाती है, उन क्षेत्रों में जिंक सल्फेट को 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले भूमि में मिला दें, अथवा 0.5

0: 2% जिंक सल्फेट के घोल को स्प्रे करने से नर्सरी में जिंक की कमी को दूर किया जा सकता है। कहीं कहीं नाइट्रोजन की कमी भी हमारे यहाँ नर्सरी में देखी जाती है। इसके लक्षण के कारण जो है, जो पौध होती है उसमें कुछ पीलापन दिखाई देता है। तो 3 से 5 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति 1000 वर्ग मीटर की दर से उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। इस नाइट्रोजन को नर्सरी से पौधे उखाड़ने के 1 सप्ताह पूर्व अगर प्रयोग किया जाता है वो ज़्यादा उचित रहता है, क्योंकि जब रोपाई की जाती है और जिस समय हम 1 हफ्ता पहले इसका छिड़काव करते हैं तो पौधे में जो 3 या 4 दिन में इसका असर आता है वो हरा होता है, और जब तक पौधा अपनी जड़ रोपाई के बाद पकड़ पाता है तब तक पौधा हरा बना रहता है। पौधा जब हमारी नर्सरी लग जाती है या नर्सरी ये डाल लेते हैं तो नर्सरी में खरपतवारों की समस्या भी कई बार देखी गई है। तो नर्सरी में अगर खरपतवार की समस्या हो तो हमारे किसान भाई जितने भी अनुमोदित हमारे खरपतवार नाशी हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें ब्यूटाक्लोर है या सेनफर है। इसका जो भी आपको प्राप्त हो, 1.5 लीटर जो सेनफर लगता है, 1 किलो हमारा ब्यूटाक्लोर प्रति 1000 वर्ग मीटर की दर से लगेगा, उसका प्रयोग करके आप उसको जो है खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। अथवा खुरपी से आप जो है 3-4 दिन बाद जो है जब आपके खरपतवार आपको दिखाई देने लगे तो आप खुरपी से, क्योंकि 2 क्यारियों के बीच में हमने आपको 30 सेंटीमीटर का जो स्पेस दिया है, जगह दी है, वहाँ आप लगा सकते हैं। जो हमारा एक फ्यूक्नोरोलिन नाम का रसायन आता है, अगर उसका आप प्रयोग 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से करेंगे तो ये खरपतवारों को निकलने ही नहीं देता, लेकिन सामान्य तौर पे किसान भाई इस खरपतवार को प्रयोग नहीं करते हैं। रोपाई जब आपकी पौध लगभग 25 से 30 दिन की हो जाए तो इसकी रोपाई आपने जो खेत तैयार किया है उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई हमारे जो जनपद है इसमें कहीं कहीं जो है श्री विधि, जिसको ऐसा सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन कहते हैं, इस विधि के द्वारा भी धान की रुपाई करने का प्रयास करते हैं। इस विधि में और जो हमने अभी आपको अपनी पारंपरिक विधि बताई है इसमें मात्र इतना ही अंतर है कि किसान भाई इसकी जो नर्सरी लगाते हैं वो थोड़ी तकनीकी भरी होती है। ये मेडागास्कर की एक विधि है। इसमें किसान भाई ध्यान रखें कि पौध लगाने का जो समय है वो 9 से 12 दिन, अधिकतम 15 दिन की पौध को 25 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपित कर दिया जाता है। इस विधि में पानी कम लगता है। पानी में जो अंतर है वो ये है कि लगभग 2 सेंटीमीटर हेक्टेयर पानी आपको, अगर SRI विधि के द्वारा आप अपनी खेती करना चाहते हैं तो मेंटेन करके चलना है, और जो हमारी पारंपरिक विधि है उसमें 5 से 6 सेंटीमीटर हेक्टेयर पानी 15 दिन कटाई से पूर्व तक खेत में रखा जाता है। अगर किसान भाई, मेरा मानना है, इन बातों का समुचित ध्यान रखेंगे तो अच्छी नर्सरी लगाने के बाद अच्छी पौध को लगाएंगे जब खेत में तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा मुनाफा होगा।
1: हाँ भाई, हमारे किसान भैया जानकारी ले रहे धान की नर्सरी की तकनीक। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर YK शर्मा। अब भैया, अब आपको सुनवा में है यह ब्रज लोकगीत।

गिरिराज बास में पाऊं। अब ये आपानंद ले रहे विजय कुमार के स्वर में या प्रच लोकगीत को। भैया वो हमारी जो कृषि में सबसे महत्वपूर्ण है कृषि की माटी यानी कृषि की भूमि और यह के संरक्षण के काजे हमें निरंतर प्रयास करते रहने चाहिए। या तो हमारी मिट्टी बह के गिरे नहीं कटे नहीं और बाय बंजर है वैसे भी हमें बचाना है। भैया माटी के खराब है कि बहुत सारे कारण हुए, वहाँ में जल कटाव भी हुए, वायु कटाव भी हुए, यानी ढलान पे बारिश की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी अगर बह जाए तो जल कटाव और रेतीले हवा तेज हवा ऐसी स्थिति में अगर माटी उड़ के निकल जाए तो वायु कटाव और भैया लवणीयता क्षारीयता ज़्यादा सिंचाई खराब जल ज़्यादा रसायन का प्रयोग ऐसी स्थिति में भी हमारी माटी का स्वास्थ्य खराब हुई। और भैया और सबसे महत्वपूर्ण है जैविक कार्बन की कमी, लगातार एक सी फसल गोबर की खाद ना डालें और वहाँ में तमाम तरह के रसायन जानबूझ के अधाधुंध जब लगा में हैं तो हमारे जैविक कार्बन की कमी है जाए या से हमारी माटी को स्वास्थ्य खराब हुए। तो ये भैया या के काजे हमें प्रबंध करना है, समुच जुताई करनी है, मेड़बंदी की व्यवस्था करनी है और जो पानी की निकासी की व्यवस्था भी हमें करनी है, संग ही संग फसल चक्र को अपनाना है और खेते खाली नहीं छोड़ना है, जायद में मूंग ढेंचा या ऐसी व्यवस्था करके यह हमें रखना है और जल निकास यानी पानी खेत में अगर है तो वहाँ से लवणीयता की मात्रा होगी या हमें आवश्यकता पे ही हमें पानी रखना है, बाद बाकी नाली के माध्यम से बागू निकास करना है। तो भैया छोटी छोटी तकनीक अगर हम अपनाएंगे तो ये निश्चित तौर से हमारे लिए एक उपयोगी होगी। ऐसे ही एक तकनीक है वाकू हम समझे हैं खेत की मेड़ पे लेमन ग्रास यानी या कि अगर हम लगाए दें तो जड़ 3 मीटर गहरी हुए मिट्टी है जकड़ लें तो या से हमारी कटाई नहीं हुए और हमारे खेत की माटी कहीं बाहर बह के नहीं जाए। तो बहुत छोटी छोटी बात है, किसान भैया सब जाने हैं, बस या को प्रबंध करना है, खेत की मेड़ को मजबूत करना है, हरी खाद डालनी है और जो भी उपाय हमें उपयुक्त लगे उचित लगे अपने लिए उपयुक्त लगे वही को हमें प्रयोग करना। तो अब भैया आपको सुनवा में है यह है ब्रज लोकगीत।

0: भैया आओ या समय परिक्रमा को बहुत जोर चल रहा है। जहाँ देखो सब जने परिक्रमा पे चल रहे हैं। तो भैया ये तो हमारे ब्रज की एक ऐसी परंपरा है कि जब जो त्यौहार आवे वही के अनुरूप हमारे सब भैया बहन अपने आप को तैयार करें। अब भैया आपको मथुरा मथुरा के आसपास को मौसम मौसम विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 5 दिनों में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने की संभावना है। स्थानीय स्तर पर हल्की बारिश गरज और बिजली के संग तेज हवा चलने की भी संभावना है। तो किसान भैयन को सलाह दी जावे है कि अपनी खेती की योजना यही मौसम पूर्वानुमान के अनुसार तैयार करें और स्थानीय स्तर पर हल्की बारिश और तेज हवन की संभावना की देखते हुए अपनी खेती की योजना को तैयार करें। तो भैया ये तो बात रही मौसम की जानकारी। अब यही के संग आप सभी से विदा लेवे को है गो समय। सभी भैया बहनन को हमारी राम राम।
1: क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो।
2: क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है।
1: जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं
2: और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें किसान.gov.in और farmer.gov.in।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम संध्या वंदन।

लता मंगेशकर और मन्ना डे के स्वरों में अभी आप सुन रहे थे सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से पंडित नरेंद्र शर्मा की यह भक्ति रचना। संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। संध्या वंदन कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गोपी से। स्वर है मोहम्मद रफी का, राजेंद्र कृष्ण की रचना, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

मोहम्मद रफ़ी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे गोपी फिल्म से राजेंद्र कृष्ण की रची ये भक्ति रचना। संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी का था। संध्या वंदन कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म काला बाजार से। स्वर हैं गीता दत्त और सुधा मल्होत्रा के, रचना शैलेंद्र की है और संगीत एस डी बर्मन का।

गीता दत्त और सुधा मल्होत्रा के सुरों में कालाबाजार फिल्म से अभी आप सुन रहे थे शैलेंद्र की रची ये भक्ति रचना। संगीत सचिन देव बर्मन का था। संध्या वंदन कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति हम आपको सुनवा रहे हैं चंद्रानी मुखर्जी की आवाज में। गीत और संगीत रविंद्र जैन के हैं। फिल्म का नाम है गोपाल कृष्ण।

0: चंद्रारी मुखर्जी के सुर में अभी आप सुन रहे थे गोपाल कृष्ण फिल्म से ये भक्ति रचना। रचना और संगीत रविंद्र जैन के थे। इसी के साथ संध्या वंदन कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए वार्ता मथुरा वृंदावन के प्रमुख तीर्थ स्थल। वार्ताकार हैं राजकुमार शर्मा।
1: मथुरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को एक जिलो है। ये शहर भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली है। ये भारत को प्राचीन शहर यमुना नदी के किनारे बसो गए है। मथुरा दिल्ली से लगभग 160 किलोमीटर, आगरा से 58 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दुनिया भर के पर्यटक जा कृष्ण की नगरी में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आमे हैं। भगवान विष्णु ने मथुरा को अपनो सर्वाधिक प्रिय स्थान बताया हुआ है, जहाँ पे दूध दही के पकवान बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिले हैं। ये 7 पवित्र स्थानों में से एक है। मथुरा को कई नाम से पुकारो गए है, जैसे सूरसेन की नगरी, मधुपुरी, मधुनगरी इत्यादि। वाल्मीकि रामायण में मधुपुर या मधुदानव को नगर एवं लवणासुर की राजधानी बताया गया है। भगवान राम के छोटे भाई शत्रुघ्न ने युद्ध में हरा कर मारो और जाके बाद यहाँ पे राज कियो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस को मारो। मथुरा अपने खान पान के काजे भी प्रसिद्ध है। मथुरा के पेड़े, माखन मिश्री, चाट, टिक्की, कचौरी आदि। मथुरा के लोक संगीत, नृत्य बहुत ही लोकप्रिय हैं। मथुरा अपने कुछ खास त्योहारन के

लिए भी प्रसिद्ध है, जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी और राधाष्टमी भी यहाँ के मुख्य त्यौहार माने जावे हैं। मथुरा को ब्रजभूमि के नाम से जानो जावे। मथुरा का इतिहास करीब 2500 वर्ष पुराना है, जहाँ पे पहली बार कृष्ण मंदिर को निर्माण यदुवंशी राजा ने 80 वर्ष ईसा पूर्व में करवाया। बाद में कुषाण हमलों में जा मंदिर को ध्वस्त कर दियो गयो। गुप्त काल में सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 400 ईसा पूर्व में दूसरे बिहार मंदिर को निर्माण करवाया। ओरछा के राजा वीर सिंह जू ने जहांगीर के शासनकाल में एक नए विशाल मंदिर को निर्माण करवाया, जाकि ऊंचाई 250 फुट रखी गई, जो आगरा से भी दिखाई दे। तो मंदिर की लागत बासमय 33 लाख रुपए आई और मंदिर के चारों ओर एक ऊंची चार दीवारी बनाई गई। अब बात करें मथुरा के प्रमुख पर्यटक स्थल की। कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे, जहाँ पे कृष्ण के मामा कंस को राजपाट भी यहीं हतो। यहाँ पे कई सारे चमत्कारी मंदिर हैं। मथुरा में आपको आस्था और धर्म को अनूठो संगम देखने को मिलेगा। दुनिया भर के लोग जा जगह पे घूमने को आवें। अगर आप मथुरा आवें तो अपनी सुविधा अनुसार इन जगह पे जरूर घूमने को जावें। अब बात करेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की। श्री कृष्ण जन्मभूमि हिंदुओं के पूजन के लिए पावन धरती मानी जावे। भगवान श्री कृष्ण मथुरा की एक जेल की कोठरी में पैदा हुए थे। जेल की कोठरी वाले स्थान पे एक मंदिर है। हर साल यहाँ पे लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आवे। पौराणिक कथान के अनुसार यह मंदिर जहांगीर के शासनकाल में ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनवाया हुआ हो। यहाँ की जेल की दीवार देखने पर लगे मानो भगवान श्री कृष्ण आज भी बालक के रूप में यहाँ पे हैं। लोग कहते हैं यहाँ पे भगवान कृष्ण की सोने की मूर्ति रखी अति जाए, महमूद गजन भी उठा के ले गए। मथुरा जंक्शन थे, जहाँ मंदिर की दूरी 3.5 किलोमीटर है। अब बात करेंगे द्वारकाधीश मंदिर की। जहाँ मंदिर के निर्माण साल 1814 में करवाया गया हो, तो जहाँ मंदिर में भगवान कृष्ण की सभी कलाकृतियाँ मौजूद हैं। भगवान कृष्ण के विशाल जीवन को देखने को है तो जहाँ मंदिर में जरूर जाएं। ये मंदिर मथुरा जंक्शन से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा विश्राम घाट के नज़दीक है। कृष्ण जन्माष्टमी और होली के समय जब यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़्यादा हो गए। अब बात करते हैं गिरिराज गोवर्धन पर्वत की। एक पौराणिक कथा के अनुसार ब्रज को डूबने से बचाने के काजे भगवान श्री कृष्ण ने जा पर्वत को एक अंगुली पर उठा लियो। कहते हैं जा पर्वत के चक्कर लगाने से आपके सारे पाप धुल जामे। जब भी आप मथुरा जाएं तो एक बार जा जगह पर जरूर जामे। गोवर्धन पर्वत मथुरा से 22 किलोमीटर दूर वृंदावन के पास हते, जहाँ आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा सबसे ज्यादा देखे जाने वाले दर्शनीय स्थलों में से एक है। गोवर्धन पर्वत की कहानी आपने धारावाहिकों में देखी होगी। गोवर्धन व इसके आसपास के क्षेत्र को ब्रजभूमि कहो जावे। द्वापर युग में यही भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के वर्षा के प्रकोप से बचाने काजे गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली उठायो। गोवर्धन पर्वत को लोग गिरिराज जी भी कहें। आज भी दूर दूर से भक्त जा पर्वत की परिक्रमा करने को आमे। ये लगभग 23 किलोमीटर की परिक्रमा है। कई श्रद्धालु जाए गाड़ी की मदद से भी पूरा करें। रास्ते में बहुत सारे धार्मिक स्थल भी आवे, जिनमें आन्योर, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, गोविंद कुंड, पूंछरी गलोटा, दान घाटी आदि। अब बात करें वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर की। ये मंदिर भारत में मथुरा जिले के वृंदावन धाम में रमण रेती पे स्थित है। ये भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। बांके बिहारी मंदिर श्री कृष्ण का ही एक रूप है। मथुरा जंक्शन से वृंदावन धाम की दूरी लगभग 13 किलोमीटर है। काले रंग की

रखी हुई कृष्ण की मूर्ति को बांके बिहारी जी के नाम ते जाने, कहें कि आप इनकी मूर्ति से नज़र नहीं मिला सकते। जहाँ मंदिर में दर्शन करने जब आप जाएं तो आंख बंद करके भगवान के कृष्ण दर्शन यहाँ मत करें। आप यहाँ बांके बिहारी जी ते नज़र से नज़र मिला के दर्शन कर सकें। बहुत ही कम लोग जाने हैं कि बांके बिहारी जी की मूर्ति बनाई ना गई है, बल्कि स्वामी हरिदास जी के अनुरोध पर प्रकट भई अति। अब बात करते हैं कुसुम सरोवर की। सरोवर गोवर्धन से लगभग 2 किलोमीटर दूर राधा कुंड के पास है। ये सरोवर 400 फीट लंबो और 60 फीट गहरो है। पौराणिक कथान के अनुसार जा जगह पे राधा जी ने भगवान श्री

0: के अनुसार जा जगह पे राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण से शाम को मिलने को आया करती। जा जगह पे वो रासलीला किया करते, जहाँ पे शाम को होने वाली आरती जा जगह को मुख्य आकर्षण है, जाए देखने को देश विदेश के लोग आमे। अब कंस किले के बारे में बता मैं। कंस को किलो मथुरा में स्थित बहुत प्राचीन किलो है, जे जमुना के तट पे बसो हुए है। ये किलो भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस को समर्पित है। ये मथुरा को एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटक स्थल है, जो कि किलो बहुत बड़े क्षेत्र में बना है तथा जाकी दीवार काफ़ी लंबी है। जा समय जे किलो खंडहर में तब्दील रह चुको। जा किले की वर्तमान संरचना राजा मानसिंह ने 16वीं शताब्दी में करवाई। यह समय यह किलो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आ गए। अब बात करें पोतरा कुंड के बारे में। ये कुंड भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहो जावे कि यहाँ पे बचपन में कृष्ण की मैया यशोदा उनके वस्त्र या कुंड में धोया करती। ये कुंड कृष्ण जन्मभूमि के निकट है, जहाँ में इस दरवाजे वाली आकृति व बलुआ पत्थर से निर्मित है। यह मथुरा से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह कुंड श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है।
1: अभी आप सुन रहे थे ब्रजवार्ता। वृंदावन मथुरा के प्रमुख तीर्थ स्थल। वार्ताकार थे राजकुमार शर्मा।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:18 होने को हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: होता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक के पहले दिन संस्कृति आधारित सतत विकास पर हुआ मंथन। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया समेत 11 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्व पर्यावरण दिवस पर लखनऊ से करेंगे प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ। राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का है लक्ष्य। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लखनऊ में करेंगे बायो युग ग्रीन कमांड का शुभारंभ। बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देगी यह पहल। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कल से 21 जून तक होंगे विशेष आयोजन। मुख्यमंत्री ने दिए विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। वाराणसी में आज से 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की शुरुआत हो गई है। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक में रूस, इथोपिया और मिस्र हाइब्रिड मोड में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि इस आयोजन में रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संस्कृति आधारित सतत विकास आदि विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है।
2: तो बैठक में जो मेन मुद्दे हैं कि कहाँ पे जो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज हैं वो कैसे सहयोग कर सकते हैं, जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, जो हमारे आर्टिसंस हैं, आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, उनको कैसे हम आपस में कोलैबोरेट करा के जो हमारे मेंबर कंट्रीज की अर्थव्यवस्था है उसमें उनका योगदान बढ़ा सकते हैं। जो नए चैलेंजेस हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है, उसको कैसे हम सबको मिलके उस पर काम करना है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लखनऊ के कुकरैल वन क्षेत्र में पौधरोपण कर प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस वर्ष राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश के 17 नगर निगमों, 825 विकास खंडों, 762 नगर निकायों समेत सभी ग्राम पंचायतों में यह अभियान कल पूरे दिन चलेगा। वन विभाग के साथ ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, उद्यान आदि विभागों के सहयोग से अमृत सरोवरों, तालाबों, सड़कों, एक्सप्रेसवे, नदियों के किनारे पौधे लगाए जाएंगे। इसमें विद्यालयों, महाविद्यालयों, स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों की भी सहभागिता होगी। पौधरोपण अभियान के तहत लखनऊ मंडल में 62 लाख, वहीं बरेली और प्रयागराज में करीब 32 लाख पौधे लगाए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह कल से 3 दिवसीय दौरे पर राजधानी पहुंचेंगे। दौरे के पहले दिन रक्षा मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में बायो युग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ करेंगे। यह पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। इस कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, उद्योग जगत, रक्षा क्षेत्र, शोध संस्थानों और पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रदेश में 8, 9 एवं 10 जून को आरक्षी, नागरिक, पुलिस और समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग द्वारा रियायती किराए पर अंतर

0: जनपदीय विशेष बसों का संचालन किया जाए। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने कहा है कि भर्ती परीक्षा की शुचिता, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ किसी भी स्तर पर समझौता ना हो। उन्होंने अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए यातायात प्रबंधन की प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने 6 जून को परीक्षा आयोजन का पूर्वाभ्यास कराने और सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस परीक्षा में लगभग 29 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
0: प्रदेश में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित टीजीटी भर्ती की 2 दिवसीय लिखित परीक्षा आज सकुशल संपन्न हो गई। परीक्षा में लगभग 50% पंजीकृत अभ्यर्थी ही शामिल हुए। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया, परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए AI आधारित मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक सत्यापन और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के कारण परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और विश्वसनीय रही। नई दिल्ली में आयोजित पीएम सूर्यघर पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत देश भर में हुए सोलर इंस्टॉलेशन के आधार पर प्रदेश ने टॉप 3 स्टेट इंस्टॉलेशन श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त किया। जिला स्तर पर सोलर इंस्टॉलेशन और राज्यवार वेरी हाई कंज्यूमर बेस्ड श्रेणी में प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर आकाशवाणी एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में GST लागू किया गया, जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई, जिससे कारोबार करना आसान हो गया। वहीं 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र में एनडीए सरकार के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में कल से 21 जून तक विशेष आयोजन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन जनभागीदारी आधारित कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनसेवा, सुशासन, पर्यावरण संरक्षण, युवाओं के हित और जनकल्याण से जुड़े प्रत्येक कार्यक्रम का क्रियान्वयन संवेदनशीलता और जन सहभागिता के साथ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि 5 से 21 जून तक की अवधि में जनप्रतिनिधि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि चौपालों का आयोजन कर जन समस्याओं के समाधान, योजनाओं की समीक्षा और शिकायतों के निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था की जाए। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: इसी क्रम में आज विभिन्न जनपदों में मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने प्रेसवार्ता कर इस विशेष जागरूकता अभियान के बारे में जानकारी दी। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कानपुर में मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल भारत के उत्कर्ष, आत्मविश्वास और वैश्विक प्रतिष्ठा के वर्ष रहे हैं।
4: इन 12 वर्षों में जो उनके कार्य और कृतित्व रहा वो बेमिसाल रहा। ये 12 वर्ष भारत के उत्कर्ष इसके रूप में सिद्ध हुआ है। और यदि हम कहें कि उनके कार्यों को गिनाना शुरू करें जनहित के, देश हित के, अंतर्राष्ट्रीय जगत के हित के, तो एक ग्रंथ बन जाएगा। उन्होंने बड़े और कड़े निर्णय लिए हैं जिनकी कल्पना करना जनता सोच भी नहीं सकती थी।
0: 17 जून को अफगानिस्तान और भारत की टीम

0: के बीच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष सचिन आनंद शुक्ला ने बताया, मैच के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हमीरपुर समेत प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में आज तेज आंधी और बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। मौसम विभाग ने कल भी प्रदेश के अधिकांश जनपदों में कहीं कहीं हल्की बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक के पहले दिन संस्कृति आधारित सतत विकास पर हुआ मंथन। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया समेत 11 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्व पर्यावरण दिवस पर लखनऊ से करेंगे प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ। राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का है लक्ष्य। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लखनऊ में करेंगे बायो युग ग्रीन कमांड का शुभारंभ। बायोप्लास्टिक को बढ़ावा देगी यह पहल। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कल से 21 जून तक होंगे विशेष आयोजन। मुख्यमंत्री ने दिए विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
1: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो।
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शाम सुहानी।

शाम सुहानी कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, दिन भर की व्यस्तताओं के बाद जब शाम अपने साथ सुकून और ताजगी लेकर आती है, तब हम भी लेकर आते हैं आपके प्यार और आपके संदेश, आपकी फरमाइशों से सजा ये विशेष कार्यक्रम शाम सुहानी। आज के इस अंक में हम आपके व्हाट्सएप संदेश जानेंगे, आपकी प्रतिक्रियाएं और सुनवाएंगे आपके पसंद के फिल्मी गीत। तो तैयार हो जाइए एक सुरीली, मधुर और यादगार संध्या के लिए। आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम का सिलसिला और सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये पहला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे ससुराल फिल्म से हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गीत, शंकर जय किशन के संगीत निर्देशन में। आवाज थी मोहम्मद रफी की। और इस गीत को सुनने के लिए हमें संदेश प्राप्त हुए हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से, सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश पायल, वैदेही, हंसिका कुमारी, अंकिता, अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, फाजिल का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु लाडी, विशाल शालनी, टीवंशी और इनके परिवारीजन, बिजनौर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बीटू भैया, साजदरानी और हिना कौसर, नीमगांव महाराष्ट्र से श्रीराम गोंधली, उषा गोंधली, हर्षदा वैष्णवी, पूनम और युवराज गोंधली, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, कव्या, सुच्चा पाठक, जयपाल यादव और विनोदपुरी, बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश, राजेश्वरी, उत्कर्ष और टुक्को, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज, सरफराज, फरदान, फरदीन, सुहान अरजान, अबान और इनके परिवारजन, अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आशा सबीहर, अनसर रेहान, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता का संदेश में प्राप्त हुआ। नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकड़े, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकड़े, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, पारजू और गुड्डू, सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, पैंठण से शेख चांद, पैंठण के श्रोता हैं डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूर्जा प्रसाद, सोनल सिया, जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष चंदन और इनके ढेर सारे साथी गण। आदर्श नगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण, विक्रमजीत अनमोल और पवनीत ग्रोवर, ब्रम्पटन कनाडा से नाम शामिल हैं इसी संदेश में, निखिल भाटिया, नीति भाटिया और महरीन भाटिया के, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला आरती और ओम कुमार सुरलकर, कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर, और दरियापुर भावली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप, अशोक येले, अकोला से इसी संदेश में नाम शामिल हैं अरुण।

बलदेव दामोदर और आदित्य दामोदर के। श्रोताओ, जब प्रेम अपने भावों की पराकाष्ठा पर पहुंचता है तब उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं रह जाती। वो जीवन के हर रंग, हर स्वर और हर स्पंदन में समा जाता है। मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में साथी फिल्म का गीत आप तक पहुंचा रहे हैं।

मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में साथी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। बजरों की रचना थी, नौशाद का संगीत निर्देशन था। सदर बाजार कुरावली से जुड़े हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार, विनीत कुमार, सोनम वर्मा।

रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी योगेश कुमार, संध्या कीर्ति कुमार और डीकेश, रामलाल चंद्रवंशी, कृष्ण चंद्रवंशी, आकली दीवान मध्य प्रदेश से, बुलढाणा महाराष्ट्र से नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या और जय हागे, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा और हर्ष आहूजा, ललितपुर उत्तर प्रदेश से संतोष नामदेव, अभय, अनित, अजीत, ज्योति, अनीता, संजना, रेखा, भारती, पूर्वी, रूही, अनु, अनन्या, शक्ति, भक्ति, आदर्श, लव, कुश और बागपत से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया, डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित, लकी, तानिया नारंग, नरविल महाराष्ट्र से पीएस नुहानकर, निर्मला, विशाल तो सोपान, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार और आशीष मुरेकर, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष, कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका, सुशांत, सुरेश चौरसिया, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी और शिवन्या गोस्वामी, संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, मोहम्मद उमर, राजेंद्र कटारे, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल शिवा, सनीता, योगिता, अंजू, रज्जन, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी, कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद और प्रदीप येमेकर, सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सर नाजिया, इब्राहिम सद्दाम, बघेरा दुर्ग छत्तीसगढ़ से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ और शौर्य नामदेव, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का और तन्मय गजभिये, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और पप्पी भाटिया, दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से वसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शॉ, अजय कुमार, रिमझिम झुमरे तिलैया से अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी, रिया जिया टूसी, आयुषी, अनिरुद्ध, मुन्नी देवी शॉ, जय प्रकाश सौ, वसंत लाल, हीरा मोती, मलकापुर से संजय पाटिल, निवृत्ति, शीर सागर और संजय कुमार, सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ का संदेश। श्रोताओं, कभी कभी दिल की खामोश आरजुए शब्दों का रूप लेकर गीत बन जाती है। मोहब्बत की राहों में कुछ ख्वाब सजाए जाते हैं, कुछ मिल जाते हैं, कुछ उम्र भर गुनगुनाए जाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे सलमा अघा और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में निकाह फिल्म का गीत। हसन कमाल के बोल थे, रवि का संगीत निर्देशन था। कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत संचित, प्रथमेश प्रणाली, सरवत सानवी और कल्पना का संदेश हमें प्राप्त।

शुक्रवार गंजटनवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी भुवन प्रकाश दबीरुल हसन बेगम शबनम नजमा बेगम यवतमाल से राहुल मनोहर सरला रोशनी चेतन विशाल और प्रियांशी पानीपत से नरेश मल्होत्रा लक्ष्मी मल्होत्रा लाडो कोयल मल्होत्रा ननक चंद्र मल्होत्रा रोहतक से पीयूष सिक्का कोयल सिक्का डुग्गू भाविक जमशेदपुर से विपिन जायसवाल स्वाति देवकुमार और आर्य जायसवाल झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया रीता रजत और मयंक भाटिया का संदेश में मिला है। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा अनिल जयवीर अमनदीप कालका से शुभ बजाज साहिल और बिट्टा बजाज चंडीगढ़ से सतीश अनेजा विमला अनेजा का संदेश कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले सुजाता और प्रतीक हिवराले समस्तीपुर बिहार से कपलेश्वर प्रसाद गुप्ता भुलिया गुप्ता रानी मेनका संगीता पासवान और पी के नायक बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत शिवास करुणा आयुष विवेक और आयुषी और तेलंगाना से कानगुल गुलाब गोपाल माहेश्वरी प्रवालिका विष्णुवर्धन और विघ्नेश। श्रोताओ जब मन की वीणा को छूता है प्रेम तो शब्द गीत बन जाते हैं और धड़कने संगीत। दो दिल दो जीवन एक ही डोर में बंध जाएं, सपनों के आकाश में प्रेम की दीप जगमगाए। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत फिल्म एक दूजे के लिए से। आवाजें लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की हैं। गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में एक दूजे फिल्म के लिए गीत आनंद बख्शी का आपने सुना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन था। और इसी के साथ श्याम सहनी प्रोग्राम से अब अरविंद को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शाम सुहानी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल, नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: दिस इज आकाशवाणी। In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government transforming healthcare. Participants are Dr. V.K. Paul, former member, Niti Aayog, and Dr. N.K. Arora, President, AIIMS Bilaspur. Moderator is Priyanka Arora.
3: स्वस्थ नागरिक किसी भी सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम के मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत ने पिछले 12 वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन की एक नई गाथा लिखी है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, गरीबों के लिए उपचार की बेहतर व्यवस्था, आधुनिक अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों का विकास तथा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ता दायरा, इन सभी ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा और नई गति दी है। यही परिवर्तन आज करोड़ों भारतीयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का आधार बन रहे हैं। मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति विषय पर आज हम स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा कर रही हैं। हमारे साथ हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वी के पॉल और एम्स बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
4: बहुत बहुत नमस्कार।
3: तो जी, कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर पॉल, आपसे जानना चाहती हूँ कि पिछले 12 वर्ष में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में आए सबसे बड़े संरचनात्मक बदलावों को आप किस रूप में देखते हैं?
4: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विजनरी लीडरशिप में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनप्रेसिडेंटेड जो कभी नहीं हुए वो रिफॉर्म्स हुए और वो बदलाव आया है। इसके बहुत सारी डायमेंशन है, लेकिन मैं सर्वोपरि अगर उन डायमेंशन को देखूं तो जो एक्सेस टू हेल्थ केयर बढ़ी है
3: जी,
4: और जो हेल्थ केयर की वजह से जो बोझ पड़ता था नागरिक पे, खासकर जो गरीब परिवार, इन दोनों में सुधार लाने के लिए, एक्सेस को बढ़ाने के लिए और जो आर्थिक बोझ स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पड़ता था उनमें जो कमी आई है, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि वो है। इसको हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की नजर से भी देख सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं मिले, और जब स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं तो व्यक्ति की और द सिटीजन जेब के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। ये जब हुआ है वो जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और उसी के साथ साथ उसी बजट स्पीच में 2018 के बजट के अंतर्गत आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अब उनको हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं
3: जी,
4: जो हमारी प्राइमरी केयर की व्यवस्था बनी और जो सेकेंडरी और टर्शरी केयर में हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाने के लिए जो एक मैकेनिज्म बना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, मैं समझता हूँ कि इन दोनों को जोड़ के देखूं तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जो सुधार और जो जन जन तक इसका फायदा हुआ है उसको मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ।
3: जी हाँ, यह भूतपूर्व पहल रही है और आज भी विश्व में सबसे बड़ी योजना के रूप में मानी जाती है। डॉक्टर अरोड़ा, अगर आपसे जानना चाहें तो जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पिछले 12 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं?
5: जैसे कि प्रोफेसर पॉल ने कहा कि एक आम व्यक्ति के जेब से आज

0: से 12 वर्ष पहले अगर वो 100 रुपए डॉक्टर की इलाज पे या अपनी किसी बीमारी के इलाज पे खर्च करता था तो उस समय 60 रुपए उसकी जेब से जाते थे। आज ये घट करके 3500-4000 रुपए के बीच में आ गया है। ये एक आमूल परिवर्तन है। और दूसरी चीज जो डॉक्टर पॉल कह रहे थे, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनको इस स्ट्रैटेजिक तरीके से रणनीतिक तौर पे इनको बनाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को इस देश में 2 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलने की जरूरत नहीं होती। यानी कि 2 किलोमीटर का जो दायरा है, रेडियस है, उस बीच में एक आयुष्मान मंदिर है। तो
1: जी
0: जिसको हम एक्सेस है या स्वास्थ्य सेवाओं की प्रति जो उसकी प्राप्ति के लिए उसकी जो सुविधा है वो उसमें बहुत जबरदस्त परिवर्तन किया गया है। दूसरा एक चीज और है, मेड इन इंडिया या भारत में निर्मित जो एक पूरा का पूरा अभियान चला है उसके अंतर्गत कई चीजें हुई हैं। और मैं यहाँ पर टीकाकरण क्षेत्र का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि अब इस देश में 100% जो टीके हैं वो भारतीय दिए जाते हैं।
1: जी
0: कोविड के दौरान जो 228 करोड़ टीके दिए गए वो पूरे के पूरे भारत में निर्मित थे। और उसकी वजह से जो देश में बचाव हुआ उसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। एक और चीज करी गई है और जो मेड इन इंडिया की तरफ बहुत बड़ा कदम रहा है कि अनुसंधान में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिससे कि हमारी इलाज करने की तरीके, इलाज करने के लिए दवाइयां, इलाज करने के लिए वैक्सीन और किसी भी बीमारी के लिए अब भारत में सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसमें आशातीत वृद्धि हुई है। आज से 12 साल पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता था, अब किसी भी इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से आए।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर अरोड़ा, और हम जब आयुष्मान भारत की बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना मानी जाती है, तो ये किस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हुई है डॉक्टर पॉल?
2: हमारे देश में सुविधाओं की कमी रही कई सालों तक, उसके साथ साथ में सिटीजन को अपने आप को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने के लिए जो खर्चा होता था उसका समाधान का तरीका निकाला गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 60 करोड़ हमारे जो नागरिक हैं, 60 करोड़,
1: जी
2: उनको 5 लाख का कवरेज हर साल, उनके परिवार के अंदर 5 लाख का कवरेज जो है वो सेकेंडरी टर्शरी केयर के लिए दाखिला जब होता है अस्पताल में तो वो सरकार कवर करती है।
1: जी
2: और इसके साथ साथ बहुत सारे राज्यों ने और भी अपने अपने नागरिकों को एक्स्ट्रा भी जोड़ लिया है। अब ये जो सेवाएं दी जा रही हैं ये लगभग 1900 से ज्यादा पैकेजेस की तरह से है कि आपको डेंगू का बीमारी हुई तो एक पैकेज डेंगू का है, आपको घुटने के रिप्लेसमेंट की जरूरत है एक पैकेज है। आप सोच सकते हैं कि हमारे सबसे ज्यादा जो मार्जिनलाइज्ड हमारे नागरिक भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उनको टर्शरी केयर में हार्ट की सर्जरी, आप नी रिप्लेसमेंट और इवन किडनी ट्रांसप्लांट और बुखार की बीमारी, एनकेफेलाइटिस, स्ट्रोक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ब्लड की बीमारियां, कैंसर, इन सब बीमारियों को उनको कैशलेस, उनको सामने पैसा नहीं देना है और उनको सेवाएं मिल रही हैं 30,000 से ज्यादा अस्पतालों में, जिनमें कि कम से कम 12,000 प्राइवेट हॉस्पिटल भी जुड़े हुए। तो प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ दिया गया एक आम नागरिक के लिए, ये एक बहुत बड़ी इनोवेशन है। आयुष्मान भारत पीएमजे के अंतर्गत हर रोज 85 से 90 हजार व्यक्ति अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं और उनका मुफ्त इलाज हो रहा है, रोज 80 से 90 हजार। अभी तक 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे दाखिले हो गए हैं, 10 करोड़ से ज्यादा। देखिए कितने लोगों को ये फायदा कैशलेस कवरेज का जो हुआ है, अगर हम देखें कि इससे कितनी बचत हुई है समाज को, देश के नागरिकों को, तो ये आंकड़ा आता है 1,52,000 करोड़ का फायदा जो है वो यहां तक पहुंचा है। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें कि इससे मेरे को रीच कैसे बढ़ी, तो जब शुरू हुआ था तो जो बेनिफिशरीज है, लाभार्थी हैं, उनमें लगभग 0.7%, less than 1% ही बेनिफिशरीज का फायदा ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम मैच्योर हुआ, आपको जान के खुशी होगी कि आप 2 से 2.5% लोग, मतलब कि 2.5 से 3 गुना बेनिफिशरीज को एक्सेस अब मिल रहे हैं। तो लोग बैठे रहते थे, अब इसको अपनी

0: सेवाओं का को लेके जाते हैं। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति जो है, एक स्टडी हमें दिखाती है कि जिनको पीएमजे का कवरेज नहीं है वो टाइम पे पहुंचते हैं 30% लोग सिर्फ, और आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी हैं वो 90% लोग टाइम पे पहुंच पा रहे हैं सेवा, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास ताकत है इलाज लेने के लिए। बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि 2024 से इस कार्यक्रम के साथ में 70 और 70 से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों जोड़ दिया गया है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, अमीर गरीब सबके लिए। तो ये 6 करोड़ नागरिक हैं जिनको की एक्स्ट्रा एक आयुष्मान भारत में जगह मिली है। ये लगभग 4.5 करोड़ फैमिलीज परिवारों को बिलोंग करते हैं, और मुझे खुशी है बताते हुए कि 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम के अंतर्गत वयो योजना जो है पीएमजे की उसके साथ जोड़ के वयोवंदन योजना में ये समावेश हुआ है। तो जो सबसे नीडी लोग हैं उनको, क्योंकि उस उम्र पे ज्यादा बीमारियां होती हैं, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, तो उस समाज को प्रोटेक्ट करना और इस स्कीम के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी बात है और उपलब्धि है। ये इतने बड़े स्केल के ऊपर रोज दाखिले हो रहे हैं और उन सबका इलाज हो रहा है, और इससे गरीब की जेब पे बोझ कम हुआ है, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि उनको एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर मिलना शुरू हो गया है।
1: बिल्कुल। और डॉक्टर अरोड़ा, अगर मैं आपसे बात करूं, आप लंबे समय से टीकाकरण कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं, मिशन इंद्रधनुष और कोविड टीकाकरण अभियान ने भारत के जो सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को किस प्रकार मजबूत किया है?
2: ये जब आप टीकाकरण की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में इस चीज को सराहा गया है। 2014 में कुल 63% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण होता था, और आज ये बढ़कर के 93-94% हो गया है। अभी NFHS का डेटा 2 दिन पहले आया है 2024-25 का, एक्चुअली उसमें डेटा 22-23 का
1: जी, जी।
2: और उसके हिसाब से 88.7% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण उपलब्ध हो रहा। और इसका कारण, और आपने मिशन इंद्रधनुष का जो उदाहरण दिया कि जो बच्चा रह जाए जिसको टीका नहीं मिला हो उसको देने का प्रयास किया गया, और साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं जिनको टिटनेस का टीका नहीं मिला उनको भी देने का। लेकिन ये टीका खाली कहने पर से नहीं है, इस कार्यक्रम में जो नवाचार किया गया कि इस देश का हर बच्चा जो टीकाकरण के लिए उसका अधिकार था उसको मैप आउट किया गया, उसकी पहचान की गई और उस तक पहुंचने का प्रयास किया गया। और यह जो प्रयास था जिसको हम माइक्रो प्लानिंग कहते हैं, ये हम सीखे खास तौर पे जब हम पोलियो उन्मूलन कर रहे थे। पूरे के पूरे टीकाकरण में हमारा अब हर बच्चा हर महिला जो है हमारे एक तरीके से हाथ पे लिखा रहता है, और अब इसको आगे ले जाकर के यूएन आईटी प्लेटफॉर्म है जिससे कि हर एक हमारी रजिस्ट्री बन गई है जिसमें बच्चों को टीकाकरण दिया जाता है। लेकिन इसका मुख्य लाभ जो हुआ है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ता आई है, क्योंकि जब मैं बच्चों के तक पहुंचता हूं, गर्भवती महिलाओं तक पहुंचता हूं, तो खाली टीकाकरण नहीं है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित बाकी जो समस्याएं हैं उनको भी वहां तक लेके जाने का प्रयास किया जा रहा। साथ ही साथ जो ये माइक्रो प्लान वाला सिस्टम है इसका प्रभाव हमारी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये खास तौर पे 2 बड़ी बीमारियां हैं
1: जी।
2: ये भी अपने आसपास के जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के चारों तरफ लगभग 5,000 की पॉपुलेशन होती है वहां तक पहुंचाने में भी इसी उपक्रम का प्रयोग किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो भी नवाचार किया जा रहा है टीकाकरण में उसका प्रभाव खाली बच्चों की और महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं पर सुदृढ़ नहीं हुआ है लेकिन बाकी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ा है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि इस समय जो भारत का टीकाकरण कार्यक्रम है वो हमारी सारी की सारी सरकारी जो भी हमारे कार्यक्रम है, अभियान है, उसमें सबसे ज्यादा कवरेज या पहुंच जो है टीकाकरण कार्यक्रम की है। इस देश के लगभग 97% जो टीकाकरण के अधिकारी हैं उन तक कम से कम एक टीका लग चुका है। तो यही एक रास्ता है जिससे कि बाकी जो सेवाएं हैं उनको भी पहुंचाया जा सकता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अभी डॉक्टर अरोड़ा ने आयुष आरोग्य मंदिरों की बात की और बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिहाज से, और अभी देश में 1,70,000 से अधिक हमारे यहाँ आयुष्मान आरोग्य केंद्र हैं। तो अगर बात करें

0: आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसका विस्तार किया जा रहा है ताकि जो आयुर्वेद है और आयुष उपचारों को उसमें शामिल किया जा सके। तो सरकार कैसे आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा को एक साथ लेकर चल रही है?
1: आपके सवाल में दो हिस्से हैं। पहले मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जो बात कही है उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा।
0: जी,
1: किसी भी देश में स्वास्थ्य सेवाओं में जो प्राइमरी केयर होती है,

0: सेवाओं में जो प्राइमरी केयर होती है, प्राथमिक सेवाएं जो होती हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में प्राथमिक सेवाओं में जो सुदृढ़ता आई है, हमारे सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर सालों से काम निभा रहे थे बिल्कुल लिमिटेड तरीके से, जितना भी कर पा रहे थे लिमिटेड था। 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिनको आज हम आयुष्मान आरोग्य मंत्र कहते हैं, उनकी संरचना उनकी सोच लेके आए, जो एक लिमिटेड प्राथमिक सेवाएं होती थी मदर एंड चाइल्ड हेल्थ या संक्रमित बीमारियों के, इन्फेक्शियस बीमारियों, कम्युनिकेबल डिजीज की, वो तो करना ही है, उसमें भी और डेप्थ और इंटेंसिटी लेके आए। लेकिन जो नहीं हो रहा था, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी इतनी प्रोमिनेंट है, कैंसर, अब ये सेवाएं प्राथमिक सेवाओं में आयुष्मान आरोग्य में निहित हो गई कि हम इनको एक सीमित तरीके से, सीमित इन द सेंस कि पीरियोडिक, इतने साल के बाद हर व्यक्ति का एक चेकअप होगा, हर साल ब्लड प्रेशर चेक होगा, हर साल शुगर चेक होगी डायबिटीज के लिए, और कैंसर तीन साल में, पांच साल जैसा प्रोटोकॉल है, उसपे तीन कैंसर, मुंह का कैंसर, कैंसर सर्विक्स, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर लेडीज में, और ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर, इसकी सबकी स्क्रीनिंग होगी। इसके अलावा मेंटल हेल्थ को साथ में जोड़ा गया, आई आंख का इलाज, ENT कान का इलाज, नाक का इलाज, डेंटल हेल्थ, फिर एल्डरली केयर को भी जोड़ा गया इसमें। तो 12 पैकेजेस बने, शुरू के 5 पैकेजेस, 4 पैकेजेस के बजाय उसका आयाम बढ़ गया। अब और इंटरेस्टिंग बात देखिए, 170,000 ये बने, उसमें दो तरह के हैं, एक सब सेंटर लेवल का होता है 6,000 पॉपुलेशन के लिए, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का होता है, लगभग 30,000 का उसका दायरा होता है। कुल मिला के ये यूनिट बन जाता है, एक PHC वाला आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 5 या 6 या 4 या 5 सब सेंटर वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन जाता। अब बिल्कुल आश्चर्य भी होगा आपको, 1,20,000 नए मिड लेवल प्रोवाइडर्स, इनको करने के लिए टीम को बढ़ाया गया। हमारी पुरानी टीम थी आशा वर्कर थे एक गांव में लगभग 1,000 की पॉपुलेशन पे, फिर हमारे पास ANM थे, कहीं कहीं मेल हेल्थ वर्कर होता था, लेकिन 1,20,000 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को लगाया गया है। इतनी रेवोल्यूशनरी बात है कि इतने संख्या में एक ह्यूमन रिसोर्स को प्राइमरी केयर के पीछे लगाया गया, और ये टिपिकली BSc पास हमारी नर्सेस होती हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और सब जगह पे टेलीमेडिसिन का प्रावधान हुआ
1: जी।
0: सब जगह पे 100 से ज्यादा दवाइयां, सब सेंटर वाले में 105 दवाई और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 170 फ्री मेडिसिन, सब सेंटर वाले में 14 डायग्नोस्टिक टेस्ट फ्री और PHC वाले में 42 से ज्यादा फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रावधान किया गया है। तो सारे समाज को, सारे जितनी पॉपुलेशन है उसको एक सूत्र में बांध के कमिटमेंट है कि हम इनका चेकअप करेंगे, कमिटमेंट है कि हम उनको याद दिलाएंगे कि दवाई आपको फ्री मिल रही है, दवाई जब खत्म होती है तो अगली दवाई आप लीजिए, जरूरत होगी तो टेली मेडिसिन के द्वारा जोड़ा जाएगा, और जो बाकी सेवाएं शुरू से, इम्यूनाइजेशन है, मदर चाइल्ड हेल्थ है, TB कंट्रोल, लेप्रसी, ये जो प्रोग्राम वो तो चल रहे हैं, उनमें भी ताकत है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस प्लैनेट पर सबसे बड़ा जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो एक रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो आज हमारे देश में हो रहा है, और ये बहुत दूर तक हमें लेकर जाएगा, क्योंकि क्रॉनिक बीमारियों को बचाने का तरीका सिर्फ यही होता है कि या तो वैसे ही हम अपने आप को, अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, नहीं तो हम डिटेक्ट करें, और प्राइमरी हेल्थ के द्वारा डिटेक्शन भी हो, प्रिवेंशन भी हो, हेल्थ प्रमोशन भी हो, और जरूरत पड़े तो फिर ट्रीटमेंट भी हो, जिसमें फिर PMC जुड़ जाता है।
1: बिल्कुल, देखा जाए इतनी बड़ी आबादी है हमारे जैसे देश की, तो घर घर जाकर इस चीज की जांच करना और उनको बताना, रोकथाम के लिए उपाय बताना, तो ये बहुत बड़ी बात है।
0: दूसरी बात आपने कही कि हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को जोड़ा गया, बहुत बड़ी बात है
1: जी।
0: ये हिस्टोरिक जब देखा जाएगा तो हिस्ट्री में ये माना जाएगा कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में जो भारत का अपना सिस्टम थे, आयुर्वेद था हमारा, सिद्ध है हमारे पास, यूनानी है, ये सब हमारे भारत में पपन पे हुए सिस्टम है, ये इन सब के जो योग है वो भी स्वास्थ्य के लिए भी और स्वास्थ्य से भी ऊपर का है, वो उन सब को एक मेन स्ट्रीम में लाना, उनको ये बजट प्रदान करना, उनके सिस्टम को स्ट्रेंथन करना और उनको एक इंटीग्रेटिव अप्रोच में जोड़ना, और को जो बढ़ोतरी मिली है वो बहुत बड़ी बात है कि दोनों का समावेश हो, आधुनिक कार्यक्रम, आधुनिक पद्धति का भी हो और ट्रेडिशनल का भी हो, ताकि दोनों मिलके एक व्यक्ति को, एक नागरिक को वो दे पाए जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा, स्वास्थ्य रहे, बीमारियां नहीं हो, मन भी अच्छा

0: तन भी अच्छा हो और आत्मा भी अच्छा हो, इन सब का जो जोड़ इंटीग्रेटिव अप्रोच में लेके आए हैं, ये भारत का मॉडल जो है ये दुनिया देखेगी। और आयुर्वेद का जो प्रचलन है वो बड़ा है, आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं उनकी एक्सेप्टेंस बड़ी है, हमारे एक्सपोर्ट बड़े हैं, और बिल्कुल ये मेन स्ट्रीम में दोनों को ले जाने का जो माहौल बना है और जो ताकत आई है ये भी अनप्रेसिडेंटेड है।
1: बिल्कुल एक साथ ले जाना तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर अरोड़ा, हम जैसे बात कर रहे थे टीकाकरण की भी, तो इन दिनों सरकार जो कैंसर है उसकी डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन पर, स्क्रीनिंग पर बहुत ध्यान दे रही है, और खासकर जो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, तो आप आज के परिप्रेक्ष्य में इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
2: जो HPV वाला टीकाकरण है, और इसके अलावा डॉक्टर पॉल ने तीन कैंसर्स के बारे में बताया, एक तो महिलाओं के बच्चेदानी के मुंह वाला कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर है उसी के लिए वैक्सीन है ये, उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर और मुंह का कैंसर, और एक तीसरे कैंसर के लिए वैक्सीन ऑलरेडी दी जा रही है जो हेपेटाइटिस बी है, उसकी वजह से लिवर का कैंसर हो जाता है। तो कैंसर की तरफ जो है, क्योंकि जैसे कि हम सबको मालूम है कि पिछले कुछ समय में हम सब लोगों का ध्यान बहुत अधिक आकर्षित हुआ है कैंसर की बीमारी की तरफ, उसकी स्क्रीनिंग के लिए, जल्दी पहचान के लिए, फिर इलाज के लिए, और इस दिशा में बहुत सारा काम किया गया है। तो एक तो स्क्रीनिंग के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन साथ ही साथ एक चीज और हुई है हमारे देश में इस पिछले 12-13 साल में, एम्स का संख्या एक से बढ़कर के इस समय 23 एम्स हो गए, जो अपने आप में एक गजब की चीज है। कि और ये एम्स बड़े शहरों में नहीं करे गए, फॉर एग्जाम्पल झारखंड में देवघर करके एक जगह है, कई लोगों को मालूम भी नहीं होता, मतलब ऐसी जगह किया है जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन या पिछड़े इलाकों में किया गया है, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में है, इसी तरीके से JNK में दो हैं, और बाकी पूरे कंट्री में इस तरीके से करे गए, और खास तौर पे ऐसे क्षेत्रों में किया गया है एम्स को एस्टैब्लिश, जहां से ज्यादा लोगों के पास टर्शियरी केयर, जो सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, और इनमें कैंसर के इलाज के लिए बिल्कुल आधुनिकतम मशीनें उपलब्ध हैं, इन सारे में ये सब नए इंस्टीट्यूशन है, उसके बावजूद कैंसर की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ अनुसंधान इस तरीके से किया जा रहा है कि जो क्षेत्रीय और स्थानीय समस्याएं हैं, और उसमें हमारे कुछ कैंसर स्थानीय तौर पर बहुत होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो लेरिंजियल कैंसर, मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है, और सर्वाइकल कैंसर भी बहुत ज्यादा है, तो उन क्षेत्रों में उन पे विशेष तौर पर ध्यान देकर के उसकी स्क्रीनिंग है, उसके बचाव के लिए क्या तरीका किया जाए, उसके इलाज के लिए क्या किया जाए। और अब ये जो HPV वैक्सीन के बारे में आपने कहा, ये हमारी बच्चियों के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए है, और ये वैक्सीन इतनी सुरक्षित है, और वैक्सीन मिलने के बाद कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या महिलाओं के बच्चेदानी का मुंह का कैंसर प्रैक्टिकली खत्म हो जाता है। इनफैक्ट WHO की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है कि ये वैक्सीन के साथ साथ अगर हम स्क्रीनिंग और इलाज करते हैं तो अगले 15-20 साल में इस समस्या से निजात मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कैंसर की तरफ जो है बहुत बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। कुछ बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बाकी सरकार जिनको सहायता कर रही है, जैसे टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट है, इनके चारों तरफ पूरे देश में शाखाएं बनाई जा रही हैं, और कुल मिलाकर हर एक प्रदेश में कैंसर का एक रीजनल सेंटर बनाया गया है, जिससे कि लोगों को दूर दराज चल करके जाने की जरूरत ना पड़े और घर के पास ही ये सुविधाएं उपलब्ध हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर हम आज देखें, आज भारत डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है, तो जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है और जो स्वास्थ्य ID जैसी पहल है, वो आम नागरिक के लिए जो स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से सरल और प्रभावी बना रही है?
0: भारत का जो डिजिटल हेल्थ की तरक्की हुई है वो दुनिया में बिल्कुल अलग और शायद सबसे आगे की तरक्की की तरह मानना चाहिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया गया और उसके जो डिफरेंट स्वरूप हैं उसमें, एक है कि हमारे पास हर नागरिक का इवेंचुअली एक डिजिटल आइडेंटिटी होगा, उसको हम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कहते हैं, आभा। तो आपको हैरानी होगी, 87 करोड़ व्यक्तियों का, नागरिकों का आभा आइडेंटिटी आज हमारे पास अवेलेबल है, 87 करोड़, 145 करोड़ में से। इसका क्या फायदा है कि इस सिस्टम के द्वारा, इस आइडेंटिटी के द्वारा जो मेरे हेल्थ के रिकॉर्ड्स हैं वो उसके ऊपर लोड हो सकते हैं, वो पुराने नए अगले सब जुड़ सकते हैं, और जब किसी ने इसको देखना है

0: और प्रस्तुत करना है और रिकॉर्ड की तरह भी है, तो वो डॉक्टर साहब उसको देख के फैसला कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हमारे और से और लोड होते जाएंगे, ये एक इनोवेशन का भी जरिया बनेगा और इसमें बहुत सेवा की ईज जो है, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ एक्सेसिंग हेल्थ, वो अचीव होगी। इसमें फिर जो टेली मेडिसिन में जो तरक्की हुई है, जैसे मैंने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में टेली मेडिसिन हो गया है, हमारे पर ई संजीवनी एक टेली मेडिसिन है, रोज हजारों कंसल्टेशन उसके ऊपर होती है, हजारों, और उसमें इतने डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। उसके अलावा प्राइवेट स्पेस में टेली मेडिसिन हो रही है, इंस्टीट्यूशन में एक रेवोल्यूशन आ गई है टेली मेडिसिन। उसके और डायमेंशन भी है कि हॉस्पिटल की रजिस्ट्री बनेगी, हेल्थ प्रोफेशनल्स की रजिस्ट्री बनेगी, वो सब काम हो रहा है। लेकिन जो डिजिटल हेल्थ है वो एक हिस्सा बन चुका है हमारे देश में हेल्थ सिस्टम का। हम डिजिटल हेल्थ को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम्स को लागू करते हैं, हम बेनिफिशरीज को चिन्हित करते हैं, हम बेनिफिशरीज को फायदे के साथ जोड़ते हैं, उनको ट्रैक करते हैं। सो डिजिटल हेल्थ में जो इतना इतना बदलाव आया है और जो उसकी वजह से हेल्थ की एक्सेस बढ़ी है, एक्यूरेसी बढ़ी है, और जो इसका फ्यूचर पोटेंशियल है वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। और इसके आगे चलते हुए जब इस टेक्नोलॉजी को हम AI के साथ लिंक करेंगे, इस टेक्नोलॉजी के और सॉल्यूशंस होंगे, तो मुझे लगता है कि भारत बिल्कुल अग्रणी देशों में होगा इस काम में।
1: डॉक्टर अरोड़ा, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन रिगार्डिंग मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ इशू। व्हाट प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स ड्यूरिंग द लास्ट 12 इयर्स?
2: वी हैव जस्ट सीन लास्ट 2 डेज सम ऑफ द रीसेंट डेटा। One of the key issues which has been bothering all of us was stunting in children. And stunting has been traditionally recognized as the quality of health services. And during last, between NFHS 5 and 6, I think the stunting has decreased by 12 or 14 percent points. Now, this is remarkable because this is, jisko kehte hain, bilkul phansi hui cheez thi, jisko ठीक करने में बहुत ही मेहनत लग रहा था। और ये देश भर में पोषण कार्यक्रम शुरू हुआ, महिलाओं का एम्पावरमेंट, उनके पोषण पे विशेष ध्यान देना, उस दिशा में जो काम हुआ है। तो अब हमने देखा है कि बच्चों में जो स्टंटिंग, हमारे यहाँ लगभग 50% बच्चे अपनी पूरी ऊंचाई को प्राप्त और लंबाई को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो अब आ गए हैं 29% पे लगभग। लेकिन अभी काम करने की जरूरत है, वो है अनीमिया, खून की कमी है। अब वो गर्भवती महिलाएं हैं, हमारी किशोरी बिटिया लोग हैं और बाकी बच्चों में ये अनीमिया की समस्या ऐसी है। इसकी तरफ जो है अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम आरंभ किया गया है और उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन वो विकास में और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि देश के डिफरेंट हिस्सों में अनीमिया के कारण अलग अलग हो सकते हैं और खाने में खासतौर पे उस चीजों का विशेष ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के, और एक तीसरी चीज जो महिलाओं के लिए विशेष तौर पे रहा है कि एक समय था जब हमारे यहाँ केवल 27% महिलाएं अपना प्रसव जो है एक संस्था में करती, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट में, आज वो पढ़ करके लगभग 95% हो गया है। ये भी एक अभूतपूर्व उपलब्धि है और इसकी वजह से नवजात शिशुओं की मृत्यु, असमय मृत्यु से उसको कम किया गया है। और साथ ही साथ जो हमारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, मैटरनल मोर्टेलिटी, वो एकदम नीचे आ गई है। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि जो हमारी माताएं हैं और बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य में जो प्रोत्तर विकास हुआ है, उस विकास में एक तेजी आई है, मृत्यु दर में कमी हुई है, चाहे वो माँ हो चाहे नवजात शिशु हो। और इसमें भी हम लोग पूरी कोशिश की जा रही है कि 2030 तक, उससे पहले ही जो हमारे SDG गोल्स हैं उनको हम प्राप्त कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन चीजों की उपलब्धि प्राप्त कर सकें जिसमें ज्यादातर देश प्राप्त नहीं कर पाए हमारी तरफ।
1: बिल्कुल, अगर डॉक्टर पॉल आपसे बात करूं, कोरोना के टाइम की जब कभी याद आती है तो अब भी जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उस समय जब भारत की रणनीति थी उसको पूरे विश्व में सराहा गया, दो इट वॉज अ मेजर चैलेंज फॉर अस, सो व्हाट मेजर स्टेप्स हैव बीन टेकन टू स्ट्रेंथन इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस द COVID-19 पेंडेमिक?
0: उसके बाद में हमने अपनी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया, एक वन हेल्थ मिशन देश में लॉन्च किया गया। उसका तात्पर्य यह है कि जो महामारियां हम अभी देख रहे हैं पिछले दशकों में, और कोविड की महामारी को भी देखा और आगे देखते हैं, तो ये लगता है कि महामारी का जो

0: इन्फेक्शन है जो वायरस है वो एनिमल किंगडम से आता है, बैट से, चमगादड़ से आता है या बर्ड से आता है, चिकन से आता है। अब इन सब चीजों को समझते हुए क्लियर हो गया है कि हम एनिमल किंगडम से अलग नहीं है, हम वाइल्ड लाइफ के सिस्टम से अलग नहीं है, हम जो हमारा लाइफ स्टॉक है, घरेलू जानवर है, उनसे अलग नहीं है, हम एनवायरमेंट, जंगल, इन सबसे सभी जुड़े हुए। तो वन हेल्थ के अप्रोच के द्वारा इन सब सेक्टर्स को और इन सब डायमेंशंस को जोड़ के एक जो मिशन बनाया गया है, उनके अंतर्गत जो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है कि कहाँ पे क्या बीमारी हो रही है, पशु में भी क्या हो रही है, ह्यूमन में भी क्या हो रही है, उसको जीनोमिक लेवल तक जाके समझना और उसके बारे में देखना कि वो कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, उसको कंटेन कैसे करना है। तो ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट का एक सिस्टम वन हेल्थ के अंतर्गत बनाया गया है। हमारे सर्वेलेंस की पद्धतियों को स्ट्रांग किया गया है, हमारे जो इंडस्ट्री है और साइंस एकेडमिया का सिस्टम है उनको अलर्ट करके उनकी अप्रोच करा गया है कि जो वायरसेस महामारी का रूप दे सकते हैं या उनसे मिलते जुलते हैं उनके लिए अपनी रिसर्च को बढ़ाओ, उनके लिए तैयार रहो कि पहले से ही वैक्सीन की रिसर्च हमारी बहुत आगे तक हो ताकि अगर मुसीबत आती है तो हम जल्दी से जल्दी 100 दिन के भीतर वैक्सीन को पैदा करने की ताकत रखें। इसके अलावा जो रिस्पांस है ग्राउंड से, जो रिस्पांस है हमारा, जो IDSP का सिस्टम है, 2 लाख से भी ज्यादा जगह से हमें इन्फॉर्मेशन आती है, उसको सशक्त किया गया है। सिंड्रोमिक अप्रोच ICMR ने डिटेक्ट करने का सिस्टम को सशक्त किया गया है। वेस्ट वाटर सर्विलेंस भी करा जाए कि सुएज में क्या वायरसेस आ रहे हैं। काफी बड़े तौर पे इन सारे को पिछले लेसन को लेकर और आज की साइंस को जोड़ते हुए हमने अपनी व्यवस्थाओं को बहुत स्ट्रांग किया है और ये जो फ्यूचर के लिए हमारी बायो सिक्योरिटी है, फ्यूचर के लिए हमारी जो हेल्थ सिक्योरिटी है, उसके लिए स्टेप जो है पूरे तरीके से लिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर बात करें आम आदमी को क्या चाहिए, अच्छी शिक्षा, आवास मिल जाए और अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो और किफायती दाम पर जब आपको दवाएं मिलती हैं तो उससे बड़ी बहुत ही सुखद एहसास नहीं हो सकता एक आम आदमी के लिए। तो जन औषधि केंद्र ऐसे में कितने महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं?
0: जन औषधि केंद्रों के द्वारा हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन जो गुणवत्ता में पूरी उतरती है उनको उपलब्ध किया जाता है। देश में 19,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों का जाल बिछा हुआ है और बहुत तेजी से इसको 25,000 तक लगाने की प्लान है। इसमें हर रोज 10 लाख से ज्यादा व्यक्ति अपनी दवाइयां खरीदते हैं, किफायती दाम पे मिलती हैं। मार्केट में जो रेट होता है उससे आधी और कई दवाइयां तो सिर्फ 10% तक भी नीचे उनको उसका प्राइस से मिलता है, बहुत फायदा होता है। अगर हम देखें जब से ये प्रोग्राम चालू हुआ है तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए की बचत भारत के नागरिक समाज को इस कार्यक्रम की वजह से उपलब्ध हुई है। और ये कार्यक्रम के द्वारा जो जन औषधि केंद्र हैं ये सब जगह, सब प्रदेशों में, सब जिलों में इसका डायमेंशन दिखाई देती है, इनकी प्रेजेंस दिखाई देती है। और दवाइयों के अलावा जो मेंस्ट्रुएशन के लिए पैड्स की भी उपलब्धि की गई है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, और जब से ये वाला कार्यक्रम शुरू हुआ है 105 करोड़ से ज्यादा सुविधा नैपकिन जो है मेंस्ट्रुअल नैपकिन दिए गए जिसकी कीमत सिर्फ 1 रुपया है। तो ये दो काम कर रहे हैं, एक तो गुणवत्ता की दवाइयां मिल रही हैं, दूसरा व्यक्ति को बचत हो रही है और तीसरा इसकी वजह से एक्सेस बढ़ती है, व्यक्ति सेवाएं ले पाता है, इस्तेमाल करता है तो बीमारी रुकती है और उसका जो जो जायजा है वो हम रुपयों में नहीं ले सकते। इतना बड़े भले का ये कार्यक्रम है।
1: बिल्कुल श्रोताओं, नए भारत की जो स्वास्थ्य क्रांति की यात्रा है केवल नीतियों और आंकड़ों की कहानी नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में आए वास्तविक परिवर्तन की गवाही भी है। डॉक्टर पॉल और डॉक्टर अरोड़ा, आप दोनों का धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए।
2: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर VK पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्रियंका अरोड़ा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOn AIR और यूट्यूब चैनल NewsOn AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: इन द स्पेशल सीरीज यू आर लिसनिंग टू discussion on 12 years of the Modi government transforming healthcare. Participants were Dr. VK Paul, former member Niti Aayog, and Dr. NK Arora, president AIIMS Bilaspur. Moderator was Priyanka Arora. This program was produced and

0: presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
1: अभी आप सुन रहे थे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं देश गान।

जगा धरा का लाल कि अब क्यों सोए का संवेद स्वरों में अभी आप सुन रहे थे ये देशभक्ति परक रचना। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति। बोल हैं पंछी बन के उड़े मन हमारा। आइए सुनते हैं संवेद स्वरों में ये देशभक्ति परक रचना।

0: समवेत स्वरों में अभी आप सुन रहे थे ये देशभक्ति परक रचना। इसी के साथ देशगान का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा आपसे कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सके।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
3: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी

0: भी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ का ग्रोथ इंजन है।
1: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
4: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
6: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई स्टार्टअप महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
4: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
7: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक

0: क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
2: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
1: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
3: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की। दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा।

शमशाद बेगम की आवाज़ में सीआईडी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और यशुदास को त्रिशूल फिल्म के लिए।

अभी आप सुन रहे थे यशुदास और लता मंगेशकर की आवाज़ों में त्रिशूल फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा था साहिर ने और संगीत तैयार किया था खय्याम ने। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल सुरों में ब्लफ मास्टर फिल्म का ये गीत।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे ब्लफ मास्टर फिल्म का ये गीत। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत निर्देशन था। लीजिए अब सुनिए फागुन फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी को, कमर जलालाबादी के बोल हैं, संगीत ओ पी नैयर का।

फागुन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की, गीतकार थे कमार जलालाबादी और संगीत ओपी नैयर का था। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहाने तराने। आइए अब सुनते हैं हेमलता की आवाज़ में दुल्हन वही जो पिया बनवाए, फिल्म का ये गीत, गीत और संगीत रविंद्र जैन के हैं।

ये आवाज़ थी हेमलता की, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, फिल्म का नाम था। गीत और संगीत रविंद्र जैन के थे। सुहाने तराने कार्यक्रम की अगली पेशकश हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपके रेडियो सेट के माध्यम से, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर के युगल स्वरों में। फिल्म का नाम है अनीता, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर को आप सुन रहे थे अनीता फिल्म के लिए। गीत आनंद बख्शी का था और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। श्रोता, सुर और शब्द जब एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तब जन्म लेते हैं ऐसे गीत जो वर्षों बाद भी उतने ही ताजा लगते हैं। और यही कारण है कि फिल्म संगीत हमारी स्मृतियों का अभिन्न हिस्सा बन जाता है। आइए सुनते हैं एक और प्यारा गीत मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। मोहब्बत इसको कहते हैं। फिल्म का नाम है मजरूह की रचना, खय्याम का संगीत।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में मोहब्बत इसको कहते हैं। इस फिल्म का गीत गीतकार थे मजरू, संगीत खय्याम का था। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में कर्तव्य फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है कफील आज़र ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया है।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे कर्तव्य फिल्म का गीत। गीतकार थे कफील आजर और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का था। आइए अब सुनते हैं फिल्म गीत गाया पत्थरों ने से आशा भोसले की आवाज़ में भरत व्यास का लिखा ये गीत रामलाल के संगीत निर्देशन में।

संगीत निर्देशन आवाज थी आशा भोसले की। सुहाने तरह ने कार्यक्रम की अगली और आखिरी रचना हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म मेरे महबूब से, आवाज मोहम्मद रफी की है।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मेरे महबूब फिल्म का गीत आपने सुना। शकील बदायूनी की रचना थी, नौशाद का संगीत निर्देशन था। इसी के साथ सुहाने तराने कार्यक्रम की ये प्रस्तुति अब यहीं संपन्न होती है।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 10 बजने को हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा अब से थोड़ी ही देर में। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: संगीत जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा। सौम्या मिश्रा बिहार के मधुबनी जिले की निवासी हैं। वे एक प्रतिभाशाली लोक गायिका हैं जिन्हें मैथिली, हिंदी और भोजपुरी में अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों के लिए विशेष पहचान प्राप्त है। आपके संगीत में मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं की गहरी छाप दिखाई देती है, साथ ही उसमें आधुनिक श्रोताओं को आकर्षित करने वाली नवीनता भी विद्यमान है। सौम्या मिश्रा देश भर के अनेक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक समारोहों और मंचीय कार्यक्रमों में अपनी मधुर एवं भावपूर्ण गायकी से श्रोताओं का मन मोहती रहती हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा की स्वरबद्ध प्रस्तुति में मनमोहक मैथिली लोकगीत। आज के कार्यक्रम में संगत करता है तबले पर हरिभूषण झा, ऑक्टोपैड पर ललित, ढोलक पर अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर शशिभूषण झा। सौम्या मिश्रा अपने कार्यक्रम का आरंभ कर रही हैं महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे से।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक। वी प्रेजेंट मैथिली फोक सॉन्ग बाय सौम्या मिश्रा, एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। सौम्या मिश्रा हेल्स फ्रॉम मधुबनी बिहार। She is a gifted folk vocalist, acclaimed for her soulful renditions in Maithili, Hindi and Bhojpuri. Her music reflects a deep connection to the cultural traditions of Mithila, while carrying a freshness that appeals to contemporary audiences. Sowmya Mishra has performed at numerous prestigious cultural festivals and stage programs across the country, enchanting listeners with her melodious voice and heartfelt expression. In today's program, the accompanists are Haribhushan Jha on tabla, Lalit Kumar on octopad, Aman Krishan on dholak, and Shashibhushan Jha on keyboard. She begins her rendition with a composition titled Chanan Bhel.

0: अभी आप सुन रहे थे सौम्या मिश्रा से महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे। आइए अब सुनते हैं एक लगनी गीत जिसके बोल हैं एकता हम बारी कुमारी।
1: We just heard a composition titled Chanan Bhel. Continuing this program, she now presents a composition titled Ekta Hum Bari Kumari.

0: आप सुन रहे हैं सौम्या मिश्रा द्वारा प्रस्तुत मैथिली लोकगीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक चैती, जिसके बोल है कोहके बारी कोयलिया हो रामा।
1: That was a Maithili composition performed by Soumya Mishra. We will now listen a composition titled Kuhke Bari Koyaliya Ho Rama.

0: अभी आप सुन रहे थे चैती गीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक पूर्वी, जिसके बोल हैं, बाट हेरी दिन काटी नोर बहैया।
1: That was a Maithili composition performed by Soumya Mishra. She concludes her rendition with a composition titled Baate Heri Din Kaati Nor Bahiye.

0: इसी के साथ आज के कार्यक्रम में मैथिली लोकगीत की ये प्रस्तुति अब यहीं संपन्न होती है। इस कार्यक्रम में तबले पर संगत की हरिभूषण झा ने, ऑक्टोपैड पर थे ललित कुमार, ढोलक पर थे अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर साथ दिया था शशि भूषण झा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर ओडिशा की प्रस्तुति।
1: With that, she concludes her rendition of Maithili folk compositions. This part of the program was recorded in the studio of Akashwani Delhi. Continuing the broadcast from Akashwani Delhi, now we will listen to the presentation of Akashwani Jaipur, Odisha.

क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं मैं अमीना हुसैन। नमस्कार, आज हम आपको सुनवा रहे हैं ओडिशा प्रदेश के कुछ मधुर और मन मोह लेने वाले आधुनिक गीत जिनको प्रस्तुत किया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा। इन गानों को

सुरों में सजाकर आप तक पहुंचाया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र उड़ीसा के सुप्रसिद्ध टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर श्री विजय कुमार सामंतराय। श्री विजय कुमार सामंतराय माता श्रीमती स्नेहलता सामंतराय और पिता श्री चंद्रशेखर सामंतराय के सुपुत्र हैं। आपने गुरु श्री हेमंत कुमार त्रिपाठी के तत्वावधान में बचपन से ही बैला यानी कि वायोलिन की शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया था। सन 1994 में आपने आकाशवाणी जयपुर केंद्र में स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पर योगदान दिया। उसके बाद से आपने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक सीढ़ियों को पार करते हुए सन 2023 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन की तरफ से टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर का मान्यता हासिल किया। आपने सन 2015 में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम में बैला वादक के तौर पर संगत भी किया है। आपने आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रम में संगीत देकर 20 से भी अधिक नेशनल और इंटरनेशनल एनुअल अवार्ड भी प्राप्त किया है। तो लीजिए, आज हम आपको सुनवा रहे हैं विजय कुमार सामंतराय के बनाए हुए सुरों से सजे कुछ आधुनिक ओडिया गीत। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे हैं तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण शतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह, ऑर्गन पर के संतोष कुमार राव, सैक्सोफोन पर हैं राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपैड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर हैं उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय। स्पेशियल इफेक्ट दिया है गुप्तेश्वर पाणिग्राही। तो प्रस्तुत है पहला गाना जिसका बोल है, मन हृदय जेते सबु कथा तम आगे प्रिय कही देली। मतलब है, अपने दिल की हर बात लो आज कह दिया हमने आपके सामने। ये बोल लिखा है गीतकार रंजन कुमार बेहरा और मधुर आवाज है प्रीति पंडा की।

चलिए अभी सुनते हैं जिंदगी की कुछ भूल भुलैया अनजान राहों की बात। ये बोल लिखा है गीतकार बसंत कुमार दास, आवाज है सनातन पुरोहित दास की। पांथ शाड़ार रातिटीए पाई घड़िए पड़ुछी उणा, हेले मधुशाला अजणा कोणरे सरुनाही बिका किणा। जीवन हेउ केते बाट बणा, हेउ केते बाट बणा।

अभी सुनते हैं गीतकार किशोर चंद्र नंद के लिखे हुए गीत आबेगरे के ही कही थी बा कथा मनो तुली ने किया अंके। इस गाने को आवाज दिया है प्रीति पंडा। किसी ने जो दिल से कह दिया कुछ बातें, आज ये मन उन्हें ही क्यों ढूंढे।

कार्यक्रम के अगले गाने को अपने मन मोह लेने वाले आवाज से प्रस्तुत कर रहे हैं सनातन पुरोहित दास। गीतकार हैं गौर पटनायक। बोल है नाटकर मिछ अभिनय छड़ा आउ किछी जाने नहीं, मतलब है जीवन के रंगमंच में मैं हूं एक अभिनेता, झूठा अभिनय के सिवाय और कुछ भी तो नहीं आता।

में प्रस्तुत है एक युगल गीत, गीतकार रंजन कुमार बेहरा, आवाज है सनातन पुरोहित दास और प्रीति पंडा की। बोल है, प्रथम देखारे तुम्हें मनकल चोरी, अल्प कथारे आहा लागिगला टोरी, पहले ही मुलाकात में मन चुरा लिया, थोड़े ही बातों में हाय दिल लगा लिया।

अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ ओडिया आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया था आकाशवाणी जयपुर केंद्र उड़ीसा में और प्रसारण किया गया आकाशवाणी दिल्ली से। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे थे तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण शतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह, ऑर्गन पर के संतोष कुमार राव, सैक्सोफोन पर थे राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपेड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय, स्पेशियल इफेक्ट दिया था गुप्तेश्वर पाणिग्राही। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग में सहायता किया था रंजन कुमार बेहरा, यांत्रिक सहायता किए थे शरद कुमार पाढ़ी और एन योगेंद्र। इसी के साथ क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विदा चाहती हूँ मैं अमीना हुसैन, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसर

0: पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
2: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ अलका गुर्जर और डॉ सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मिजोरम के चंफाई जिले में 9 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई म्यांमा से अवैध रूप से लाई जा रही सुपारी की तस्करी और 970 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुद्दीचेरी और कराईकल में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। Prime Minister Narendra Modi today held talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi